रिमझिम गिरे सावन। एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की और फिल्म मंजिल में से निकाल कर ये गीत चला। फाउन हिंदुस्तानी रादी पर आप चुन है जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं क्या ख्याल है मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। जी हाँ,

मैं मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये गीत, इंडिवर की लिखी हुई एक शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने पेश की आप सभी सुनने वालों श्रोताओं के लिए। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, वो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊं, मन्ना दे जी इस तरह से आ रहा है शंकर जय किशन के साज पर। सेमी क्लासिकल है

छम छम बाजे रे पहेलिया फिल्म जाने अनजाने में से निकाले शंकर जय किशन के साथ पर नहीं गिनती एन सीफन तक का ये गीत। मुझे याद है जब मैं अभी सूरनाम में था तो लोग आए हैं, जब मैं काम पर था तो एक आदमी ने कहा, गंगा एक गीत एक फिल्म चल रहा है जैन एंड जैन, ये कैसा होगा? तो मुझे पता चल गया ये जैन एंड जैन नहीं है लेकिन जाने अनजाने हैं। शंकर जय किशन के साथ पर मन्ना देवी आपको सुनाइए ये शानदार गीत। फ़ान हिंदुस्तानी रेडियो का क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊं? चलो फॉर चेंजिंग। थोड़ी सी बदलाव

राम लक्ष्मण के साज पर ये शानदार गीत पेश हुआ। लता जी आपको सुने फिल्म हम आपके हैं कौन में से निकाल के हमने पेश की ये कार्यक्रम में है। आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सबका हृदय से स्वागत, आपका स्वागत करते हुए चलिए क्या ख्याल है अगर ये हो जाए। मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

अरे वाह क्या बात है, मौसम सुहाना है, दूर कहीं चल। मैं मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और गीता जी आपको सुनाएं, गीता रॉय जी, ये दोनों मिलके ये शानदार द्वैत पेश हुआ फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। और फिल्म है, हाँ सोचिए फिल्म डॉक्टर शैतान। जी हाँ, मैंने तो ये फिल्म नहीं देखे हैं, गाना सिर्फ सुने हैं, लेकिन डॉक्टर शैतान नहीं देखे हैं। बहरहाल कार्यक्रम में पेश करते हुए क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? बस बस आप सीधे बैठ जाइए और सुनिए।

हम तुमसे मिले फिर जुदा हो गए, ये गीत पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने चलाए। उम्मीद है आप सबको पसंद आ रहा होगा। तो अगर जब पसंद आ रहा होगा तो अभी पता चल जाएगा, शायद आप तार कर दोगे या ऐप भेज देंगे। बहरहाल कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए हम आपको सुनाते हैं, क्या ख्याल है ये गीत।

ये चटक बटक गीत हमने पेश किए हैं पौन इंसानी राजयोग के कार्यक्रम में, शाम के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं वो है बस, इसमें भी थोड़ी बदलाव लाएंगे ना, तो लीजिए ये है, इस तरह से आ रहा है।

वाह क्या बात है। मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए, आखिर में तुम्हें मेरा ही होना होगा, फिल्म दरिंदा में से निकाले हैं ये गीत। तो उन दिनों बहुत पॉपुलर था, उस जमाने का समय था जब वीडियो पर फिल्म निकला था, यहाँ तक मेरा ख्याल है तीसरा या चौथा फिल्म दरिंदा निकला, और बहुत लोगों ने ये फिल्म देखे हैं अपने घर पर, VHS पर या बेटामैक्स पर या फिल्म्स पर। बहरहाल ये शानदार गीत पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, जबकि हम आपको सुनाने वाले हैं इसके बाद

कि तेरा नैना जरा बेईमान से रफी साहब आपको सुनाए शानदार गीत फिर की वाले। यानी आपको पता है सूरीनाम देश में जब हम थे तो एक आदमी गुजरता था हमेशा मूलन बेचता था करीबन 2 पैसे का या 3 पैसे का, मैं भूल गया। बहरहाल रंग बिरंग मूलन, वही फिरकी वाली जो विंध मूलन लेकर वो घूमता था, वही फिरकी वाली की बात जिक्र हो रहा है यहाँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए क्या ख्याल है अगर लता जी आपको ये गीत सुनाएं।

लता जी अपनी आवाज में आपको सुनाए जीवन की दो राहें पे खड़े सोचते हैं हम। आप ये गीत सुनकर थोड़ा सा भावुक हो गए होंगे, यानी इमोशनल हो गए होंगे। बहरहाल तो लीजिए, आपको थोड़ा हम खुश कर देते हैं इस तरह से।

वाह क्या बात है, बेचारी अपने प्रेम कहानियां भी नहीं सुना सकी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के सच पर साज पर, मेरा मेरा गांव मेरा देश में से निकाल कर ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। आप सबका हृदय से स्वागत है, जो लोग चुन रही इन मीटर पर आप सबका हृदय से स्वागत किया जा रहा है, जो लोग चुन की मीटर पर आप सबका हृदय से स्वागत है। चलिए आप सबका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

आई शुरू मेरा वतन जापान लता जी आपको सुनाए हैं और कार्यक्रम में हमने चलाए हैं। आप सबका स्वागत है जो लोग चून की मीटर पर। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत इस तरह से, बस ध्यान दे के सुनिए।

कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। मैं थी मुकेश द हार्टथ्रब ऑफ मिलियंस, आपको सुनाइए ये शानदार गीत, जबकि आप भी सुन रहे हैं और मैं भी चला रहा हूँ, आप सबका हृदय से स्वागत है। आप सबका स्वागत करते हुए तो सुनिए, मैं आपको ये सुना रहा हूँ इस तरह से। लता जी है, जी हाँ लता जी है, फिक्टोरिया 2003।

थोड़ा सा ठहरो लता जी की आवाज़ में पेश किया गया फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है? अगर साथ साथ चलने के वादा की जाए तो इस तरह से

न थो छोड़ेंगे दामन तुम्हारा वहाँ तक। ये शानदार गीत चला, हमने पेश की रवि साहब आशा जी की आवाज़ में, और उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ख्याल है, प्रेम प्यार मोहब्बत में तो लोग बहुत वादे करते हैं लेकिन कभी निपता है कभी नहीं। लेकिन चलिए सुनते हैं कि एवरग्रीन किशोर कुमार क्या कह रहा है इसके बारे में।

शायद होगा जो, शायद कोई होगा जो ये फिल्म नहीं देखे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 95% लोग ये फिल्म अवश्य देखे होंगे। गीत में तो आपने नाम सुने, जूली, जूली फिल्म का नाम है, राजेश रोशन के साज पर फिल्म जूली में से निकाले हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं। चलिए कार्यक्रम बढ़ाते हुए, तो क्या ख्याल है अगर आपको ये गीत सुनाऊं, इसे सुनिए, क्योंकि ये गीत बहुत नहीं चलता है और ये गायक का गीत बहुत भी नहीं चलता है, लेकिन आप तो आज तो हम आपको अवश्य सुनाएंगे, बस अंदाज़ा लगाइए आवाज़ किसकी है।

जी हाँ, आशा जी, आशा जी के साथ कौन था आप अंदाज़ा लगाए होंगे, सुबीर सेन। जी हाँ, सुबीर सेन की आवाज़ में ये गीत था। आशा जी के साथ एस महेंद्र के साज पर हमने पेश की फौन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और वो है क्या ख्याल है, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाई ये शानदार गीत और हमने पेश की बस फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में जब भी जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो अगर आप भी हैं मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है अगर ये चलाया जाए

बस शारदा जी, बहुत देर ना समुचिए वरना पासा पलट ना जाए कहीं। बहरहाल फिर भी आपको सुनाएं शारदा जी के साथ ये शानदार गीत हम पेश किए। तो अगला गीत, ये गीत भी बहुत दिन हुए होंगे शायद आपने नहीं सुने, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम में यशुदास।

फिल्म चितचोर में से निकाले हैं येसुदास जी। येसुदास जी आपको सुनाए हैं ये कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है रफ़ी साहेब सुमन कल्याणपुर जी। हाँ, रफ़ी साहेब सुमन कल्याणपुर, बस क्या ख्याल है। फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म चांद और सूरज, चांद और सूरज में से सलील चौधरी के साज पर।

रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर, ये दोनों मिल के आपको ये शानदार द्विवेद सुनाए हैं। चलिए घड़ी पर देखो जी, हाँ भी थोड़ी समय बाकी है, तो हम पेश करते हैं ये गीत। ये गीत भी बहुत दिन हुए होंगे शायद आपने नहीं सुने, अगर हालिम सुने होंगे तो एक बार सुन लीजिएगा। एवरग्रीन किशोर कुमार।

तो आपने तो सुन ही चुके हैं कि प्यार की कभी कोई हार नहीं होती है। एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये कार्यक्रम में।

लता जी की आवाज में ये शानदार गीत आपको सुनाएं ओफर फावनी रस्तानी रेडियो फिल्म लुटेरा में से निकाल कर। लेकिन ये पता नहीं कि उन दिनों या पुराने ज़माने में भारत में सेपी रात थे या नहीं, यानी समुद्री डाकू थे या नहीं, पता नहीं। समुद्री डाकू का ये फिल्म है लुटेरा जो इंडिया ने बनाए कभी और हमने पेश की ओफर फावनी हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देख

मैं तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए, फिल्म दिल ने पुकारा में से ही निकाल कर हमने पेश की निगेटिव सेंसेस का ये गीत, और हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है? जी हाँ, आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो चलो सुनते हैं। फिल्म जंगली में से निकाले हैं शंकर जय किशन के साथ पर, ये शर्मिला टैगोर और शमी कपूर का कमाल है।

दीवाना हुआ बादल, ये शानदार गीत हमने पेश की। लेकिन शुरू में हमने कहा था फिल्म जंगली, लेकिन फिल्म जंगली का नहीं है, लेकिन ये है फिल्म कश्मीर की कली की। लेकिन बीच में हम रोकना नहीं चाहते थे, इसीलिए नहीं कहा। फिल्म कश्मीर की कली में से निकाल कर ओपन एयर के साज पर नहीं था ये, और हमने पेश की ओ फरफा हो हिंदुस्तानी रेडियो।

एक बात पूछूं या बोलो, लता जी और रफ़ी साहब मिलके आपको सुनाएं फिल्म कठपुतली में से निकाल कर निकल दें इन्हें सही फिल्म तक का ये गीत कल्याण जी आनंद जी के साथ पर हमने आपको सुनाए हैं। ये अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है? चलो हम ये आपको सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी, उदित नारायण और साथ ही मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए मोहब्बतें में से निकाल कर। जी हाँ, यतीन ललित के साज पर हमने पेश किए हो फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है, ये है इस तरह से आ रहा है।

जी क्या बात है, एवरग्रीन जी नहीं, द मैन विद द गोल्डन वॉइस, द मैन विद द गोल्डन वॉइस आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाहुन हिंदुस्तान। तो अगर आप तत्पर हैं, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहां भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस देश में भी होंगे और कार्यक्रम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का सुन रहे हैं, और वीवी द्वारा वहां पर और इंटरनेट द्वारा आपका हृदय से स्वागत है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत।

फिल्म हंसते जख्म में से हमने निकाले हैं, तुम जो मिल गए हो। और रफी लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ये गीत उफ़ फ़ाहून हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊं? जी हाँ, सुन लीजिएगा, क्योंकि ये गीत जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत दिन हुए मैंने भी नहीं सुने हैं। फिल्म आत्माराम ने से निकाल रहे हैं और रफ़ी साहब की आवाज़, जी नहीं, लता जी की आवाज़ में हम पेश करने वाले। इसे ध्यान से सुनिए, इस गीत में बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, क्या ख्याल है? चलो सुनते हैं। थोड़ी देर ध्यान से सुनिए ये गीत।

0: तुम्हारे बिन गुजारे हैं कई दिन अब ना गुजरेंगे। लता जी, मैं तो भूल ही गया था कि रफ़ी की आवाज़ भी इसमें है। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको ये शानदार दुएत सुनाए ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत दिनों बाद हमने ये गीत सुने हैं, 7-4-5 साल हो गया होगा, और शायद हमारे सहयोगी ने आपको सुनाया होगा, तो मेरा बदनसीबी है। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ।
1: दुनिया में जो ले हिम्मत से काम,
0: महेंद्र कपूर जी।

आपने सुने महेंद्र कपूर जी आपको सुनाए कि बड़ा आदमी कौन है, हमने निकाल कर आपको सुनाए इस तरह से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। आपको तो ये गीत हमें यही बताता है कि सूट बूट पहन लेने से, टाई यानी जैकेट जैकेट के ऊपर एक दास बांध लेने से, महंगा जैकेट पहनकर या कुछ सोने का चेन लटकाकर और बड़े गाड़ी में चलना, 70-80 हज़ार का गाड़ी में चलना, वो बड़ा आदमी नहीं है। बड़ा आदमी वो है जो दिल से है, किसी को चाहे, उनका दिल बड़ा है, पैसा बड़ा नहीं। तो यही गीत महेंद्र कपूर जी आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो हमने पेश की। चलिए अगला गीत इस तरह से आ रहा है। ये तो प्यार करने वाले सिखाते हैं कि कैसे प्यार किया।

की फिल्म उपासना में से निकाले हैं। हाँ आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूँ, लता जी और रफ़ी की आवाज़ में आपको सुनाएगा निगती एन सैफ तख। 1971 का ये गीत हमने पेश किया ओवर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

मित्रों, सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

मित्रों, जो बातें बतलाने जा रहा हूँ हमेशा की तरह ध्यानपूर्वक श्रवण करें और जीवन में उतारिए। ज्ञान इसीलिए बांटा जाता है कि लोग उसे सुनकर अपने जीवन में उतारें और न वैसे ही सुन करके साइड कर दे। नहीं मित्रों, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जहाँ बारिश ना हो मित्रों, जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो, जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल भी खराब हो जाती है। हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों के गिनती में आपका नाम ही नहीं है मित्रों। नहीं है, कैसे वक्त नहीं है। मैं प्रवचन दे रहा था, कहीं काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो लोग के हमने कहा कि दोस्तों तुम लोग समय निकाल कर प्रभु के लिए जरूर कम से कम आधा घंटा समय निकालो, एक घंटे का एक मिनट निकालो तो 24 घंटे में 24 मिनट हो जाएगा। तो लोग खड़ा होकर बोले, गुरु जी कहाँ से लाई समय हम लोग हैं। तो इसे सही समझिए। तो मैंने फ़ोन लगाए परमात्मा को, का नंबर मेरे पास है, लगाए मोबाइल फ़ोन, तो उसने उठाया, बोले क्या है प्यारे। हम बोले प्रभु हमारी जनता को कुछ समय होए तो और दे दो, क्योंकि यहाँ पे सभी को तंगी है, समय नहीं है। तो परमात्मा हमसे बोले, बेटा मेरे पास 24 घंटा है और आप लोगों की भी 24 घंटा है। मैं 24 घंटे में पूरी दुनिया को, सारी दुनिया, सारा संसार को चलाता हूँ और कभी समय कम ना हुए। और तुम लोग को भी 24 घंटा है और हमेशा समय कम है। तो मैंने कहा, प्रभु तो क्या प्रॉब्लम है। बोले तुम का प्लानिंग ठीक नहीं है, अपने समय का प्लानिंग ठीक नहीं करते हो, जाओ सुधारो अपने प्लानिंग को तो काफ़ी समय बचेगा। तो मित्रों, समय निकालिए अपने परमात्मा के लिए, और ये नहीं कहे कि वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। असल में उनके खास रिश्तों के गिनती में आपका नाम ही नहीं हो जाएगा मित्रों। तो बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, स्वाभिमान होना जरूरी है मित्रों, वरना लोग वहाँ भी आपको दबाने की कोशिश करेंगे। दमोदर क्यों, हाँ जहाँ आपका अधिकार है वहाँ दबाने की कोशिश करेंगे लोग, ऐसे है आज के ज़माना। आप भी यही काम करते हो, अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सही रूप से जीते रहो मित्रों। सुनिए, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य पुरुष भी, अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करता है। वह जो कुछ प्रमाण देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पथ चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। आप भी करते होंगे शायद ज्ञानियों के बात लेकर, पता नहीं, मैं जरूर कीजिए मित्रों। ज्ञानियों के बात लेकर अपने जीवन में अवश्य उतारिए, अन्यथा जीवन क्या है।

मित्रों, सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमेशा अच्छा रहना चाहिए, अच्छा मनीरी है। और जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते हैं, वे अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे सुख शांति है जीवन में तो ठीक, अगर नहीं है तो थोड़ा सोच विचार करो कि कहाँ गड़बड़ी है मित्रों। और ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है, उल्टा सोचते हैं। आप तो उल्टा नहीं सोचते हो ना, वो लौकिक और परलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है, गड़बड़ी होवत है, पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं। आप तो ऐसे नहीं हो ना, सोच विचार करो। और मरने के बाद वो

अपनी योनियों में नहीं जन्म लेना मित्रों, सुधारो जीवन को। हम ये नहीं कह रहे कि आप गड़बड़ जी रहे, मगर कहीं कहीं गलती हो तो उसे सुधारो, या घोर नरक में पड़कर भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती है। आई दायो फांसी मी माती, यो फांसी देंक खा दे।

दोस्तों, भजन के द्वारा आपको काफ़ी ज्ञान मिलता है ना, और यही हमेशा हम बोलते रहते हैं, ना सोचना कि बड़ा सुंदर बड़ा मोह मोह, उसे जीवन में उतारो। जब आप भोजन तैयार करते हो बहुत स्वादिष्ट माह के खुशबू, तो आप कहते हैं बड़ा लेकर स्मेल हो स्मेल स्वीती, तो ऐसे पेट ना भरे है, उसे खाओ। पेट में जाए तब स्वाद मिले, तब आप ढकार मारो घड़ाम से, बोले बहुत मीठा बहुत स्वादिष्ट रहा। इसी तरह ज्ञान भी अन्न है, यह आध्यात्मिक अन्न है मित्रों, इसे आप ग्रहण करो जीवन में उतारो, तभी कुछ न कुछ प्राप्त होंगे आपको। और जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत स्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अधिक रहता है, और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है मित्रों, तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारक बन जाती है। बुद्धि ठीक तरह से उपयोग करो, कर्म ठीक करो, भले ही पापी हो मगर बाद में कर्म ठीक कर तो करो, सब ठीक हो जाएगा मित्रों, और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आप सोचेंगे कैसे है ना, अभी बहुत लंबी बातें बताएंगे तो आप समझ पाओगे। जेहल मिलल है 50 बरिस के, अपने को सुधार ले लो जेहल में, तो खरासी मिले है, तो बोले अच्छा 5 बरिस में तू चल जा बाहर, तू बहुत अच्छा आदमी बाटे। ऐसे ही ये वो है, बड़ा पापी हो सुधार कर लो, तो भगवान बोले अच्छा मैं लुकू दो डे फिंगर है। तो जब तक तुम अपने से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है मित्रों। आपका भविष्य आपके हाथ में है, और कमजोर तुम नहीं मित्रों, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। हम भजन गाए एक दिन, रात बदलते हैं हालात बदल, सुने हैं ना आपने, उसे सुनो ध्यान, भजन का नाम है दिन रात बदलते हैं, सुनिए। और तो कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त होता है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ, सही कर्म करते जाओ मित्रों, और नोगो दू लाओ लाओ सानी, नोगो दू लाओ लाओ सानी, उसी ओ फासी।

दोस्तों, जिसने संकट कभी नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा, और जो दूसरों को तकलीफ को समझते हैं, दूसरे के तकलीफ को आप समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। मित्रों, तो आप जन्म दोबारा नहीं लोगे, बड़ा अच्छी बात है। तो धरती पर सब खलास हो जाएगा मनुष्य, तो आप धरती पर आना चाहते हो या नहीं, ये आपके हाथ में है। मैंने बतलाया अभी आपको कि कब धरती पर नहीं आएंगे आप। मित्रों, तो किसी को कुछ देकर, सुनिए ये भी एक उपाय है, किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, ना मीना हेयर कल हम दे ली है, तू कह देने वाला है, है? ये मैं मारन इंस्ट्रूमेंट। मित्रों, तो किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्मों का कर्ज चुका रहे हैं आप, कर्ज चुका रहे हैं। मित्रों, ये भी तो है ना, तो घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं, सब गायब हो जाए तोरबी की फांसी से, अहंकार से। मित्रों, और विश्वास ना हो, ध्यान करना, तू घमंडी है ना, तो विश्वास ना हो तो रावण को और कंस को देख लो। आप तो नहीं रावण हो या कंस हो, नहीं, हम ये आशा नहीं रखते हैं। मित्रों, आप अंश और रावण कभी हो ही नहीं सकते हो, अनोखा, और हो सके दम ऊंचाई मार हुई तो तोड़ तोड़ी है, तू जाना दम ऊंचाई मार हुई तो।

साथियों, किसी पर विश्वास करना हो, सुनिए, किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं मगर उनकी हरकतों पर, संस्कार पर, मनीरी पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से मित्रों जिंदगी और भी आसान हो जाती है, आसान हो जाती है। मगर आप तो झुकना नहीं चाहते हो, हैं? झुकिए, आपके बात नहीं बतला रहा हूँ, आपके पड़ोस के जो बगल में खड़ा है उनके बात बतला रहा हूँ मित्रों। और जो मनुष्य, ध्यान करना, जो मनुष्य जान लेता है वह जन्म मरने के बंधनों से मुक्त हो जाता है मित्रों, मुक्त हो जाता है। आप तो मुक्त हो जाओगे ना, हाँ। और जो मनुष्य भगवद गीता को पढ़कर, ध्यान करना, बहुत लोग हैं ये, जो मनुष्य भगवद गीता को पढ़कर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। बहुत लोग पढ़ते हैं भागवत गीता मगर उतारते नहीं हैं, कुछ कुछ लोग हैं और बाकी तो अकड़ के चलते, मीना लेरी मांग, मीना साबी मांग, दोंदर ऑफ मांग है। तो जो भाग्य में है मित्रों, जो भाग्य में है ना, वो भाग कर आएगा, आएगा चाहे जैसे हुकू बनाए के रोमाइन लेके आएगा तुम्हारे पास। और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा, भाग जाएगा। जैसे कुनकुनी बकरा बोले मैं नाम सहास, मतलब हम भागत हैं, जात हैं। तो जो भाग्य में वो मिलेगा, जो भाग्य में नहीं है तो का लड़ाई झगड़ा, का फेतफेती करत बाटो मित्रों। आराम से रहो, संतुष्ट करो और आगे देखते रहो भगवान तुम्हारे लिए क्या करेगा, क्या रखे हैं पैतों में मित्रों, भरोसा करो।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विदिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यसु सर्वदा।

ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

नमः माता पिता चरणम नमः विद्या प्रदायकम दीक्षम मंत्रम गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

की सेवा में मैं हूँ आपका सेवक संजय और आपके साथ जुड़ गई है। सभी को एक शुभ प्रभात कहता हूँ।

जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना किया जाता है भगवान से कि उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए। जिसके घर पे दुख है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपका दुख निवारण होए। जिनका घर में नया बच्चे ने जन्म लिए है परिवार को हार्दिक से स्वागत किया जाता है।

जो अपने तैयारी कर रहे हैं नौकरी के जाने के लिए, तो आपको कहा जाता है कि आपको अफाइन दाख्तु खवेंस। जो तैयारी में लगे हुए हैं स्कूल यानी कि अपने पढ़ाई की ओर बढ़ने के लिए, तो ये जरूर कहूँगा कि माँ सरस्वती को भूलना नहीं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जो अभी तैयारी कर रहे हैं अपने सफर के लिए या कहीं और जाने के लिए, तो ये मत भूलना कि श्री गणेश पहले तो आगे कार्यक्रम चलता है। जो और देश से हॉलैंड देश में और आए हैं फकांसी के लिए, तो आप सभी को हार्दिक से स्वागत किया जाता है। ऐसा सोचिए कि आप एक सुंदर सा देश में आए हैं। देशों में जो एक सुंदरता हॉलैंड के है, आप जरूर दर्शन करके दे आइए। और जो आज अपना मन में ये रख रहे हैं कि हमें अब सफर पे जाना है, हमें कुछ दर्शन करना है, तो जरूर आप अपना तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि कहते हैं कि ये सुंदर काया को हमें जो प्राप्त हुए हैं, इनके लिए तो देवताओं भी तरसते हैं। और जब तक ये सुंदर सा काया हम सबके है, हम ना सिर्फ सत्संग ना सिर्फ सफर पर जो चाहे और अपने सुंदर शरीर से यानी कि अपने जीवन में जो करना चाहे, पढ़ना लिखना कुछ भी करना चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि संतों ने कहा है कि किस कारण हम इस दुनिया में आए हैं, जरा सोचो सरा और समझो सरा।

कहते हैं कि आने के बाद एक दिन जाना भी है और जाना कहाँ है बस यही बात को पता नहीं है।

सभी को एक शुभ प्रभात कहते हुए कुछ भजनों के साथ कार्यक्रम को श्री गणेश करते हैं।

सुन वालों, कहते हैं कि केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होते हैं। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान, ये सभी ऐसा भाव है जो पराये को भी अपना बना देते हैं।

को मन से शक्ति देना। कहते जो चीज हाथ में ना हो उन्हें मन से भी आजाद कर देना चाहिए।

सुनने वालों सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। अब ये कहना चाहता हूँ कि आपका रेडियो इस समय चुन है फाहुन FM पे, जो इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक देशों में सुना जा सकता है।

जो इस समय तैयार हो रहे हैं अपनी नौकरी पे जाने के लिए या सफ़र कर रहे हैं, तो आपको बहुत सा और ये कहना चाहूँगा कि अंदाख फॉल फ्रुद। और गांधी जी का ये संदेश भूलना मत, उन्होंने ऐसा कहा था कि हमारे जो देश है हमारे लिए क्या कर सकते हैं ये सोचना कोई गलत बात नहीं है, पर हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं ये सोचना ये समझने वाला बात हो जाता है। गांधी जी का ये बात भी आपको जरूर ख्याल होगा कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो।

कहते हैं कि उदासियों के विजय तो बहुत है जिंदगी में, कहने के तात्पर है उदास होने का वजह तो बहुत होते हैं जिंदगी में, पर बेवजह खुशी रहने का मजा कुछ और है।

कहते हैं कि गरीबों की दुनिया जीने नहीं देते, पर इस बात पे किसी ने और कुछ लिखा है कि स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति इंजेक्शन की तरह होती है। स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति इंजेक्शन की तरह होती है, इसमें दर्द थोड़ी देर का होता है लेकिन फायदा जीवन भर रहता है।

बीतते की जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है। जिंदगी के हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है कि रास्ते कैसे भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। रिश्तों का बगिया में

सुनने वालों, ये फिल्म जो बनाया गया 1977 में, 1977 में बनाया गया फिल्म, एक फिल्म जिसमें बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया, जैसे कि विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, प्रवीण भाभी, शबाना आजमी, निरूपा रॉय, प्राण और जीवन।

एक फिल्म जो पिक्चराइज किया गया था जिसमें तीन बच्चे जो बिछड़ जाते हैं और फिर पालन पोषण जो अनेक अनेक संप्रदाय में होता है, एक जो जाकर के पुलिस बनते हैं, दूजा कवाली गाते हैं और तीसरा जो जाकर के बार कीपर बनते हैं। तो उसी फिल्म से एक और गीत हम निकालेंगे और आपके लिए रखने वाले हैं।

शिरडी वाले साई बाबा फिल्म जो बनाया गया 1977 में, कहा जाता है कि 184 मिनट तक, जिनका रन टाइम यानी कि कुछ 3 घंटा का फिल्म जो जिनका और रिलीज डेट 1977 में हुआ था, उस समय जो ये फिल्म बनाया गया था और जिनका लेखक खास करके कादर खान जी ने और ये फिल्म को फिल्म का राइटर कहलाए हैं, यानी कि उन्होंने फिल्म को जो डायलॉग से अपना और सजाए हैं और डायरेक्ट जो किया गया है मनमोहन देसाई के जरिए। सुन वालों, ये एक ऐसा सुंदर फिल्म जो बनाया गया था उस समय के बात है, जो काफ़ी और चला बॉक्स ऑफिस में और जा करके जिनमें बड़े बड़े एक्टर्स अपना सहयोग दिए, इनमें से सबका अपना अपना होता है। तो हमें जो उस समय का एक्टर हुआ करते थे जीवन, जिनका डायलॉग का और प्राण जो होते थे जो उस समय पे और अपना कला से प्रदर्शन करते थे, तो कितना खूबियाँ होते थे उसके। हम एक और इसी फिल्म से निकाला गया गीत रखने की कोशिश करेंगे।

अमर अकबर एंथोनी फिल्म से निकाला गया जिसमें मुकरी का रोल भी बड़ा अजीब था, प्यार का दुश्मन बना रहा। और ये सुंदर सा फिल्म जो निकाला गया 1977 में, जो एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी। सुनने वालों, हम अगला गीत जो आपके एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए एक सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ने वाले हैं,

ये फिल्म डायरेक्ट किया गया मनमोहन देसाई। कादर खान को जो जानते थे, जो परिवार में जिसे वो जुड़ा रहता था, तो उनको कहावत ये है कि अपना जब डायलॉग उनके लिखने के समय आते थे तो वो भारत छोड़कर हांगकांग चले जाते थे। वहाँ वो आराम से अपना डायलॉग्स आदि लिखते थे और फिल्म को और सजाया जाता था। सुनने वालों, ये स्क्रीन प्ले जो किए है वो है प्रयागराज शर्मा जी ने। इस फिल्म में म्यूजिक दिए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, अनंत बख्शी के लिखा हुआ लेरस बाय अनंत बख्शी।

ये फिल्म जो पिक्चराइज किया गया पुष्पा शर्मा जी का स्टोरी, पुष्पा शर्मा जी का स्टोरी आईडी, उनके आइडिया से ये फिल्म को और लिखा गया। जिनमें कुछ कलाकारों अब नहीं है दुनिया में, अगर शायद आप अभी ये फिल्म देखे नहीं होंगे तो मैं कौन होता हो आपके सजेस्ट करने के लिए। यूट्यूब पे आप जरूर देख सकते हैं, कुछ 3 घंटा का फिल्म। इसमें ये सीख हमें मिलते हैं कि शायद हमारे और हम अपने भाइयों के साथ बिछोड़ गए होंगे, बहनों के साथ बिछोड़ गए होंगे। आज वो परिस्थिति आ गया कि शायद एक दूसरे को देखने को और तरसते हैं। तो जरूर इस फिल्म को देखें और इस पे जरूर अपना जो 2 घोड़े होते हैं हमारे दिमाग में, एक का नाम पॉजिटिव और दूसरा का नाम नेगेटिव, उनके इसके बारे में सोचने के अवसर दीजिए। क्योंकि कहा जाता है जिसके आप ज्यादा खुराक देंगे वो ही जीतेगा।

सुनने वाला, ये फिल्म याराना से निकाला गया ये सुंदर सा गीत, एक फिल्म जो 1981 में रिलीज हुआ, 1981 में रिलीज हुआ ये फिल्म, जिसमें स्टारिंग अमिताभ बच्चन, अमजद खान, नीतू सिंह, तनुजा और कादर खान अपना कला से प्रदर्शन दिए। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि याराना वही होता है। इस गीत को जब हम चलाते हैं तो हमें भी इस बार को हर बार याद आ जाते हैं कि हमारे पुराने रेडियो का कलीगा जैसे महेंद्र भाई, मित्र मनोज और इसी प्रकार से कितने जो दोस्तों अब साथ में नहीं है, तो जो साथ में है उन्हें हम जरूर याद करें और उनसे मिलते रहे, क्योंकि कहा जाता है हम मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। एक और सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

एक और फिल्म जो फिल्म 1981 में बनाया गया था, नसीब फिल्म से एक सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है।

0: आपने तो कहा था कि
1: ठीक ही तो कहा था, 5-स्टार होटल में रहता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ। ये वो साहब है ना, उन्होंने ये चिट्ठी दी आपको, रात को खाने पे बुलाया।

ये गीत जो निकाला गया फिल्म का नाम नसीब, जो 1981 में रिलीज हुए 1 मई 1981 को, बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर हिंदी रोमांटिक म्यूजिकल मूवी जिसका डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी ने बड़े बड़े एक्टरों के साथ और इसमें काम किए, जैसे कि अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रीना रॉय, किम प्राण, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर।

कहते हैं कि दोस्ती इंतहाम लेते हैं दोस्तों, पर ऐसा ना हो, क्योंकि कहा जाता है कि चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं मिलता, अपने किरदार से इंसान खुद महकता है।

जिंदगी आ बैठ, है जिंदगी आ बैठ, कहीं चाय पीते हैं, तू भी थक गए होंगी मुझे भगाते भगाते। सुनो लो, मैं हूं आपका सेवक संजय और यहां तक मैं आपके साथ जुड़ा रहे। आशा ये रखता हूं कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ चलाया गया। और यही आशा करता हूं कि कुछ ना कुछ आपको अच्छा जरूर लगे होंगे। सुनने वालों, अगर आपको कोई ऐसा लगा हुआ होगा कि हमें अब अपना और सफ़र की ओर करना है, यानी कि सफ़र करना है अपना, और कोई प्रकार से जैसे भारत और ऐसे मलेशिया, कितने सुंदर सुंदर देश हुए जहां देखने के चीज़ बहुत है, जैसे कि कहीं भी जा सकते हैं और अपना सफ़र करने के, यानी कि फकंसिफिरन

जरूर अपना ध्यान रखना और ये बात मत भूलना, सबको अपने कर्मों का पता होता है, यूं ही गंगा पर भीड़ नहीं होता। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।

0: तुंडा महाकाया सूर्यकोठी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। रुब्ररु मिलने का मौका नहीं पा रहा हूँ, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमन करता हूँ। सुनवालो, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, हम कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर आपके साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं भारत देहरादून से हमारे मास्टर जी, जिनके जरिए ये कार्यक्रम बनाया गया शुरुआत में और आज तलक भी चलाया जाता है कितने सालों से। तो दोस्तों सुनने वालों, मास्टर जी आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है और वेलकम किया जाता कि आप समय निकाल करके देहरादून से और हम लोग के साथ कनेक्ट हो गए हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, फोन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम में हम लोग बहुत समय से कार्यक्रम कर रहे हैं और जो हमको सुनते हैं फोन हिंदुस्तानी रेडियो के श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। जैसे कि आज से सावन यानी कल से जो 29 तारीख थी गुरु पूर्णिमा, वो रात को बुध वो गुरु पूर्णिमा का जो फुल मून होता है और उसके अगले दिन सोमवार वो अगले दिन से सावन शुरुआत मानी जाती है, मतलब उसी दिन से मानी जाती है लेकिन अगले दिन भी उसमें जुड़ जाता है। तो हम लोग आज सावन के बारे में बात करेंगे, श्रावण मंथ,
0: श्रावण मास। तो मास्टर जी ये वो समय है जहां पर लोग कावड़ लेकर के और चलना शुरू कर देंगे ना?
1: जी जी जी जी जी,
0: ऐसा
1: तो आज से शुरू हो गया है,
0: आज से निकल गया।
1: हाँ
0: तो मास्टर जी क्यों ना वही गीत के और पहले चलाते हैं जो हम लोग हर सप्ताह कार्यक्रम में रखते हैं।
1: हाँ क्यों ना वही गीत एक बार चला दिया जाए और फिर हम कार्यक्रम जारी रखेंगे, तब तक लोग थोड़ा सा गीत का आनंद भी लेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तेरा राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे।
2: जो रमता सकल जहां

0: काहे को डरे। दोस्तों सुनने वालों, यहाँ जो कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश चल रहा है, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे मास्टर जी भारत से। तो श्रावण का महीना पावन करे शोर, ये गीत तो सभी जानते हैं, फिर भी अभी हम सब ये श्रावण महीना का कार्यक्रम जो होने वाले है, इस अंतर्गत में और भी संदेश सुनने वाले हो, तो मास्टर जी क्या सुनाने वाले हो आप देहरादून से हम लोग को? यहाँ जो लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है दनहाक शहर से, दुनिया के हर एक देशों में इंटरनेट द्वारा सुना जा सकते हैं, क्या संदेश रखने वाले हो आप?
1: जो साउंड हिंदुस्तानी रेडियो के श्रोता हैं, वो जब हमारा ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम सुनते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, इसमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इसी प्रकार आज का जो कार्यक्रम है वो भी यही है कि सावन की विशेषता क्या है। सावन की विशेषता में यही है, श्रावण मंथ जो होता है हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास से प्रारंभ होने वाला वर्ष का पांचवा महीना है। यानी आज पांचवा महीना है उसका होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ऐसे ही इसका भी होता है चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन। तो हिंदू पंचांग के अनुसार है पांचवा महीना है
0: ऐसा।
1: हाँ जी, भारत में इसमें वर्षा ऋतु होती है, इसमें भारत में दो महीना खूब बरसात चलती है और प्रायः बहुत अधिक गर्मी होती है। आप तो जानते हैं कि भारत में गर्मी कितना होता है।
0: जी जी जी,
1: तो बरसात होती है तो गर्मी भी होती है।
0: बिल्कुल,
1: तो बरसात नहीं होगी तो गर्मी कैसे होगी?
0: सही बात।
1: और बरसात गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो भारत में भरपूर मात्रा में ले लो, तो उसी का आनंद है बरसात का और गर्मी का दोनों का। इस महीने में सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है ये महीना। सावन महीने के दौरान सोमवार का दिन शुभ होता है और ऐसा माना जाता है यदि भक्त समर्पण के साथ भगवान शिव की पूजा करे तो भगवान शिव उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। श्रावण महीना शिव जी को विशेष प्रिय है। भोलेनाथ ने स्वयं कहा है

0: सर्वनोमतः
1: श्रावणक्षापूर्णमास्यं तदूपी श्रावणस्मृतम् यस्य श्रावणमात्तीर्णं सिद्धिदा श्राणोऽस्मृतः।
0: यानी मासों के श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है, महीनों में जो श्रावण है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा जाता है। इस मास में श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रावण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। इस महीना में आप लोग अगर कोई कम समय में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो उसको श्रावण के महीने में करना चाहिए और बहुत कम समय में सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें पर्व त्योहार और व्रत भी होते हैं। श्रावण कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा है, पार्थव शिव पूजा प्रारंभ होती है। श्रावण कृष्ण पक्ष में पंचमी यानी पांचवा दिन मौना पंचमी है और एकादशी ग्यारहवां दिन में कामदा एकादशी व्रत होता है और त्रयोदशी प्रदोष व्रत है। अमावस्या में हरियाली अमावस्या हरेला पर्व भी मनाया जाएगा और इसमें पूजा विधि है किस प्रकार करना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि भोलेनाथ की पूजा और व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। जिन लोगों का विवाह हुआ है वो अगर पति पत्नी दोनों मिलके पूजा करें भगवान शिव की तो उनका जीवन एकदम सुखमय हो जाएगा। और वही अविवाहित लड़कियां को मन चाहे वर की प्राप्ति होती है और अगर लड़की है कोई अविवाहित उसको इस महीने व्रत करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, उसको अपना मन माना यानी मन चाहा उसको वर मिल जाएगा।
2: मास्टर जी तो ये कहने के तात्पर्य यह है कि अविवाहित माने तो
0: अविवाहित का माने जिनका शादी नहीं हुआ।
2: ऐसा
0: हाँ, एक होता विवाहित एक होता अविवाहित।
2: ओके जी।
0: तो जो अविवाहित है लड़कियां लड़कियों के लिए खास करके वो भोलेनाथ का अगर पूजा करती है

0: बिल व पत्र वो यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं पान के पत्ता, तुलसी का पत्ता, पर बिल व पत्र का बारे में थोड़ा से बता दो मास्टर जी।
1: हाँ, बेल का पत्ता एक होता है, तीन उसमें एक पत्ते में तीन पत्ते लगे होते हैं
0: जी,
1: और तीनों पत्ता वो भगवान शिव को चढ़ते हैं पत्ते, और उसका फल भी बड़ा अच्छा होता है, उसका फल साल भर बाद पकता है पेड़ पे, अभी लग गया तो अभी वो जून में, अगले जून में पकेगा। तो भगवान शंकर को बेल का पत्र बहुत पसंद है।
0: ऐसा
1: जी, तो ये सब चीजें बिल्व पत्र हो गया, धतूरा हो गया, भांग हो गया, बेर हो गए, पंच फल, पांच प्रकार के फल, पंच मेवा, पांच प्रकार के मेवा, मदार पुष्पम, कच्चा दूध, कपूर, दही, दूध, रुई, मलाया गिरी, चंदन, शुद्ध देसी घी, मौली, जनेऊ, पंच मिठाई, पांच प्रकार की मिठाई, शहद, गंगा जल, शिवुआ माँ पर पार्वती का श्रृंगार सामग्री से पूजन करना चाहिए। और इसमें कावड़ जो है, इसमें आज से कावड़ भी शुरू हो गया है, तो कावड़ का मतलब है जो गंगा जल दूर दूर से लोग आते हैं और ये गंगा जल भर के पैदल जाते हैं और फिर 15 दिन बाद उसको चढ़ाएंगे वहां, कहां, मंदिर में शिवलिंग पे। तो ऐसी मान्यता है कि जो ये काम करता है 2 बार कर लेगा तो उसकी मनोइच्छा पूर्ण हो जाती है। तो ये महीना जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, जो सावन का महीना है, तो इस प्रकार के बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, क्यों ना हम एक नगमा की तरफ बढ़े जो कि सावन का महीना का ही है।
0: तो चला देते हैं मास्टर जी एक गीत।

0: गीता रबारी के आवास में हम सब सुने दोस्तों, श्रवण मास के अंतर्गत जो संदेश हमारे मास्टर जी देहरादून से हम सबके साथ जुड़े हुए हैं और हम सबके और भी संदेश सुनाने वाले हैं। मास्टर जी, और क्या संदेश श्रावण मास के अंतर्गत आप रखने वाले हैं?
1: श्रावण मास के अंतर्गत जो है, जो इसमें एकादशी आती है, एकादशी आप जाने के एकादशी क्या चीज रहे?
0: मास्टर जी, एकादशी एक और दस ऐसा है ना
1: जी,
0: तो पर आप उस पर थोड़ा से उस पर दृष्टि डाल दीजिए, क्योंकि हमारे सुनने वालों के लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा।
1: हाँ, जो एकादशी आती है इस महीने में, भगवान कृष्ण ने एकादशी को भी व्रत किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, एकादशी का जो व्रत विधान बताया है वह इस प्रकार से है, एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर, यानी स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा विधि पूर्वक करना चाहिए, निर्जल व्रत रखकर पुराण का श्रवण अथवा पाठ करना चाहिए, रात्रि में निर्जल व्रत रखे और भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें, रात्रि में प्रतिपहर विष्णु और शिव की पूजा करें, प्रत्येक पहर में भगवान को अलग अलग भेंट प्रस्तुत करें, जैसे प्रथम पहर में नारियल, द्वितीय पहर में बेल, तृतीय पहर में सीताफल और चौथे पहर में नारंगी और सुपारी निवेदित करें। तो जो भगवान शंकर का ये जो मंत्र है, इसको शिव मंत्र बोलते ज्यादा करके लोग, तो उसमें अगर ये व्रत किया जाए तो बहुत उपयोगी माना जाता है। द्वादश के दिन यानी अगले दिन 12वें दिन में भगवान की पूजा करें, फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करें, इसके पश्चात स्वयं भोजन करें।
0: ऐसा?
1: हाँ, ब्राह्मण को हर समय दक्षिणा देना चाहिए। कभी भी कोई अगर ब्राह्मण को भोजन भी करवाना है तो वो भोजन की भी दक्षिणा देनी चाहिए ब्राह्मण को, कि आप आए हैं हमारे यहाँ भोजन करने के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भोजन करके जल देके दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। ब्राह्मण को हर समय खुश रखना चाहिए। ब्राह्मणे मुखमासी, यानी ब्राह्मण जो है ब्रह्मा का मुख है, भगवान का जो है मुख ब्राह्मण है।
0: ब्राह्मणो मुखमासी।
1: हाँ,
0: अच्छा।
1: तो ब्राह्मण को हर समय प्रसन्न रखना चाहिए। ब्रह्मराजो मुखमासी बोलते हैं ना
0: जी,
1: तो यही है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रकार एकादशी का व्रत करने से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, व्यक्ति जीवन में सुख होकर श्री हरि के लोक में स्थान प्राप्त करता है। जो मनुष्य है अगर इसमें उपासना करे, सावन के महीने में एकादशी का व्रत करे, तो वो सुख पाता है। और वो कहाँ जाता है? भगवान विष्णु के सीधा डायरेक्ट वैकुंठ लोक जाता है।
0: ऐसा
1: जी। अब संजय जी, आपका कोई प्रश्न है सावन के महीने में तो आप पूछ सकते हैं।
0: बस ये है कि जो संदेश, अब ये मैं कहना चाहूँगा कि शांता जी भी उपस्थित हो गए स्टूडियो में और भाई जॉनी जी भी उपस्थित हो गए स्टूडियो में, ये श्रावण मास के अंतर्गत में जो आप संदेश रखे, पर मास्टर जी देखिए कितने लोग हैं जो श्रावण मास में होलांत में भी ये और व्रत करते हैं, तो सबसे सूक्ष्म स्वरूप से किस प्रकार से लोग पूरा मास और जा करके और कार्य कर सकते हैं?
1: तो इसकी सरल विधि यही है कि सावन के महीने में जो सोमवार आता है, चार सोमवार आएंगे इसमें,
0: चार सोमवार।
1: हाँ, तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें व्रत करना चाहिए,
0: व्रत
1: विधि विधान व्रत करना चाहिए और उसमें पूजा पाठ करना चाहिए। ब्रह्म जब शाम को अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत खोलते हैं तो ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, भोजन पहले ब्राह्मण को कराना चाहिए, फिर स्वयं करना चाहिए। व्रत का मतलब ये है कि उस दिन अन्न नहीं खाना है, जल और फल ले सकते हैं। अगर निर्जला हो तो बहुत अच्छा, अगर कुछ लोग क्या करते हैं कि जल फल भी नहीं लेते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन जो नहीं कर रह सकते ज्यादा भूखा, किसी को दवा खाना है, किसी को कुछ करना है, तो वो पानी ले सकते हैं, कारने मिल्क ले सकते हैं, और ये अपना लिक्विड जूस ले सकते हैं। इस प्रकार से व्रत अन्न अन्न न खाएं, बस ये मेन उद्देश्य है कि इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए।
0: अच्छा मास्टर जी,
1: चावल नमक ये सब ना खाएं,
0: चावल नमक ना खाएं। हम एक मास्टर जी क्यों ना हम एक गीत के और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये श्रावण मास अंतर्गत तो संदेश और आगे बढ़ाया जाए।
1: जरूर जरूर।

0: गीत जो श्रावण का अंतर्गत में और हम चलाए आपके लिए रखे सुनने वालों भूपेंद्र सिंह जी के आवाज में और मास्टर जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। तो मास्टर जी अब ये श्रावण मास में ये बताइए मास्टर जी कि ये मास में क्या हम अपने पितरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए?
1: श्रावण के महीने में खास करके पितरों के उद्धार के लिए ही बहुत अच्छा माना जाता है। जो जो पितर होते हैं उनके लिए स्पेशली यही महीना है।
0: और पितरों माने तो मास्टर जी ये भी थोड़ा से समझा देना क्योंकि शायद कुछ लोग हैं जो शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे कि पितरों बोले तो क्या, तो पितरों है जो जो अब इस दुनिया में नहीं है ना मास्टर जी?
1: हाँ, पितरों का मतलब है कि जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वज मतलब दादा हो गया, नाना हो गया, दादी हो गई, वो इस दुनिया में इस समय नहीं है लेकिन वो हमारे पूर्वज थे, तो इसलिए उनको विशेष स्थान दिया गया है। और अगर पितर प्रसन्न हो गए तो सारा काम बहुत अच्छा हो जाता है।
0: कहते हैं कि पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, इस पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए ना?
1: बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण जो है इस महीने में अगर आपने सावन के महीने में पितरों के लिए कर लिया, क्योंकि पितरों के लिए सरल काम नहीं, बहुत सारी मेहनत लगती और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, तब पितरों का पूजा होता है। 21 ब्राह्मण बैठते हैं, 11 ब्राह्मण बैठते हैं,
0: ऐसा
1: फिर पितरों का उद्धार होता है। और उसके लिए पितरों के लिए कहाँ पे करते हैं, या तो तर्पण देते हैं, तर्पण या तो फिर तर्पण घर पे ही दे सकते हैं। और दूसरा जो है पितरों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि तीर्थ स्थान पे जाते हैं,
0: तीर्थ स्थान पे जाते हैं
1: वहां पिंड भरते हैं पितरों के लिए, और वो पिंड भरते हैं और सीधा डायरेक्ट वो पितर हमारे प्रसन्न हो जाते हैं उन पिंड भरने से,
0: ऐसा।
1: तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि जब पितर प्रसन्न हो गए, पिंडदान हो गया, और फिर वो पितरों तक पहुंच जाता है, यानी जहां भी वो है वो वहां प्रसन्न हो जाते हैं। जब वो पितर खुश होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती है। तो पितृ ऋण जो है जरूर उतारना चाहिए, ये विशेष करके यही महीना में उसका पूजा पाठ होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जिन लोगों को हॉलैंड देश में वो कराना है तो आप पंडित लोगों से, आप लोगों से संपर्क करके अपने पितरों के उद्धार के लिए ये जरूर करना चाहिए। और ये महीना बहुत ही विशेष है, जैसे विधि विधान से करना है तो उनको तो वो बड़ा लंबा आना पड़ेगा भारत, तो तीन जगह उसके लिए, पहली जगह है उसके लिए विष्णुपाद यानी गया जी में,
0: गया एकदम बिहार के साइड ना मास्टर जी?
1: जी जी जी, बिहार में वहां होती है पैरों की पूजा, उसको बोलते हैं विष्णुपाद। भगवान राम ने भी राजा दशरथ जो उनके पिता थे उनका पिंड भरे थे वहां उस जगह पे,
0: ऐसा।
1: हाँ, और फिर दूसरा होता है छाती का, वो होता है काशी में, और तीसरा होता है वो होता है सिर का, वो होता है बद्रीनाथ में। तो जिस प्रकार जो लोग शुरुआत करनी चाहिए वहां से, फिर यहां, फिर बद्रीनाथ लास्ट, उसको बोलते हैं ब्रह्म कपाली। तो फिर पूर्ण रूप से पितरों का कार्य हो जाता है जब ब्रह्म कपाली में कर लेते हैं। इसके बाद पितरों का तर्पण नहीं देना कभी नहीं, क्योंकि वो एकदम मोक्ष हो गया।
0: ऐसा लोग अपने पितरों के लिए कर सकते हैं यानी कि?
1: जी जी जी, ऐसा कर सकते हैं। और जो लोग ये नहीं कर सकते हैं वो लोग क्या करना है कि उनको अपने घर पे ब्राह्मण को बुला के तर्पण करना है, दूध, तिल, जौ और घी पंच में पंच जो मैंने अभी विधि विधान बताया उसके अनुसार वो सब अपने घर में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो काफी लंबा हो जाता ना, तो जो लोग इतना नहीं कर सकते वो वहीं से कर सकते हैं अपने घर से पितरों के लिए।
0: सूक्ष्म रूप
1: में बहुत विशेष है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस प्रकार से करें, और क्यों ना हमें सुंदरता जो सावन का महीना है, पलम नाची मोर, मोर भी इस महीने में नाचते हैं।
0: बिल्कुल, तो हम वो गीत चला देते हैं मास्टर जी।
1: हाँ, जब मोरों को भी पसंद है तो क्यों नहीं चलाया जाए।
0: बिल्कुल जरूर।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

जियर अरे झूमे जैसे जैसे कौन नाच रहा है। और मास्टर जी ने जो अभी संदेश को रखे कि श्रावण मास, ये मास जो है कि लोग अपने घर पे, और जो कहा जाता है कि एक बन हेल मांत श्रावण फेख तारीस, इन बातों पे ध्यान देते हैं। और इस मास में जो कि ख़ास करके मास्टर जी ने अभी संदेश को रखे कि सोमवार व्रत किस प्रकार से करना चाहिए और अपने पितरों के लिए क्या कर सकते हो आप, सभी पे मास्टर जी ने खूब ढेर सारे संदेश को रखे हैं। हम कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं।

जा रहा है श्रावण मास के अंतर्गत। और दोस्तों सुनने वालों, आज संदेश को रखा गया इस अंतर्गत में हम एक और लखबीर सिंह के आवाज़ में एक कावर अंतर्गत सुंदर सा गीत को सुनेंगे।

0: सुनने वालों, ये ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम जो आपके लिए हम सब रखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत से और अनुराधा चंद्र जी, जो अपना संदेश रख चुके हैं कुछ, और कुछ संदेश अभी बाकी है ना अनुराधा जी, तो ज़रूर अपना संदेश को हम सब के लिए और रखिए, क्योंकि अभी तो कुछ संदेश बाकी है।
1: चलिए आगे बढ़ा जाए और जानते हैं कि ऐसी क्या क्या बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अक्सर हम किसी की कोई चीज़ पसंद आती है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं और अच्छा लगता है कि आप किसी को जो अच्छा है तो उसकी प्रशंसा करें, पर याद रखें कि जरूरी हो तभी निजी तौर पर आलोचना करें। ऐसा नहीं कि आप देखिए, बहुत बार होता ना, हम प्रशंसा तो कर देते हैं, हम कहेंगे ओहो ये तो कैसा, मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं कुछ उसके लिए, आप दिल से तो उसके लिए अच्छा चाहते हैं, पर कभी कभी आप ऐसा बोल देते हैं और वो आलोचना जैसा लगता है, क्रिटिसिज्म जैसा, तो ये सोचना चाहिए आप किसके सामने ऐसा बोल रहे हैं, और कभी कभी अपने आप को चाहते हुए भी ना रोक लेना चाहिए। ऐसा अच्छा नहीं लगता कि कभी कभी मिलते हैं किसी से तो अच्छा ही है कि थोड़े दो शब्द अच्छी बातें ही बोले उनके हैं। और देखिए ऐसा होता है ना, कभी कभी आप किसी को मिले, अब वो इंसान को आप, आपका कितना ही अच्छा दोस्त हो या जानने वाला हो, और आप मजाक में कह देते हैं कि भाई उसके वजन को, किसी का वजन ज़्यादा है। देखिए कम वजन है तब तो अच्छा है लगता है इंसान को, पर आप किसी को अचानक कह दें भाई तुमने तो, तुम तो बहुत मोटे लग रहे हो, तुम तो, तुमने तो बहुत वजन ज़्यादा बढ़ गया है। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये बातें किसी को मन में लग जाती हैं, और ये बातें ऐसे नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो इंसान कोशिश कर रहा हो अपना वज़न घटाने का, या हो सकता है आप किसी को कहते ओ तुम तो बहुत ही कितने, क्या हो गया, दुबले से लग रहे हो, हड्डी का ढांचा लग रहे हो, क्या हो गया, पतले से हो गए हो, तो आप नहीं जानते, हो सकता है उनको कोई तकलीफ हो, कुछ हो, तो ये सोच लेना चाहिए। और बस आप ऐसा बोलें कि देखिए, आप ऐसा बोल दें कि ओ भाई तुम तो बहुत ही आज शानदार दिख रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है ना, दूसरा इंसान को मन में ये सुनकर अच्छा लगता है। तो हर समय जरूरी नहीं कि आप सोचें हम तो सत्यवान होकर हम हर चीज़ सच बोलेंगे। देखिए सच भी कभी कभी तोल मोल कर बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए खुलकर, तो क्योंकि कभी किसी को ठेस लग सकती है दिल में। तो ये सब बातें ख्याल रखनी चाहिए कि क्या क्या बात करें। अच्छा ये तो हो गई वजन वाली बात, किसी को क्या ऐसा क्या बोले नहीं बोले। पर देखिए बहुत बार होता है ना, हम हमने फोटो ली किसी से कैमरे में, मोबाइल में, और झट से हम उस इंसान का, चाहे वो हमारा कितना ही प्रिय मित्र क्यों ना, हम एकदम से उसका मोबाइल खींच कर कहते हैं भाई दिखाओ तुम्हारे मोबाइल में कैसे ये फ़ोटो कैसी आई है, बताओ ये जो फ़ोटो ली कैसी आई है। और आप वो तो फ़ोटो देखते हैं और उसका फ़ोन अपने हाथ में पकड़ कर दाएं और बाएं एकदम से आप स्वाइप करने लगते हैं। तो देखिए याद रखें ये बहुत ही गलत आदत है कि कभी भी, हर इंसान का जो मोबाइल होता है उसका अपना निजी मोबाइल है, उसका उसमें निजी कुछ भी और तस्वीरें हो सकती हैं अपना है, तो ये अच्छा नहीं है। वो इंसान आपको खुद दिखाए तो ठीक है, पर आपको ये नहीं कि अपना दूसरे का मोबाइल पकड़ के लेफ्ट राइट आप दाएं बाएं करके स्वाइप करें और ऐसा करें, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब दिखता है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए आइंदा से, याद रखें। ये हम भूल जाते हैं पर ऐसा करना नहीं चाहिए, ये याद रखें। तो और भी ऐसे कोई बहुत बातें हैं, देखिए क्या होता है, आप कभी किसी से मिलते हैं और आपको लगता है ओ मैं तो बहुत मेरा जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को बहुत समझते हैं कि भाई देखो ये तो छोटा सा है, छोटी मोटी नौकरी करता है, मैं तो काफ़ी सीनियर हूँ, ये तो मेरा बहुत जूनियर है। तो याद रखें कि अपने से भी जो जूनियर है, नीचे काम करने वाले हैं, कोई भी ऐसे लोगों से आप अगर मिलते हैं तो उनके साथ हमेशा सम्मान के साथ व्यवहार करें, हैं, ये नहीं कि अपना अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं। इंसान का आप कितने भी बड़े हों पर बड़प्पन आपका तभी है जब आप जो आपसे भी छोटे जो हैं उनका आप आदर सम्मान करें, और उसी में आपका बड़प्पन झलकता है, और आप जब दूसरे का आदर करते हैं है, और उनका सम्मान करते हैं। देखिए बहुत बार होता है ना, हम लोग ये भूल जाते हैं, कभी हम किसी के साथ बाहर जाते हैं, और ये आजकल बहुत ही आम है कि हम मोबाइल लेकर 24 घंटे बैठे रहते हैं। अब मोबाइल है तो बैठेंगे ही, चाहे ट्रेन हो इधर है, चलिए जब तक कि आप अपना खुद से बैठे हैं मोबाइल लेकर तब तो ठीक है। पर बहुत बार होता है हम कहीं बाहर खाना खाने गए हों या किसी दोस्त के साथ बाहर बैठे हों और आप आपस में वो आपसे बात कर रहा है और आप अपना बस मोबाइल लेकर बैठे हैं और अपने मोबाइल में ही आप उससे सीधे मुँह बात नहीं कर रहे हैं और बस अपना जो समय है बस मोबाइल में कुछ कोई आपका ये आ गया कॉल आ गई या आपका मैसेज आ गया। ये याद रखें कभी भी आप किसी के बाहर जाते हैं तो अपना मोबाइल साइलेंट कर दें अपने और मैसेज उस समय ना देखें। जो फ़ोन आ रहा है वो बाद में आप अटेंड कर लें। बहुत तो ये बहुत ख़राब लगता है कि आप जब उस समय आए हैं ना उस व्यक्ति के साथ अपना समय व्यतीत करें, ना कि मोबाइल में लगे बैठे। ये बहुत एक तरह का बुरा व्यवहार समझा जाता है कि जब ऐसा इंसान करता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जिस इंसान से मिलने आए हैं उसके साथ आप टाइम अपना वक्त व्यतीत करें। तो बहुत बार होता है कि आप देखते हैं कि भाई कोई दो लोग बात कर रहे हैं या कोई देख रहा है कि वो किसी इंसान से दूसरा इंसान पूछ रहा है भाई सलाह कुछ बातें कर रहा है और आप सुने जा रहे हैं और आपको लगता है कि ओह भाई ये क्या उल्टी पुल्टी बात कर रहा है, ये तो है मैं अपनी सलाह देना चाहता हूँ। याद रखें कि जब तक आपसे कोई सलाह ना मांगी जाए आप बेहतर है कि आप चुप रहें, बिन मांगे सलाह ना दें, क्योंकि जब कोई आपसे मांगे तभी आप अपनी सलाह दें, ना मांगने पर चुप ही बैठना अपने अकलमंदी का अकलमंद इंसान का वही होता है जो मांगने पर ही सलाह दे, ना मांगे तो चुप बैठे। तो ये देखिए जब किसी से लंबे समय के बाद आप मिल रहे होते हैं ना, जब तक वे इसके बारे में बात ना करें तब तक उनसे उनकी कभी भी, जैसे मैंने पहले भी बोला, उनकी उम्र और वेतन यानी कि सैलरी कभी ना पूछें। ये बहुत व्यक्तिगत एक होता है और औरतों के साथ तो बिल्कुल भी, ये बहुत महिलाओं के साथ कभी भी उनकी उम्र का नहीं पूछना चाहिए। मजाक में आप कितना भी पता लगाना चाहें पर ये कभी मुंह के सामने ऐसा नहीं हो, अपने तरफ से कोई बताए तो ठीक है पर कभी आप ऐसे भूल ना करें कि मुंह में आप एकदम से कहें कि भाई बताओ, और अपना काम से काम रखें। देखिए जब किसी से आप बात कर रहे होते ना तो भले ही आप धूप में घूम रहे हैं और आपने धूप का चश्मा लगाया हुआ है तो सही है, क्योंकि क्यों ना लगाए, धूप है तो आपने चश्मा लगाया है, परंतु याद रखें, जब आप कभी किसी से जब बात कर रहे हैं व्यक्तिगत तरीके से, आप किसी से आप बात करते हैं, तो ध्यान रखें कि हमेशा अपना काला चश्मा निकाल लें जब भी आप किसी से आमने सामने बात कर रहे हैं। ये एक सम्मान की निशानी होती है। नेत्र संपर्क यानी कि आँखों से आँख में डालकर हमेशा बात करनी चाहिए, और नेत्र संपर्क आपके भाषण में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है। तो आप चश्मा पहनकर करते तो हैं, पर हमेशा याद रखें जब किसी से बहुत व्यक्तिगत तरीके से बात करें तो ये एक तो चलते फिरते हो गया चश्मा पहना है, कोई बात नहीं, आपने हेलो हाय कर दिया, पर अगर आप किसी से बिल्कुल आमने सामने पास से बात करें तो हमेशा चश्मा, अपना काला चश्मा ऊपर करें और बिना चश्मे के आमने सामने बात करें। ये एक एक एक तहजीब है, एक अच्छा तरीका है जो हमें अपनाना चाहिए है। तो क्यों ना संजय जी थोड़ा सा एक और सुंदर सा प्यारा सा अच्छा सा गीत सुना जाए, और फिर मैं आगे और बहुत सारी बातें बतानी है लोगों को, तो फिर आगे चढ़ेंगे। चलिए गीत सुनते हैं।
0: अनुराधा जी बिल्कुल, मैं एक सुंदर सा गीत को चुन करके रख लिया है, पर यहाँ शांता जी भी बैठे हुए हैं तो ये प्रश्न मैं और रख देता हूँ, क्योंकि बड़ा कुछ ज्ञान के और कुछ ध्यान के जानने वाले बात के अंतर्गत आपने और रखे हुए हैं। तो शांता जी, ये अभी जैसे मैंने सुना कि महिलाओं यानी कि फ्रॉवों को उम्र उनके नहीं पूछना चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
2: आप मेरी से सवाल पूछ रहे हो?
0: अब स्टूडियो में तो आप ही बैठे हुए हैं।
2: हाँ वो तो सही है, मैं तो बैठी हूँ आपके साथ यहाँ स्टूडियो में, क्यों नहीं पूछना चाहिए?
0: क्योंकि अभी तो हमने सुना ये बात,
2: तो अनुराधा से पूछना पड़ेगा।
0: अनुराधा जी अभी आपके इसके बारे में कुछ और देना चाहिए और भी शायद संदेश रखना चाहिए, क्योंकि ये zijn hele bijzondere dingen die je als het ware je moet ze allemaal kennen.
2: Zeker.
0: Maar toch, het lijkt alsof wel no, soms hem aanjaan, karila ki hem aanjaan he un baaton pe. Jabki in sab baaton ko hamme janna chahiye. Hamme bachpan se sikhaya jata hai.
2: Ek bahut acha baat kahi hai Anuradha ji ne. कि अगर आप कोई से बात करते हो ना व्यक्ति व्यक्तिगत असि मैं इमाता अनत प्रात बैंत एन यू हैव अ सोनोब्रेल ओप हैट इज हेल नेचर्स ओम दैट फन यू ओह ऑफ द सेट सो दैट यू होन द ओह कांटेक्ट है बेस हेल रिस्पेक्टफुल।
0: हमने देखा कि कभी एक व्यक्ति भी है जो जो कैसे बोले दांत प्रोटीज लगाते हैं ना, तो वो प्रोटोइस अपने मुख में नहीं रखे हुए थे तो अपना हाथ आगे करके बात करता है हरदम, तो ऐसा भी कुछ देखो अब सिखाया गया है जिसे हम ओक नेचर्स है।
2: हाँ बात ऐसे भी है, हम जो मुख में जो हमारा दांत है ना, तो बात करने में वो दांत जो है वो स्पेक्सल जो है रोकता है, और जो दांत नहीं है तो बात करने के तरीका जो है वो अलग से हो जाता है।
0: हाँ तो आप वही बात कह रहे हैं कि जब भांग पी लो,
2: हाँ
0: तो भांग पीने से पीने के बाद, क्योंकि अभी अनुराधा जी के संदेश में ये था कि कोई छः देख रहा है अपने नज़र से और दूसरा नज़र से कोई नौ देख रहा है,
2: हाँ
0: उसमें अपना अपना अपना अंतर हो जाता ना।
2: हाँ बात यह है कि आप कहाँ थारा है, किस तरह किस दिशा से देखते हो,
0: किस दिशा से देखते हैं। तो एक गीत को हम चुन करके रखे हुए हैं अनुराधा जी, जरूर अब मुझे ये पता नहीं कि आपको अच्छा लगेगा कि ये जोजा सूस फिल्म से निकाला गया कि दुनिया बड़ी खराब है, उस पे उस ओर बढ़ते।

लोगों को पकड़ाना सबसे बड़ा सवाब है। कौन है सच्चा कौन है झूठा हर चेहरे पे नकाब है। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। जरा सोचो सोचो जरा समझो समझो।

0: मुझे बता दे। और ये सुंदर सा गीत जिसमें अशोक कुमार ने काम किया है, नई हतीन पुराना फिल्म है, मेरे ख्याल से उससे भी आगे की फिल्म है। पर अनुराधा जी, अभी आपका संदेश कुछ बाकी रहा, तो विनय है आपसे, आप अपना संदेश को हम सब के लिए आगे ले जाइए।
1: चलिए आगे बढ़ा जाए और जानते हैं कि ऐसी क्या क्या बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अक्सर हम किसी की कोई चीज पसंद आती है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं और अच्छा लगता है कि आप किसी को जो अच्छा है तो उसकी प्रशंसा करें। पर याद रखें कि जरूरी हो तभी निजी तौर पर आलोचना करें। ऐसा नहीं कि आप देखिए, बहुत बार होता ना, हम प्रशंसा तो कर देते हैं, हम कहेंगे ओहो ये तो कैसा, मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं कुछ उसके लिए, आप दिल से तो उसके लिए अच्छा चाहते हैं, पर कभी कभी आप ऐसा बोल देते हैं और वो आलोचना जैसा लगता है, क्रिटिसिज्म जैसा। तो ये चलिए संजय जी, आगे मैं भरती हूँ अपनी थोड़ी, जो मैं सुनने वालों को अपनी बातें बताना चाह रही थी कि क्या हमें रोज की मर्रा जिंदगी में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम देखिए क्या होता है ना, हम लोग जीवन तो हम बड़ा सरल है, पर कभी कभी हम रोज़ के जीवन में बिना सोचे समझे बहुत सारी ऐसे हम चीज़ें कर देते हैं और बिना सोचे समझे किसी का दिल दुखा देते हैं। तो हमें बड़ा समझकर हम क्या बोलते हैं, क्या हम व्यवहार करते हैं, ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी कुछ और भी थोड़ी सी बातें हैं जो मैं हर इंसान के पास, हम लोग कमाते हैं, सबके पास पैसा है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम है। और ये अच्छी बात है कि बहुत लोग कभी मेहनत करके बहुत पैसा कमाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो जो साथ के हैं वो इतने हमारे जैसे इतना शायद उन्होंने धन नहीं कमाया है, और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम बात करते समय अपने पैसों के बारे में अपनी हम शो ऑफ नहीं करें। किसी से बात करते समय हम अपनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर अपने बारे में ना बताएं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हमारे पास इतना धन है, और हम तो रोज़ यहाँ हम विदेश घूमने जाते हैं, और हमारे पास ऐसी गाड़ी है, हम इतना खर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है ना, बहुत बार हम भूल जाते हैं कि जो हमारे हम जिससे बात कर रहे हैं वो हो सकता है उनकी स्थिति पैसे में वो इतना उनके पास वो ना कमाते हों, और आर्थिक फाइनेंशली वो इतने वेल ऑफ नहीं हैं। तो ये जो हम ऐसे बात करते हैं ना बढ़ा चढ़ा के, हो सकता है आपके पास है, पर अच्छा इंसान का बड़प्पन उसी में होता है कि आप पैसों की बातें अपने आप जानते हुए अपना थोड़ा सा किसी के सामने ना करें, वो सुनने में बुरा लगता है, और आप दूसरे के बारे में पूछें हमेशा कि वो कैसा कर रहा है जीवन में हैं, और किसी को मदद हो तो आप उसकी मदद करिए, पर ये नहीं कि अपने बारे में ही आप बोलते रहें कि मैं ये करता हूँ पैसा कमाता हूँ और दूसरे को नीचा दिखाने के। आपका हो सकता है कि आप ये नहीं, आपके मन में ये विचार नहीं है, पर ऐसा करने पर, बोलने पर दूसरे को यह महसूस हो सकता है कि देखो ये तो बहुत अपना पैसा करे जा रहा है, और मेरे को, मैं इतना नहीं कमाता हूँ तो मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये मन में, दूसरे इंसान के मन में ये बात आ सकती है। तो ये बहुत हमें हमेशा ध्यान रखकर ये बातें बात करनी चाहिए, और किसी के सामने अपने धन की बात नहीं कभी बात करनी चाहिए। देखिए आजकल का क्या ज़माना है ना, मोबाइल हमेशा हमारे 24 घंटे मोबाइल रहता है। और जितना अच्छी बात है कि देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का हम जीवन चल रहा है, पर हमें उसको इतना भी मोबाइल को अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना चाहिए कि हम उसके बिना रह ना सकें, क्योंकि हमारा ऐसा होने लगा है कि हम मोबाइल हर जगह अपने साथ ले जाते हैं, 24 घंटे मोबाइल चाहिए। तो हमें ऐसा है कि एक थोड़ा सा हमें एक मोबाइल को उतना ही उपयोग करें जितना ज़रूरी है, और थोड़ा सा हमें ब्रेक लेना चाहिए कि एक ऐसा हमें एक समय बांध लेना चाहिए कि जिस समय कि हम मोबाइल को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उससे क्या है, वो आपका निर्धारित, जैसे आप खाना खा रहे हैं अपने परिवार के साथ, तो वो एक समय निर्धारित करें कि हम उस समय मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे। वो हमारा पूरा पारिवारिक समय है, हम जो परिवार के साथ हैं वो बिल्कुल हम उसमें मोबाइल सब अपना अपना रख देंगे बंद करके, हम वो नहीं देखेंगे। जब आप परिवार के साथ बैठे हुए हैं तो ऐसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपना मोबाइल अलग रख दें, तो ऐसा निर्धारित है। या आप जब आपस में जब अपना आप टाइम बिता रहे हैं तो मोबाइल को ऐसा समय बांधें कि मोबाइल जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करें, हर समय मोबाइल का लत ना लगाएं, ना आदत डालें। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार तो ऐसा होता है कि आप सुबह पूरा दिन भर मोबाइल में इतने लगे कि आपने तो अपने बच्चों की ना अपने बीवी घर वालों की तो शक्ल भी नहीं देखी, ना आपको पता है कि उनने क्या कपड़े पहने, क्या उन्होंने घर में, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा एक निर्धारित समय बांधे जितना आप मोबाइल उसको इस्तेमाल करेंगे। याद रखें कि यदि आप अपने कोई सहकर्मी, जैसे होता है ना कि आप जो आपके साथ काम करता है वो कभी ऐसा मिला जिसे कि जैसे आप कभी अस्पताल पहुंच गए, आप कहीं डॉक्टर के पास गए हैं और आप तो गए अपने काम से अपने आप को दिखाने, वहाँ आपको कोई अपना कोई जानने वाला मिल गया या कोई कुलीग मिल गया और आप वो भी डॉक्टर के आए हैं, तो याद रखें उस इंसान से ये ना पूछें वह वहाँ किस लिए आया है, क्यों मिलने आया है, किस डॉक्टर से मिलने आया है, उसको क्या तकलीफ़ है। देखिए ऐसे समय में ना हर को आप थोड़ा सा पर्सनल स्पेस दें, प्राइवेसी दें। ये अच्छा नहीं लगता कि आप उस इंसान से उससे पूछें कि वो क्यों आया है, हो सकता है वो आपसे आपको नहीं बताना चाहे कि वो किस डॉक्टर से मिलना है, उसको क्या तकलीफ़ है। तो ये बातें जो होती हैं ऐसा ना बोलें, और अगर मिले तो आप बस आप ये कह सकते हैं मुझे आशा है कि आप ठीक हैं, और बस ना वो आपसे पूछेगा, और अगर वो आपसे पूछता है तो आप भी अपना बताने की ज़रूरत ना रखें और ना किसी से पूछें। अपनी व्यक्तिगत जो बीमारी होती है ना, बताने के लिए उन्हें ऐसा स्थिति में ना डालें कि उनको बड़ा अजीब लगे कि आपको बता वो आप उनके पीछे पड़ जाएं कि बताओ, कि सबको आप इतना उनकी इज्जत करें कि ना आप उनसे पूछें और उनको ऐसी स्थिति में ना डालें जिससे उनको बुरा लगे कि ये बताना पड़े। देखिए हर को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है और वो लोग अच्छा नहीं लगता कि आप सबके बताना चाहें। तो याद रखें कि ये कभी ये बहुत व्यक्तिगत सवाल ऐसे नहीं करने चाहिए। तो देखिए आज तो बहुत बातें हो गई, एक आखिरी चीज़, कोशिश हमेशा ये करें कि प्रतिदिन, देखिए हमारे जीवन में बहुत कुछ हम लोग उतार चढ़ाव रहता है रोज का, तो हंसी मजाक चलता है, दुख भी चलता है, देखिए हर पल आते हैं, पर और माहौल भी ऐसा है कि कभी कभी बहुत सुनने में बहुत चीज़ें खराब आती हैं सुनने में, तो मन थोड़ा सा थोड़ा दुखी हो जाता है, तो हमेशा याद रखें कि कोशिश करें प्रतिदिन रोज कोई ना कोई ऐसा एक काम जरूर करें कि दिल खुश हो जाए। अच्छी कि जब सुबह उठे तो हमेशा कोई चीज़, देखिए नेगेटिव नकारात्मक चीज़ें तो बहुत सुनने में आती हैं, पर कोई ऐसे सकारात्मक कोई अच्छी पॉजिटिव चीज़ पढ़ें या किसी के साथ शेयर करें, जिससे कि आपने जो कुछ सीखा है उससे दूसरों को भी सीखने में मदद मिले और अपने भावी पीढ़ी को कोई जो है तो आप किसी को शिक्षा दे सकें। तो हमेशा याद रखें कोई रोज़ एक बात कुछ अच्छी सबसे बात करके कुछ शेयर करें तो थोड़ा दिल होता है ना वो खुश हो जाता है कि देखिए दुनिया में जहाँ दुख है तो अच्छा भी है। तो इस भाव से लेकर रोज़ अपना जीवन जिए कि खुशियाँ बांटें और अच्छी जो बातें हैं वो सबके साथ खुश रहें, मिलजुल कर रहें और देखिए एक अच्छे चरित्र निर्माण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप खुद भी खुश रहें और आसपास भी सब में खुशियां बांटें। तो आज मैंने बहुत सारी बातें आप सबको कहीं, आशा करती हूँ कि कुछ ना कुछ आप अपने जीवन में कोई ना बात ये इनमें से कोई ना कोई बात अपने जीवन में जरूर ढालेंगे और ख्याल रखेंगे कि आइंदा से कि ऐसी बात ना कहें कभी किसी को जिससे दूसरे, और आशा करती हूँ आप सभी खुद सब खुश रहेंगे, स्वस्थ रहें और हंसते रहें, खुशी बांटें, खुद भी खुश रहें खुशी बांटें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने ये सब बातें मेरी सुनी। और संजय जी चलिए एक और अच्छा सा एक गाना हो जाए और आप भी सबका दिल खुश कर दें, चलिए गाना सुनते हैं।
0: जरूर अनुराग, एक सुंदर सा गीत हमने चुन करके रखे हुए है और ख़ास करके वो गीत जो हमारे अपना अनाउंसर साथी के मुकाम से आप सुनेंगे, तो ज़रूर पहले उस गीत को और बढ़ेंगे फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

0: ये सुंदर सा आवाज आपने सुने हमारे कोलेगा साथी शांता खेमाई जी की आवाज में। ये शांता जी, इसमें मैं सुन रहा था दो तीन गाना का मिलावट है ना?
1: जी संजय जी, इसको कहते हैं मैथिली।
0: मैथिली कहते हैं इसे।
1: हाँ, तीन चार गीत जो उसमें रेफरेन के साथ कुपले जोड़ दिया जाता है तो उसको मैथिली कहते हैं। मैथिली एक कहेगा और एक है मैशअप है, एक है कॉफर।
0: ऐसा
1: ये सब तरीका हैगा जो गाना ऐसे गाते हैं।
0: और इस पे जब देखा जाए कि या अब गायक लोग ना, आप लोग गायक हो तो इस पे
1: है।
0: मुझे तो इसका कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी ये इतना सुंदर लगता है कि किस प्रकार से आप ये और कितने गाना को मिला करके एक में और जोड़ देते हैं।
1: और ये भी एक अच्छा बात है ना कि अब जैसे कराओके भी निकल गया है, कितने सालों से कराओके है, तो हमारा बुजुर्ग भी जो है वो उसको भी कैसे कहते हैं, मनोरंजन करने के लिए भी जो अपने यंग यार में सब जो गीत गाते थे सुनते थे, तो कराओके भी एक मोहलक है दे दिया है कि वो सब है जो अपना दिल के बात जो है गीत के रूप में भी वो बता देते हैं।
0: गीत के रूप में बता देते हैं।
1: हाँ, अच्छा लगता भी सुनने के लिए, और जो ना गाते हैं तो सुन सुनकर भी आंसू भर आते हैं उन सब की आंखों में।

बहुत बहुत धन्यवाद फौन हिंदुस्तानी रेडियो वाले जो श्रोता हैं, अपना समय निकालकर, अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको जो ज्ञान मिलता है अपने आप में उतारते, अपने लाइफ में उसको उतारते हैं, एडजस्ट करते हैं और उनको भी फ़ायदा होता है और दूसरों को भी होता है। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हो, जय जय।

और अंत में मैं ये बोलना चाहूंगी कि रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों ही भर जाते हैं। इंसान जन्म के बाद 2 वर्ष के बाद ही बोलना सीखता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में उसका पूरा जीवन लग जाता है। इन्हीं विचारों के साथ सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार।

0: नहीं मेरे प्यारे सुनने वालों, हमारे अनाउंसर साथी के साथ मैं भी आपसे आज के लिए इजाज़त ले रही हूँ। आपने साथ दी है उसके लिए धन्यवाद किया जाता है, और स्वीकार कीजिए बहुत प्यार के साथ शांता जी के प्यार भरे नमस्कार।
1: सनम चाहे जाए जिया तेरी कसम लागी छूटे ना।
2: सुनने वालों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग दिए शांता खेमाई जी, जो हमारे साथ स्टूडियो में थे, भाई राधे ग्लेन जी जो हमारा सहयोग दिए, और भारत से राजेंद्र सिंह जी, और हमारा संदेश लेकर और अनुराधा चंद्र जी जो अपने ओर से संदेश को रखे। आशा यही है कि कुछ न कुछ संदेश आप तक जरूर पहुंचे होंगे और जरूर अच्छा लगते होंगे। मैं हूँ आपका सेवक संजय, और आपसे विदा ले रहे हैं, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

फ्रॉम द मूवी कुरुक्षेत्र से अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू आपको सुनाने वाले थे। अब तेरे दिल में हम आ गए तो फ्रॉम द मूवी आरसू से आप सुनेंगे कुमार सानू और अलका याग्निक।

0: सुनना।
1: अभी आप सुन रहे थे तेरे दिल में हम आ गए तो, फ्रॉम द मूवी आरसू से हमने पेश किए है कुमार सानू और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। जरा सा हम देखे, जी हाँ, उदित नारायण और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं तेरा दिल मेरे पास रहने दे।

तेरा दिल मेरे पास रहने दे। अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी मुस्कान से आप सुनेंगे वो हो तुम।

सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले थे वो हो तुम, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, फ्रॉम द मूवी तुम बिन से आप सुनेंगे, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तुम बीन। तुम्हारी नियत की आजमाइश उस वक्त होती है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करो जिससे तुम्हें कोई चीज़ की उम्मीद ना हो, क्योंकि इतना प्यार करते है तुम्हें हम सनम। फ्रॉम द मूवी क्योंकि

अभी आप सुन रहे थे क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, ऐतराज है फिल्म का नाम, और आपको सुनाने वाले हैं अलका याग्निक के साथ में उदित नारायण जी। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये है कि हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह कोई कोई समझता है। और ये गीत हम पेश करते हैं ख़ास करके शर्ली जी के वास्ते जो ये प्रोग्राम को भी सुन रही है।

फ्रॉम द मूवी एतराज से हमने पेश किए हैं आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो तुम ही हो ऐ सनम। अलका याग्निक और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे। वह सिखा देता है जीने का हुनर, फिर क्या नसीब, क्या मुकद्दर और क्या हाथ की लकीर है। तशन है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर जी की आवाज़ में आप सुनेंगे फलक तक चल साथ मेरे।

उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर भी आपको सुना रहे थे। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। कुछ लोग छोटे पलों में इतना कुछ दे जाते हैं कि जिंदगी भर उनका एहसास रहता है। शुक्रिया है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं निसोनिया निसोनिया अखा लड़ गईया।

0: बाबा आपको तो पता है कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सुबह की फ्लाइट से निकलना होगा।
1: होप यू डोंट माइंड। मैं तो समझ जाऊंगा बेटा, पर आई होप तुमने अंजलि को समझा दिया।
0: जी पापा, समझा दिया।
1: अंजलि का ख्याल रखना।
0: जी पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे पापा?

अभी आप सुन रहे थे निसोनिया निसोनिया अखा लड़ गईया फ्रॉम द मूवी शुक्रिया से हमने पेश किए हैं। इंसान का मिजाज भी कितना अजीब है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ जा रहा है और जो यही रह जाना है उसे जोड़े जा रहा है। फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से आप सुनेंगे तुने दी बेकरारी।

जी हाँ दोस्तों, सभी को हमारा राम राम नमस्कार, अदाए बरस हो। जैसे आप सब जानते हैं तो आज फ्राइडे है दोस्तों, शुक्रवार हो चुका है और हम हैं आपके साथ, जो आपके साथ अभी से 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे। हमारा जो प्रोग्राम है, हम ये बताना भी चाहते हैं आप लोगों के, हमेशा की तरह है और जैसे हमेशा मैं कर रहा हूँ ऐसे हमारा प्रोग्राम आज रहेंगे। हर दिल से ये नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, हर रोज़ की तरह आज भी होंगे कुछ प्यारे प्यारे ऐप द्वारा कुछ बातें होगी और प्रोग्राम है। अब से लेकर हम एक घंटे तक कुछ पुराने गाने आप लोग के सुनाएंगे, महेंद्र कपूर के, मुकेश राफी और किशोर दा के गाना हम सुनाएंगे मन्ना दे के, और उसके बाद हम कुछ न्यू स्टाइल में कुछ नए गाने को हम पेश करेंगे। एक घंटा न्यू स्टाइल रहेगा, एक घंटा रहेगा हमारा हिले मिले जुले जो सुरीनाम और हॉलैंड देश का कलाकार है वो हम आप लोग के भी पेश करेंगे। उसके बाद है जो लोग सही जवाब को दिया है, कुछ फरमाइशें लोग मांग किया है वो उसको हम ज़रूर पूरा करेंगे, और ऐसे हमारा आज का प्रोग्राम है। घड़ी की तरफ देखा जाए तो 5 over 11 हो चुका है हमारे प्यारे सुनने वालों, और हम चले चलते हैं आप लोग के कुछ गाने हैं जो ऐसे मैंने सजा के रखा है। महेंद्र कपूर के गाना है, मन्ना दे के गाना हम चलाएंगे, ऐसे हम आप लोग के साथ आज देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हम आप लोग के ले चलते हैं महेंद्र कपूर के कुछ पुराने पुराने गाना है जो सजा कर हमने लाया है आपके कानों तक पहुँचाने के लिए। पहला गीत है जो हम आप लोग को सुनाने चाहता है, संसार की हर शय में, महेंद्र कपूर की आवाज़ है दोस्तों।

जी हाँ सुनने वालों, ये है मिर्जा कपूर की आवाज़। ये तो मैंने भूल गया बताने के लिए, नमस्कार हे लतीम, हमारा जितना कुलेखा है सभी की तरफ से एक बार फिर से सभी को हमारा राम राम नमस्कार हो दोस्तों। और प्रोग्राम आज चलेंगे, सुखवार है, सुख हो चुका है, वीकेंड महीना हो चुका है, सभी को फाइन वीकेंड बोली लो। और प्रोग्राम चल रहा है जना शहर से, जहाँ पर सरसराहत हवा चल रहा है, लव बोट लखल है, लोग कटिए को लगा रहा है, जैसे हरदम हर हफ्ता रोज यहाँ कटिया लगे और रोज यहाँ लोग अपने मछली को पकड़ते हैं, यहीं पे भूजते हैं, यहीं पे खाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं फिल्म उपकार से, निगंतिन सैफनन शस्त के गाना है, जो देखा जाए तो मन्ना दी की आवाज़ है दोस्तों। और हम आप लोग को सुनाने वाला है कश्मे वादे प्यार वफा के।

जी हाँ दोस्तों, कश में वादे प्यार वफा का अभी आप सुन रहे थे। मूवी फिल्म उपकार का है, नई कंतीन सैफ नस्त का है जो मन्ना दे ने गाया है। जैसे मैंने कहा था, कुछ मन्ना दे के गाना, कुछ महेंद्र कपूर के गाना हम चलाएंगे आज एक घंटे का प्रोग्राम में। उसके बाद ऐसे हमारा प्रोग्राम चलेगा। ठीक है दोस्तों, जितने लोग इस प्रोग्राम को सुनते हैं एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जो आप लोग प्रोग्राम को सुनते हैं, काफ़ी लोग, काफ़ी ऐप आ चुका मुझे, लोग रेडियो पे है और प्रोग्राम को सुनते हैं। आप सब चुन है द एवरग्रीन लव, द लव फॉर हिंदुस्तानी रेडियो पे दोस्तों, और हम चलाएंगे प्रोग्राम आज जैसे आप चाहते हैं। ऐप द्वारा होगी कुछ बातें और कुछ मुलाकात तो नहीं हो सकता है, बातें ज़रूर होंगी। जहाँ पे प्रॉब्लम है दोस्तों, उस प्रॉब्लम में हम आपके साथ शामिल है। पूरा टीम हमारा आपके प्रॉब्लम में, दुख में शामिल है। भगवान आपको सहन शक्ति दे, अपना हर एक दुख को सहने के लिए हर एक चीज़ से आपको बच के रहना चाहिए। देख के संभल के चलना और हर एक चीज़ संभल के करना। इसलिए हम आज चलाएंगे एक घंटे सिर्फ गाने जो बहुत पुराना गाने हैं, और हम ले चलते हैं एक बार फिर से महेंद्र कपूर को।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, आंखों में गजब की काजल मिंदा कपूर की आवाज़ के अंदाज में ये गाना गा रहे हैं। इसलिए आज एक घंटे का प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा हम मिंदा कपूर के गाना आप लोग को सुनाएंगे। दोस्तों देखा जाए तो मैं एक गाना अभी सुना हूँ, अभी अभी मैंने इस गाने को सुना है, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी के गाना है, फिल्म राजपूत, फिल्म राजपूत का गाना है दोस्तों, नई खनतीन तुयन तख्त की एक गाना, जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी और यश खन्ना ने काम किया है। मैं समझता हूँ कि यह गाना भी आप लोग के कानों तक पहुँचा दूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे गाने हैं और इसका म्यूज़िक जो बजाया गया है वो और कोई नहीं है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है और लिरिक्स लिखा गया है आनंद बख्शी। चलो हम सुनाते हैं आप लोगों के, क्योंकि आज फ्राइडे हो चुका है, एनन तेरतख यूली हो चुका है, 2026 में है दोस्तों, और घड़ी की तरफ देखा जाए तो 11:20 पास हो चुका है और सुरीनाम में है, तुरंत का ऊपर जैस हो चुका है, वहाँ पे लोग अभी जग रहा है, कॉफ़ी पी रहा है ना, तो हम प्रोग्राम को चलाते हैं। वीकेंड हो चुका है दोस्तों।

जी हाँ हमारे सुनने वालों, मूवी राजपूत पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ दोस्तों, और निकंतिन तो इन तख्त की फिल्म था ये मूवी, जिसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और रजेश खन्ना ने काम किया है। हम आपको लेकर चलते हैं महेंद्र कपूर की आवाज़। जी दोस्तों, ये तो मैंने ये बताना मैं भूल गया, हर एक को जुमा मुबारक हो, आज जुमा का दिन है, हर एक को जुमा मुबारक, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू हो, जहाँ जो भाई इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं, हमें जुमा एक कवाले को हम पेश करते हैं जुमा के लिए।

जी हाँ हमारे दोस्तों, आज जुमा है, हर को एक बार फिर से जुमा मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबके हर एक मुसीबत से बचा के रखना, हर एक गुनाह से बचा के रखना। ठीक है दोस्तों, ये था एक कवाली के रूप में जो आज जुमा है और महिंदा कपूर की आवाज़ थे। चलो दोस्तों, हम अभी मैं फिनिक किशोरदा के गाना एक गीत को मैंने सुना है, और फिल्म ये भी फिल्म राजपूत का है, नहीं इन तक का है, और देखा जाए इस गाने पे काम किया है रेस खन्ना और हेमा मालिनी ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, आनंद बख्शी का ये लाइरिक से। हम सोचे लगे तो लगे भी गनवा सुना देता अजय सुखबह एक घंटा के प्रोग्राम में, कुछ ऑल्ट गोल्ट उस सब गनवा तो लगे हम सुना दे खाओ आओ। ठीक है, चलो मिलकर सुनते हैं किशोरदा की आवाज़।

जी हाँ दोस्तों, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। रेश खन्ना हेमा मलिनी ने इस गाने पे काम किया है और मूवी है राजपूत। चलो दोस्तों हम ले चलते हैं आप लोग के फिल्म पूरब और पश्चिम से एक निकाला हुआ गाना है जो भारत के लिए गाया गया है। और क्या अंदाज में इस गाने को गाया है महेंद्र कपूर ने, और क्या आवाज़ है महेंद्र कपूर के। आज मैंने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा मैं महेंद्र कपूर को सुनाऊंगा आज एक घंटे का प्रोग्राम में, और हम सब मिलकर सुनेंगे दोस्तों क्या गाना है। बहुत ही अच्छा गाना है, हमारे लिए फलिंग गाना है महेंद्र कपूर के, और हम आप लोग को सुनाते हैं। हम सब मिलकर सुनेंगे इस गाना, और भूल मत जाना कि हम सब चून है द एफ अगेन लव फॉर हिंदुस्तानी रेडियो पे।

जहाँ दोस्तों फिल्म पूरब और पश्चिम का निकाला हुआ गाना है ऐ प्रीत जहाँ की रीत सदा द एवर सॉन्ग्स द एवर ग्रीन सॉन्ग्स महेंद्र कपूर के सब चून है द एवर ग्रीन लव फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो पे। दोस्तों चलो हम आप लोग के ले चलते फिल्म रखवाला। नेकिन एजन सैफन तक का ये फिल्म है और इसमें धर्मेंद्र पाजी ने काम किया है और पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ है। हम आप लोग की सुनाते हैं

जी हाँ दोस्तों, तेरे नैन मेरे नैन बस देखते रहो मूवी रखवाला 1971 तक के पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज अभी आप सुन रहे थे। हम आप लोग के मिल के सुनाएंगे दोस्तों ये गीत को, जहाँ पे सिर्फ हम और तुम इस गीत को सुनेंगे।

0: जी हाँ जी हाँ दोस्तों, मूवी मंजिल 1997 का ये गाना है जिसमें अमिताभ बच्चन मौसमी चक्कर जी काम किया है, आवाज किशोर दा की। चलो दोस्तों, हम ले चलते हैं, कुछ न्यूज है, कुछ रिक्लाम है, उसके बाद यूं गया यूं चला या उसके बाद आ रहा हूँ कुछ गाने लेकर भड़कती हुई नम्मा।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor, streek en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. Het Australische verbod op social media voor jongeren onder de 16 jaar heeft in de eerste 3 maanden gezorgd voor een kleine daling van het aantal minderjarige gebruikers. Dat blijkt uit een rapport van eSafety, de Australische toezichthouder van online veiligheid. Dat resultaat is een tegenvaller voor de Australische regering. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 2447। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: जी हाँ, हमारे सुनने वाले अभी आप सुने थे मिस्टर चोनी के, जो भी काम कराना है जल्द में कराइए, आइए और कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारा स्टूडियो का नंबर है 07 36 5 2 2 4 0। जो भी कराना है अभी भाई मिस्टर चोनी से, अभी आप सुन रहे थे, जो भी कराना है आइए और काम करवाइए। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम को आगे ले जाते ही सजा करके लाए हैं, जैसे आप सब जानते ही अब से लेकर 24-12 हो चुका है, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक हम चलाएंगे कुछ भड़कती हुई नगमा। जहाँ भी है ठल्ले ठल्ले आप चुनमुन कर सकते हैं। दूसरा नाम डांस के है चुनमुन, चुनमुन आप चुनमुन कर सकते हैं। जहाँ भी है, घर पे है, किचन में अगर आप खाना पकाते हैं, जो भी काम करते हैं, वाइट पुश ब्लैक पुश तफरा परक एक बरल मार और नाचते रहना, नाचने में कुछ गलत काम नहीं है, जितना नचिए उतने कैलोरिया तो लाश करिए। ठीक है दोस्तों, हम आप लोग के ले चलते चुनमुन, चुनमुन करते कुछ थोड़ा डांस फड़कती हुई नगमा है। और काफ़ी लोग इस वक्त ऐप पे है मेरा, हर एक कौन कहते हैं वेट कीजिए 1 बजे से बात हम काफ़ी अच्छे ओ आया है अंतवर्त, जो मैंने आप लोग से पूछा था अभी मैं पूछूंगा, काफ़ी अच्छे अंतवर्त थे, बढ़िया अंतवर्त थे, सही जवाब भी है और गलत जवाब भी है। एक बार फिर से सुनिए सवाल को तो फिर एक बार जवाब आप दे सकते हैं, तो ही द कांस दूसरा कांस मिल सकता है सिर्फ द एफ अगेन लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपको दूसरा मौका भी मिल सकते हैं। आप अभी मैं इस सवाल को पूछूंगा और ठीक से सुनना और सही जवाब देना, मुझे ऐप पे लिख के पठाना। सवाल ये है कि बोले गटाई वाह गटाई है बकी मुड़ी न बा, हाथ है अमूरी न बा, कौनची बा रा रा वतिस्त वतिस्त यंतुर्त कौन सी बा। ओके अब तो लोगों लिख सके, अब हमारा ऐप खुल गए, ईसाई तो लोग ऐप कर सके हैगा कि कौन सी बा अंतर्त कितना ऐप हम पाई चुके लिए। बात सही जवाब ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब है, इस पे सही जवाब है। तब तक के लिए मैं आपको ले चलते एक घंटे चुनमुन करने के लिए।

जी हम दोस्तों कहते हैं मुझे तो तेरी लत लट गई यार, लट लट गई लट लग गई। जी हाँ दोस्तों, चुनमुन वाला गाना है ना, प्यार से चुनमुन करना। और देखा जाए ऐप पे, मैं आप लोग के पढ़ के बताता हूँ, हमारा नेव जो है लेडी तरफ से विजय, विजय जो इस वक्त लेह बारदम है और लेडी तरफ से आए ले घूमने के लिए। विजय भाई आप प्रोग्राम को सुनते, वेलकम इन नीदरलैंड। और इस वक्त हमारा भाई के साथ है राकेश, राकेश के साथ इस वक्त चुनमुन मना रहा है हॉलैंड में और लेवार्दस शहर में है। वेलकम इन नीदरलैंड और गाने को अभी माना है और कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छी है। हमारा भाई राकेश भी प्रोग्राम को सुनते हैं, लेवार्दस से काफ़ी लोग इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं और कहते ही फ्रेदा फ्रेदा सुकवार हो चुका है। देखो भाई, ब्लैक पूछ रख, रेत पूछ रख, तफरा पर एक बॉरल मार और कुछ पकाओ कुछ छोंक और कैलोरी ना भूलिए निकाल एक दही में से। डांस कीजिए और डांस में रहना, स्फेयर में रहना। वीकेंड हो चुका है यार, हम लोग वीकेंड में चला चल गया है। एन देर तक हो गया, महीना फिन बंद हो गया। इसे देखते देखते हम लोगों ने औथ या न्यू ईयर मना कोई, फिन ट्वीट 2028 में चला चलेंगे। और चुनमुन वाला गाना है वेलकम विजय, एक बार फिर से वेलकम इन नीदरलैंड। और लेडी तरफ से आया है इंदिरा गांधी वे पथ फर्मनिका से, लेडी तरफ से आया जहाँ पे वो रोज साते खा रहा है यार, और आज हॉलैंड देश पे है। वेलकम, हम प्रोग्राम को ले चलते हैं। हम आपको सुनाते किरण केदार को, किरण केदार

0: जादू से एक मैथिली था किरण केदार की आवाज में। चलो हम ले चलते हैं लाइफ 100% लाइफ इज सो टाइम सूरीनाम का जो टाइम धीराज।
1: 6 million ways to die, choose one.

full band, Showtime from Suriname, Dhiraj. जी हाँ दोस्तों, हम चलते हैं आगे प्रोग्राम को ले चलते हैं मेरा मन, सिंगर सागर महावीर और सत्फिका. चलो हम सुनाते हैं डांस डांस भक्ति गाना है. मैंने कहा ना, रेड पोस्ट ब्लैक पोस्ट तफरा परक और चिकना बनवाओ डोक्सा बनवाओ, वीकेंड आएंगे है और कुछ चुनमुन भी करो यार.

जी हाँ दोस्तों, मेरा मन जो तुम्हें चाहे, सागर कोहबीर और सत्फीका की आवाज अभी आप सुन रहे थे। और हम चलेंगे आगे लेकर द फुल बैंड एक्सक्लूसिव, संजय जोधा और रणधीर बदरी की आवाज हम आपके पेश करते हैं। मैंने कहा था एक घंटे का प्रोग्राम है, अभी आधा घंटा और है, आप लोग तनिक चुनमुन कर सकते हैं। डांस डांस

जी दोस्तों, द फुल बैंड एक्सक्लूसिव। चलो दोस्तों, पढ़ते हैं कैप जो लोग स्पायर से प्रोग्राम में सुनते हैं, जहां गुरुंग पानी और ब्लाउ पानी के बीच में सब बैठल है और प्यार से प्रोग्राम को सुनते हैं स्तम स्पायर से। उन सब जो ग्रुप के लिए हमें गाना को चुन करके रखा है और चलो वहां पे आप लोग डांस करेंगे। और गाने का बोल सिंगर है सागर कोहाबीर। चलो एकदम स्पायर तक हम पहुँचाते हैं सब। गुरुंग पानी में बैठल है यार, स्त्रांत पर बैठल है, मोहबेद है। और उन सब जो स्पायर से प्रोग्राम को सुनते हैं उन सब के लिए

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्यार किया तो निभाना, फुल ग्रुप सागर को हबीर। चलो दोस्तों, हमने चलते हैं हमारा जो एक कुलीखा है, हमारा रेडियो कुलीखा, हमारा हमदर्द है सुरेंद्र भगवान दिन की आवाज़ हम आप लोग को सुनाना चाहते हैं। कुछ कितने पुराने गाने हैं लेकिन अंदाज में गाया गया है और डांस नंबर है इस गाने पे, आप जो चुनमुन करेगा घर पे यार। चलो हम सुनाते हैं सुरेंद्र भगवान दिन की आवाज़।

हमारा भाई बीरबल ने कहा, एक कमला अब तू ना हुई ये जवान। ये भाई बीरबल है यार, क्या अंदाज में गाया, क्या बैठक गाना है यार, क्या अंदाज में इस गाने को गाया है। द फुल टीम रहा यार, फुल टीम। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं दविंदर सिंह शिवनाथ और सविता सिंह, 2026 का ये गाना है, 100 साल पहले, और कुछ डांस पे कुछ ऐसा ढंग पे है कि घर पे बैठे बैठे नाचे, हम तो स्टेडियम में बैठ के नाचे लो यार। चुनमुन करना भाई, चुनमुन करना मत भूल जाना। हम जैसे आप जानते हैं, गटाईबा मुरीनाबा हाथ है अमरीना है, ढेर सारा जवाब आया है सही। अब 1 बजे से हम आप लोग के फरमाइश जरूर पूरा करेंगे। अभी वक्त है, अभी हमारा लाइन खुला है, आप भी ऐप कर सकते हैं, सही जवाब सही गाने को आप मांग सकते हैं। तब तक के लिए दविंदर सिंह शिवनाथ और सविता सिंह।

जी हाँ दोस्तों, आज कल और सदा भी रहेगा 100 साल पहले 2026 का ये गाना है और गाने वाला है दविंदर सिंह शिवनाथ और सविता सिंह। चलो दोस्तों हमने चलते हैं द किंग फ्रॉम म्यूजिक, जो हम लोग सुरिनामी गाना गाते हैं। सभी को अच्छे गाते हैं, सभी को पूरा नाम है, लेकिन अब हम तो कले जाबे हिंदुस्तानी के माइकल जैक्सन, सुरिनाम से माइकल जैक्सन भाई जो हॉलैंड में है, और द किंग बा उमर वागिद हुसैन के एक सोल हम आप लोग को सुनाते हैं। सोल गाना है। इस गाने के बाद कुछ न्यूज चलेगी और कुछ रिक्लाम, उसके बाद यूं गाया यूं चलाया, मिल के सुनते उमर वागिद हुसैन।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: अच्छा दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे न्यूज और रिक्लामा। ठीक है दोस्तों, हम चलेंगे जैसे मैंने वादा किया था, वादा हम निभाएंगे ज़रूर। काफ़ी लोग है जो सही जवाब को दिया है, काफ़ी लोग है जो गलत जवाब को दिया है। जो गलत दिया है उसका फरमाइश हम नहीं चलाएंगे, सिर्फ सही जवाब पे हम ज़रूर चलाएंगे। देखो एक ऐप और आ गया है, सही बात है, देखा जाए ऐप क्या है। ठीक है, ऐप तो खुल गया है, सुनीता बुधाई भी प्रोग्राम को सुनते हैं और सही, अभी मैं देखूंगा कि जवाब सही है या नहीं। हम चलते हैं लेवार्डा की तरफ, लेवार्डा की तरफ हम चलेंगे जहाँ पे हमारा पूरा फैमिली जो वहाँ प्रोग्राम को सुनते हैं, सब हमारे मामू लोग हैं, मामा है, मामी है और सब हमारा भाई लोग हैं जो प्रोग्राम को सुनते हैं और काफ़ी पसंद भी करते हैं। सही जवाब को दिया है राकेश जद्दू ने, सही जवाब को दिया है और मांग किया है बहारो मेरा जीवन समारो, लता मंगेशकर का फिल्म आखिरी खत, नेहा तीन ससन सस्त का ये गाना है। और देखा जाए लायरिक्स सब कुछ है, लेकिन हम वक्त नहीं लेंगे क्योंकि काफ़ी लोग हैं। सिर्फ ये बताना चाहते हैं लता मंगेशकर ने गाया है और आखिरी खत, नेहा तीन ससन सस्त का ये गाना है बहारो मेरा जीवन समारो। सही जवाब को दिया है भाई राकेश जद्दू ने और प्रोग्राम को सुनते हैं काफ़ी लोग हैं लेवार्डा का जो सही जवाब को दिया है। और मेरा सवाल थे, अब मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा क्योंकि लाइनें बंद हो चुका है। गटाई है मुड़ी ना है, हाथ है अमरी ना है, वो या से जुड़ पहनी लो यास। सही जवाब है यास, लिखा ले भाई राकेश ने यास को लिखा है। ठीक है भाई राकेश, आपका फरमाइश आ रहा है भाई।

जी हाँ दोस्तों, बहारो मेरा दिल समारो, लता मंगेशकर की आवाज़ आखिरी खत नहीं जसन सस्तक का ये गीत है और लिवर्दा का राकेश चद्दू ने इस गाने को मांग किया, सही जवाब को दिया है। ठीक है भाई राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया भी आ रहा हूँ भाई विजय जो लेली दौरब से आया है प्रोग्राम को सुनते, सूरीनाम से आकर लिवर्दा में प्रोग्राम को सुनते। अभी मैं अपनी तरफ से भाई विजय के लिए एक गाना जरूर सुनाऊंगा। भाई विजय ऐसे प्रोग्राम को सुनते रहना, राकेश भाई के साथ हम जरूर कुछ आपके लिए बनाएंगे सुनाएंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं वेल खदाख से, देखा जाए गीता काशीराम जो प्रोग्राम को सुनते हैं, अपना कैप्सूलोन में बार को बनाते हैं और प्रोग्राम को भी सुनते हैं। वेल खदाख से गुलाम नबी वैख नई खबई से इस प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है यास। ठीक है, वो जहाँ काम करता है लोग पहन के आता है, उतार के रखते हैं, दिन भर यास पहनावे बार काटे बार को बनाते हैं, तो सही जवाब को दिया भाई और बहन गीता काशीराम। हम आपके गाने ले चलते हैं तेरे मेरे हो तो पे, देखा जाए इस गाने को मांग किया है गीता काशीराम आपके नाम।

जी हाँ दोस्तों, गुलाम गुलाम नबी वेख से गीता का श्रीराम प्रोग्राम को सुनते हैं और मांग किया था मूवी चांदनी, लता मंगेशकर बाबला मेहता की आवाज, आनंद बख्शी के लाई दीक्षित शिवा हरि के म्यूजिक है। जी हाँ गीता, आपने सही जवाब को दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रोग्राम को सुनते सुनते रहना। अभी 3 बजे तक हम रहेंगे रेडियो पे और काफ़ी फरमाइशें है, काफ़ी सही जवाब है जो मुझे चलाना है। दोस्तों हम आपको ले चलते हैं, सुनीता बुधाई इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया है और मांग भी किया है, एक अच्छी बहुत अच्छा गाना मांग किया है। देखा जाए तो लाल लाल हुआ से बरसात, चलो हम आपको सुनाते हैं। सुनीता बुधाई, आपको आपका गाना आ रहा है।

तोरी मीठी मीठी बतिया करेजा छुवेला। सुनीता जी गाने को कहाँ से निकल ले यार, लागी नैन छुटी राम नहीं तीन त्रियन सेस्ता का ये गाना है यार, और क्या अंदाज में गाया, कितना पुराना गाना है, नहीं तीन त्रियन सेस्तक के भी हमारा खबर तो ना रहा। ठीक है सुनीता, बुधाई आप प्रोग्राम को सुनते हैं और बहुत बहुत पसंद करता है फाहून रेडियो को, और हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं सुनीता जी के आप प्रोग्राम को सुनते पसंद करते हैं, और ऐसे ही सुनते रहना। अभी 3 बजे तक हम रहेंगे आपके साथ और प्रोग्राम को सुनते रहना, और बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब। चून है द एवरग्रीन लव फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पे, तब तक के लिए हम चलते हैं ईदन। ईदन से मफराउ शकुंतला इस प्रोग्राम को सुनते हैं और देखा जाए हमारा तार में क्या लिखा है। यस यस, ठीक है आपने यास को लिखा है और सही जवाब है मफराउ शकुंतला जो ईदन से प्रोग्राम को सुनते हैं। और मांग क्या है, मूवी हमरास के गाना, और हम उसे ज़रूर सुनाएंगे, तुम अगर साथ देने का वादा करो। ठीक है, और क्या हाल चाल है शकुंतला, प्रोग्राम को सुनते ऐप कीजिए मुझे, क्या हाल चाल है आपका, इतना दूर से प्रोग्राम को सुनते हैं हम, आपके घर तक आपके कानों तक इस गानों को सुनाएंगे। हम सब मिलकर सुनते हैं, जितने लोग इस प्रोग्राम को सुनते हैं काफ़ी दूर दूर से प्रोग्राम को सुनते हैं, और देखा जाए तो मुझे तार आ गया है, अभी मैं तार को उठाऊंगा, लाइफ में नहीं हूं, अभी मैं तार को उठाऊंगा। तब तक के लिए तुम अगर साथ देने का वादा करो, महेंद्र कपूर की आवाज़ है दोस्तों।

जा दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तुम अगर साथ देने का वादा करो मूवी हमराज, और चला गया था इदन एकदम इदन से मफराओ शकुंतला पर। काम को सुनते हैं, सदा सुनते हैं और सदा पसंद भी करते हैं मफराओ शकुंतला। आप खुश हो गए, आपका गाना मैंने सुना दिया घर पे दम कानों तक। ठीक है, हम आगे चलते हैं, ऐसे ही सुनते रहना मफराओ शकुंतला पर। काम को 3 बजे तक मैं रहेंगे, सुनते रहना। हम चलते हैं, एक फरसुक है और सही जवाब भी दिया है नंदा परिवार नंदा जो प्रोग्राम को सुनते ही, और मुझे कहा है अगले मंगलवार को मैंने एक गाना को आपके लिए चलाया था सुरेन भगवान दिन की जो नया क्लिप है या दिल के सुनो हेमंत दादा के गाना है, और अशोक अयोध्या ने इसका जो म्यूजिक है कंपोजर है अशोक अयोध्या ने इस गाने को बजाया है, और परिवार नंदा को बहुत बहुत बढ़िया लगल, अच्छा लगल इस गाने को सुरेन भगवान दिन के, जिसे लोग बीरबल से ज़्यादा जानते हैं। और मांग किया है फरसुक पे, सही जवाब को दिया है, और एक मंगल के मांग चुका रहा लेकिन

माँ आपसे जुड़े हैं तो क्यों नहीं सुनाएंगे, लेकिन मैंने कहा है सिर्फ सही जवाब जो देगा वो गाना मैं ज़रूर आपके कानों तक पहुँचाऊँगा। अब काफ़ी लोग हैं जो लेवार्धक है अभी मांग किया सही जवाब को दिया है, तब तक के लिए हम चलते हैं सुरीन भगवान दीन और परिवार नंदा के लिए।

जी हाँ दोस्तों, परिवार नंदा जो प्रोग्राम को सुनते हैं और मांग किया था सुरेन भगवदीन के इस गाने जो अभी अगले हफ्ते इसका क्लिप निकला है। जो भी इस गाने को सुनना चाहते हैं जाइए यूट्यूब पे और क्लिप को देखिए, सुरेन भगवदीन लिखिए, आप उसे पा सकते हैं और देख सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। सुरेन भगवदीन फाहुन का एक बहुत ही बढ़िया उम्र पर है, हमारा कोलिखा है, हमारा दोस्त है, भाई जैसा रिश्ता है हमारा, काफ़ी अच्छा गाया है, उसे क्लिप जाइए देखिए और लाइक भी कीजिए। तब तक के लिए हम चलते हैं एक बार फिर से लेवार्ड, हमारा नई फेजो लेनी दौरप से आया है यार, और प्रोग्राम को सुनते हैं कहते हैं कि वो नहीं सोचा था कि हम लोगन ऐसे रेडियो को करते हैं, बनाते हैं, सजाते हैं, कानों तक पहुंचाते हैं, घर तक पहुंचाते हैं। भाई विजय बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे लिखा है और ऐसे सोचते हैं हम लोग के बारे में, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सही जवाब को दिया है और सही गाने को मांगा है और मांग किया है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, मूवी है सरस्वती चंद्रा, लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ है, म्यूजिक डायरेक्टर है कल्याण जी आनंद जी, और इंदिवर है जो हाथ सिहाई और जो कलम पे लिखा गया है वो इंदिवर है, और काफ़ी अच्छे गाने को मांगा है, एकदम सुरीनाम से लेरी दौरप से आकर के शहर लेवर्द से इस गाने को मांगा है। आपका नाम है भाई विजय, सुनिए पूरा फैमिली जो वहाँ बैठा है हमारा, हमारा पूरा माँ के तरफ के जितना फैमिली हमारा सब लेवार्द में, सब मामू है, मामी है, सबके हम नमस्कार कहते हैं, राम राम कहते हैं, माम जितना लोग हम जाएं लो प्रोग्राम को सुनते हैं। अभी हम एक गाना पूरा लेवार्द के लिए बजाएंगे फाहुन की तरफ से, ठीक है, ठीक बात है भाई विजय के नाम।

जी हाँ दोस्तों, फूल तुम्हें भेजा है खत में, सरस्वती चंद्रा का ये गाना है। और सुरीनाम से लेडी दौरफ से भाई विजय इस वक्त लेवार्दम है और हमारा दूसरा भाई के साथ है, राकेश के साथ है, पूरा परिवार के साथ है वहाँ पे। और कहते हैं वो दम फरबास हो गए हम हलांत में, ऐसा चीज कह लो भाई विजय, ऐसे बा यार, ऐसे हम लोग यहाँ कर लो। और ये फाहौन रेडियो बा द एफ अगेन लव यार, फाहौन रेडियो पे आप भी चुन है, आप सुनते हैं तो आप चुन भी है। दिनाक शहर से हम सब प्रोग्राम करते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पे लव बहुत रुकल है, खाना पक्कों में डोसा पक्के, इस वक्त वीकेंड आएगा हम लोग के खाए वहाँ लव बूथ में पक्के शायद अभी हम लोग भी खाना खाएंगे, चार पाँच बजे से हम लोग के खाना शुरू हो जाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया पूरा परिवार जो लेवार्दे में जो प्रोग्राम को सुनते हैं, काफ़ी लोग हैं जो प्रोग्राम से प्रोग्राम लेवार्दे सुनते हैं, उन सबको हम कहते हैं पैच ऑफ यार कि आप लोग प्रोग्राम को सुनते हैं और बढ़िया बढ़िया चीज़ लेके पसंद भी करते हैं। और हमारा माइक अंतिक पूरा फैमिली हमारे जन वहाँ पे है, जल्द से जल्द हम लेवार्दे आएंगे यार, जल्द से आएंगे, तब तक के लिए हम चलाएंगे। चलो एक बार फिर से हम चलते हैं लेवार्दे, जहाँ से भाइयों से गोबिन हूँ, हमारे मामू है यार, हमारे मामा है यार जो प्रोग्राम को सुनते हैं और मांग भी क्या सही जवाब को दिया है, यास लिखा ले यास, ठीक है माम यास है। और हम आपने मांगा है मोहब्बत की पहली एक नज़र दुई गो रहा हम सोचुल याल होएगा, लव यू जान की कसम है, ई फिल्म है मूवी जान की कसम है। अच्छा ठीक है, दुई गो रहा हम याल रखे लो माम, भाइयो मामा है और जुगबीन हमारा माई के छोटा भाई है, ठीक है माम, गाना आ रहा है आपके नाम।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, सुनने वालों, ये गाना तो चला गया था लेवर्द की तरफ, जहाँ पे भाइयों मामा इस गाना को सुन रहे हैं, भाइयों सुगोबिन और पसंद भी करते हैं, लेकिन ये गलत हो गया मुझे, उमर वागिद हुसैन का इस गाने को सुनाने चाहते थे, लेकिन ठीक है, अभी वक्त है। अभी एक बार मैं फिर से उमर के ये मांग किया था, उमर वागिद हुसैन के, अभी मैं दो चार गाने के बाद ज़रूर सुनाऊँगा। प्रोग्राम को सुनते रहना और ऐसे ही सुनते रहना, 3 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे। तब तक के लिए हम चलते फिर से एक बार लेवार्ड की तरफ, देखा जाए टेलीफोन मेरा, राजन रामचरण भी प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है, यस एन फराह, धीरे धीरे से बोल, हम ले चलते आपको धीरे धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, मूवी आशिकी जिसमें राहुल रॉय काम किया है और गाने वाला है, देखा जाए तो कौन है गाने वाला, छोटे बता दे, हाँ अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू इस गाने को गाया है। चलो राजन रामचरण प्रोग्राम को सुनते हैं और इस गाना ओकर फेवरेट गाना है कुमार शानू के और अनुराधा पौडवाल के। राजन क्या हालचाल है यार, प्रोग्राम अच्छा है, ऐप द्वारा मुझे ज़रूर लिखना, हमेशा की तरह पसंद करते ही, और आज भी मांग किया है, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, सच में धीरे धीरे कोई ज़िंदगी में है या आई, सभी की ज़िंदगी में धीरे धीरे हर एक चीज़ करना, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे वहाँ तक हमारा पैगाम पहुँचे, ढेर सारा मोहब्बत पहुँचे, और ये पैगाम लेवार्ड की तरफ गया है,

धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना मूवी आशिकी। जी हाँ दोस्तों, लेवार्ड से राजन राम शरण इस गाने को मांग किया था। राजन राम शरण, राजन ये गाना मैंने तेरा नाम कर दिया। आपने सुना है, मैं जानता हूँ आप सब वहाँ बैठ के सुन रहे, गाना बहुत अच्छे लगते हैं। क्या आप सब प्रोग्राम को सुनते हैं, सदा सुनते रहना। और यही मैं बात दे दी, सुनना कुछ गुनाह नहीं है। इसे कहते हैं हल्का हो जाए यार दिल, हल्का हो जाते गाना सुनने से। लोग जो बुरा सोचते वो भी सही हो जाते हैं यार, ठीक बात ना है। ये दुनिया में ऐसे होता है दोस्तों, और ऐसे ही बहुत बहुत धन्यवाद राजन के आप प्रोग्राम को सुनते हैं और इस गाने को पसंद किया है। मैं जानता हूँ जल्द से जल्द एक कराओका सम फेस्टिवल है जिसमें राजन रामचरण जरूर गाएगा, वो बहुत अच्छे गाना भी गाते हैं। पूरा टीम आएगा वहाँ से, लेवार्ड से, यहाँ दनाक शहर में है सेशन 20 सितंबर के। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं रॉय मंगली। रॉय मंगली इस वक्त सुनते प्रोग्राम और सही जवाब दिया है। अहमान क्या है, मेरी कहानी भूलने वाले नीखंती नीन फेज तक के है। और मूवी दीवार देखा जाए, मोहम्मद रफ़ी इस गाने को गाया है। शकील बदायूनी का लायरिक्स है और म्यूजिक है नवसात के, जिसमें काम किया है दिलीप कुमार, नरगिस दत्त, अशोक कुमार। हम आप लोग को सुनाते हैं रॉय मंगली, जहाँ भी आप प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं और सही जवाब को दिया है। यस

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
2: जी हाँ दोस्तों, ऐसे हमारा प्रोग्राम थे, अभी आप सुन रहे थे कुछ न्यूज़ और कुछ रिक्लाम हमने आप लोग को सुनाया है, हमारा भाई जॉनी नंबर वन के न्यू रिक्लाम थे। ठीक है दोस्तों, ये प्रोग्राम ऐसे थे, हम दो फरमाइशें और सुनाने वाले हैं, जैसे वादा है वैसे मैंने वादा निभाया है। मंगलवार को फिर रहेगी फरमाइश, आगे चलेंगे देश तक के फरमाइश हम आगे चलाएंगे। दो फरमाइश और है, एक सुरीनाम से भाई आनंद है, आनंद सर जो प्रोग्राम को सुनते हैं पसंद भी करते हैं, और एक यहाँ पे है क्रिस सर जो नई मेकर से प्रोग्राम को सुनते हैं, और शांता को भी जो फोर्स को उतन से सुनता है प्रोग्राम को। दोनों एक ही गाने को मांगा है और दोनों के लिए मैं इस गाने को आपको सुनाने वाला हूँ। इससे पहले हमारे भाई रॉय मंगली प्रोग्राम को सुनते थे और मेरी कहानी मांग किया था। रॉय मंगली जहाँ भी ऐसे प्रोग्राम को सुनते रहना, हमारा एक सिंगर है तेक चेंज कार को फार्मेसी का, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा साथ सदा देते हैं, और सही जवाब को दिया था। यहाँ पे भी सही जवाब आया है, क्रिस भाई सही जवाब दिया और शांता ने, दोनों एक ही गाना मांगा है, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। आशा भोसले का आवाज़ है, सुनील दत्त इसमें काम किया है, और हम सुनाते हैं दो फरमाइशें और चलेंगे, उसके बाद हम भड़कती हुई गाना सुनाएंगे। फरीदा के यार वीकेंड आ गया है, ब्लैक पुश वेद पुश निकार, डोक्सा छों को आओ खा, और थोड़ा चुनमुन भी कर, थोड़ा डांस भी करा जाए ना।

0: थे हम।
1: जी हाँ दोस्तों, जिंदगी के सफर में अकेले ही थे हम। मांग क्या था नई मेकर से क्रिस भाई और फोर्स कोटन से शांता सार जो सही एक ही एक गाना दोनों जने मांगे। पद्मश्री मोहम्मद रफी की म्यूजिक भी आयशा रफी और लाइरिक्स शकील बदायूनी। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही दो गाना मैं और बताऊंगा, दो फरमाइश और पूरा करूंगा। मंगलवार को फिर रहेंगे, बाकी फरमाइशें मंगलवार के करेंगे और फ्रेडा के फिर रहेंगे। चलो सुरीनाम से प्रोग्राम को सुनते हैं आनंद। आनंद प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया और मांग किया है सरस्वती चंद्रा का एक गाना, एक गीत है जो अगले हफ्ते मेरा एक जने नई मेके से भी मांगी था, आज आनंद भी मांगते हैं। हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने के लिए। देखा जाए सरस्वती चंद्रा कहे, म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी, सिंगर है मुकेश।

जी हाँ, हमारे सुनने वाला, सुनने वालों, सुनने वाला भी है, दोनों है। आप जो प्रोग्राम को सुनते हैं तो सुनने वाला है और सुनने वालों भी है। ठीक है दोस्तों, हम ऐसे प्रोग्राम को चलते हैं, दो आखिरी गाना और चलेंगे। और काफ़ी लोग हैं जो सही जवाब को दिया है, लेकिन आज फ्राइड आखिर कुछ भड़कती भी चलना चाहिए कि जनाई की वीकेंड थे यार, ठीक बात है ना। तो दो आखिरी गाना हम चलाएंगे, एक गाना है हम चलेंगे चलेंगे यहाँ से फोर्सकोटन की तरफ, जहाँ पे रेमन प्रोग्राम को सुनते हैं कोहबीर, और एक लेवार्ड में हमारा सबसे दुलारा मामू है यार, रोती एक्सप्रेस हमारा दुलारा मामू है, जिसे हम प्यार से पापू कहते हैं, और सही जवाब को दिया है रोती एक्सप्रेस से लेवार्ड के। हम चलाएंगे अब चलेंगे फोर्सकोटन की तरफ, उसके बाद हम चलेंगे जरूर लेवार्ड की तरफ, जहाँ से पापू मामू प्रोग्राम को सुनते हैं और बहुत पसंद करते हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं रेमन फोर्सकोटन से प्रोग्राम को सुनते हैं, मांग किया है इस रंग बदलती दुनिया में, और पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, देखा जाए मूवी राजकुमार निकेतन फिल्म सस्त के है, हसत जयपुरी का म्यूज़िक है और शंकर के ये म्यूजिक बजाया गया लाइरिक से हसत जयपुरी के। चलो हम ये गाना रेमन के नाम करते हैं, फोर्सकोटन से प्रोग्राम को सुनते हैं, हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम को सुनते हैं, काफ़ी पसंद भी करते हैं। जी रेमन, आपका नाम गाना मैंने कर दिया है।

जी हाँ दोस्तों, इस रंग बदलती दुनिया में ये चला गया था फोर्स को तन की तरफ, जहाँ पे रेमन को हाबिर प्रोग्राम को सुनते ही हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम को सुना है और पसंद भी कर रहा है और सही जवाब को दिया है यस यस यस। हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों, एक आखिरी रंबा हम चलाएंगे, एक आखिरी फरमाइश जो सही जवाब को दिया है। लास्ट द फरमाइश से रोति एक्सप्रेस ले वर्द का, जहाँ हमारा मामू अनंत मामू जिसे हम प्यार से पापू कहते हैं वो वहाँ पे चलाते हैं और कहते हैं सही जवाब को दिया यास यास यास। और गाना मांग किया भी मैं उनका गाना सुनाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज जितने लोग प्रोग्राम को सुना है सुरीनाम से, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी अच्छे सवाल पे जो जवाब आया है काफ़ी अच्छे जवाब आया है, सही जवाब आया है। और मंगलवार को हम उनको गाने को मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगा, मुझे माफ़ कर देना क्योंकि वक्त नहीं। और आज फ्राइडे के कुछ भक्ति गाना मैं सुनाना चाहता हूँ, कुछ चुनमुन वाला गाना भी। सुरीनाम से गीता और अनंत जो प्रोग्राम को सुना है बहुत बहुत धन्यवाद हो। और हॉलैंड में जितने लोग प्रोग्राम को सुना है, स्पाइम सुना है, जर्मन में सुना है, ऐसे सुनते रहना हर को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आप सब फाहून रेडियो को सुनते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ आप सबसे, आप है तो हम हैं, हम हैं तो आप है, मत भूल जाना, दोनों कंती से है ना। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ तक था फरमाइश से, एक आखिरी फरमाइश चलेंगे और ये फरमाइश चलेगा लेवार्डा के तरफ रोति एक्सप्रेस। रोति एक्सप्रेस ने सही जवाब को दिया है रोति एक्सप्रेस, और मांग किया है तेरी सिवा ना किसी का। देखा जाए प्रोफेसर प्यारा नई खतिन इन तख्त का है, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले इस गाने को गाया है, सीना तमन और धर्म पाजी ने इस फिल्म में काम किया है। और देखा जाए राजेंद्र कृष्ण के लाइरिक से दोस्तों, हम आप लोग के सुनाते हैं। और जाओ जब भी लेवार्ड जाना, भूल मत जाना, रोती एक्सप्रेस में जरूर जाना। हम आएंगे, हम आएंगे, कब है कब है कब है होली, हम होली में आएंगे और रोटी जरूर खाएंगे। नहीं नहीं, जल्द से जल्द हम लेवार्ड आएंगे पापू, हम रोटी जरूर खाएंगे यार, जरूर खाएंगे। जो भी लेवार्ड जाते बेगर रोटी खाए ना लौटिए, भूल मत जाना रोती एक्सप्रेस लेवार्ड में, जहाँ पे आनंद और हमारा मामू है, मामी भी काम करते हैं वहाँ पे, अपना रोटी को बेचते हैं और रोती एक्सप्रेस है। ठीक है, सही जवाब को दिया है यस यस। और अगले अगले जो मैं सवाल था मेरा वो तैयार हो गया है भाई, मोई से इस सवाल के सुनिए, ध्यान से सुनिए। 1 किलो सोना और 1 किलो रुई, 1 किलो सोना और है भी बाकी 1 किलो रुई, इसका जवाब मुझे ऐप द्वारा दीजिए। मेरा तार का नंबर है 0 6 4 3 8 0 8 3 3 2। एक बार फिर से मैं पूछूंगा, 1 किलो सोना और है बीबा के 1 किलो रुई। तब तक के लिए हम चलते हैं लेवार्ड प्रोफेसर प्यारेलाल नेखंतीन इन तक तक, जहाँ पे रोति एक्सप्रेस अपना खाना बेचते हैं दोस्तों, काफ़ी लेकर लेकर खाना है, खा के एक बार देखिए। और सही जवाब को दिया, सही गाने को मांगा है पापू।

साजना, सच में ये वादा रहा साजना, जिसमें सिद्धांत मन और धर्मेंद्र पाजी ने काम किया है। दोस्तों प्रोफेसर प्यारेलाल नेहंतिन एनन तख्त की पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा भोसले का

का रोटी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पूरा टीम जो लेवार्दे में हमको सुना है, राकेश है, विजय जो लेली दौरप से आया सुरीनाम से, वो भी प्रोग्राम के सुन के कहते ही फरबास हो गया कि बोले इतना मई प्रोग्राम यहाँ होलांत में ऐसे हुए। हाँ भाई विजय, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे लिख ले ऐसे कर ले राकेश है, जितना लोग इस प्रोग्राम को सुना है सभी को हम राम राम कहते हैं, और सदा ऐसे सुनते रहना आधे घंटे का प्रोग्राम, और है बस सुनते रहना। देख जब ब्लैक ब्लैक लेबल हो रेड लेबल हो तो तफरा फरक, क्योंकि आधा घंटा हम लोग के नचाएंगे चुनमुन करेंगे यार। वीकेंड आ गए है, सनिचर हो गए है, और कुछ हम भी लगा रहे हैं, हम भी कुछ मायलो और हम भी बैठे बैठे नेचुरल स्थितियों में यहाँ लफ बहुत बह रहे, खाना पक्के साइड डोक्सा चौकाने पूरा सुनुक बर्फ पकड़ के वहाँ चौकाने लफ बहुत जहाँ सरसराहट हवा चल रहा है, और प्रोग्राम को बना करके सजा करके आप तक आप लोग के कानों तक पहुँचाते हैं। हम चलते हैं सविता सिंह और साधना लैला सलेक्टा बीच, और आप हम मिलकर सुनेंगे चुनमुन कर यार, डांस का दूसरा नाम है चुनमुन।

वफा, सविता सिंह, सलेक्ता बीट और शादना लैला। अभी आप सुने थे मार कच कछुआ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। पारी करो, सुखवार है और चलो हम सब झूमते हैं, नाचते हैं और चुनमुन करते हैं दोस्तों।

जी हाँ दोस्तों, सेकंड बेबी सेकंड म्यूजिक फॉर्मेशन सो टाइम सुरिनाम सुरिनाम फुल टीम म्यूजिक फॉर्मेशन शो टाइम सुन रहे थे अभी। और हम चलते हैं सविता सिंह और साधना लैला। मैंने कहा था ना हम नचाएंगे आधे घंटे के लिए, लेकिन जरूर नचाएंगे। हम तो बैठे बैठे नाच लो हम कली लो बहुत होता किलो कब डोक सो चोरे सुनुक बार्स। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं प्रोग्राम में। आधे घंटे और बचा है सविता सिंह और साधना लैला।

जी हाँ दोस्तों, रतिया कहाँ बितायो बनवारी, सबरीता सिंह और साधना लीला की आवाज में भी आप सुन रहे थे। चलो हम ले चलते हैं शो टाइम फ्रॉम सूरीनाम फुल बैंड और सुनेंगे

जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, न टूटा दूध की दांत और रतिया कहाँ बितायो बनवारी फुल बेंत। सो टाइम फ्रॉम सूरीनाम, अभी आप सुन रहे थे और हम चलते हैं, का वक्त नहीं है, हम चलेंगे सविता सिंह के तरफ फिर से एक बार, क्योंकि चटनी गाना है और प्रोग्राम चटकले काफ़ी डांस हो रहा है यहाँ लव बोट पे। हम देख रहे हैं यहाँ से डांस ही डांस हो रहा है, जहाँ पे खाना पकते डोसा पक चुका है, सुनुक बार्स भी पक रहा है ना। ठीक है चलो

जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, दिल से मिला के दिल प्यार कीजिए। सविता सिंह की आवाज में भी आप सुन रहे थे हमने चलते फिर से द फुल बैंड सो टाइम फ्रॉम सूरीनाम।

0: जी हाँ दोस्तों, आजा रे परदेशी, सविता सिंह की आवाज़ अभी सुने थे दोस्तों। यहाँ तक थी हमारा हिस्से का प्रोग्राम दोस्तों, जो ख़त्म हो चुका है। और देखा जाए अभी न्यूज़ होगा और कुछ रिक्लाम। यहाँ से हम आपसे ज़रूर विदाई लेते हैं, आने का वक्त भी होते ही और जाने के वक्त भी होते ही। हम सभी को राम राम कहते ही नमस्कार कहते हैं। और यहाँ से हर एक जहाँ तक आवाज़ मेरा पहुँचा है, जहाँ तक लोग मुझे सुना है, पसंद भी किया है, और आप सब द एवरग्रीन फाहून हिंदुस्तानी रेडियो से चुन है दोस्तों, जहाँ शहर से हम सब है, हम हमारा स्टूडियो है, जहाँ शहर से हम प्रोग्राम को करते हैं, जहाँ पे काफ़ी अच्छे है, सरसराहट हवा चलते हैं, काफ़ी बोट है, यहाँ याख्त है जो लगा है, हमारा हम लोग के याख्त है, लव बोट उसमें लिखल है, जहाँ पे खाना पकते है, हमारा बैठना उठने इसी बोट में है, अभी खाना पक रहा है। हम यही कहना चाहता हूँ, हर एक को हम सलाम करते हैं, पिच ऑफ जो आप लोगों ने प्रोग्राम को सुनते ही लेवार द दिनाक शहर से, और ब्रेदा से सुना प्रोग्राम को, अलमेरे से सुना है, नए अमेरिका से सुना है, जर्मन से सुना है, स्पाइन से भी प्रोग्राम को सुना गया है, और सूरीनाम से सभी को हम राम राम कहते हैं। नमस्कार, हम फिर मिलेंगे मंगलवार के, भूल मत जाना हमारा जो सवाल थे, एक किलो सोना और है बीबा के एक किलो रुई, सवाल पे ऐप खुल गई है, अंतर दे सकते हैं, मंगलवार को हम मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आने जाने के एक वक्त है, सलाम खुदा हाफिज़, राम राम नमस्कार, फिर मिलेंगे प्यारे दोस्तों।
1: The best of Bollywood hits van toen en nu. Bij Fahon Hindustani Radio.
2: अदवकात कांतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
5: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: This is the music for us. Milan Summer Festival 2026. Vrijdag 21 augustus, voor het eerst, voor jong en oud, de muziekbals van Trinidad, Raymond Ramnarayan.

0: क्या हुआ तुझे?
1: अभी आप सुन रहे थे तन्हा जी आना जाए फ्रॉम द मूवी टॉम डिक एंड हैरी से हमने पेश किए हैं और आपको सुनाने वाले थे हिमेश रेशमिया जी। सोनू निगम आपको सुनाने वाले हैं जूही बब्बर के साथ में काश आप हमारे होते हैं।

काश आप हमारे होते। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी काश आप हमारे होते, द टाइटल हमने पेश किए हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। फ्रॉम द मूवी धूम से हम पेश करते हैं सुनने वालों दिल बोले शिकदुम शिकदुम। शान और श्रेया घोषाल जी आपको सुनाने वाले हैं।

शान और श्रेया घोषाल की आवाज में भी आप सुन रहे थे दिल बोले शिकधूम फ्रॉम द मूवी धूम से हमने पेश किए हैं। जिंदगी की राह में कुछ रिश्ते टूट जाते हैं मगर उनकी यादें हमेशा दिल में बसी रहती है। जरा जरा टच मी फ्रॉम द मूवी रेस से आप सुनेंगे।

मुनाली ठाकुर आपको सुनाने वाले थे जरा जरा तजमी तजमी तजमी फ्रॉम द मूवी रेस से हमने पेश किए हैं योर माई लव फ्रॉम द मूवी पार्टनर से हम पेश करते हैं बहुत मुश्किल होता है दर्द हंसकर बर्दाश्त करना

मनमोफी पार्टनर से हमने पेश किए हैं माई लव जाने जा योर माई लव। वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ, वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। हम शकल्स हैं फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते कॉलर ट्यून।

अभी आप सुन रहे थे कॉलर ट्यून। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं और बीवी नंबर 1 से हम पेश करते हैं इश्क सोना।

अभी आप सुन रहे थे इश्क चांदी है इश्क सोना है। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी ऐतराज से आप सुनेंगे अदनान सामी और सुनीरी चौहान आपको सुनाने वाले हैं गीला गीला गीला गिल गीला गीला

थे गिला गिला गिला गिल गिला गिला मिला मिला मिला कोई मिला मिला फ्रॉम द मूवी ऐतराज से हमने पेश किए हैं। मेरी यार की शादी है इसी फिल्म से हम पेश करते हैं। जाके जाके अरमा है जाके जाके हम

अभी आप सुन रहे थे जागे जागे अरमा है जागे जागे हम। प्रोग्राम को हम और आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं आपको सुनाने वाले हैं शान सुनिधि चौहान और के

0: शान सुनिधि चौहान और के आपको सुनाने वाले थे देखो नशे में, मूव योर बॉडी नाउ फ्रॉम द मूवी किस्मत कनेक्शन।
1: Now listen, yeah.

कुदरत का है करिश्मा, एक दूसरे से मिलना, दुनिया के सरसमी पर किस्मत को आजमाना, ये प्रेम का जहां है हरगिज़ न भूल जाना, आपस से है मोहब्बत, आपस से है मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। सभी सुनने वाले को हमारा नमस्कार, आधा बरसो 4:02 बीत गया है, पाहोन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन है, परिवार घर में दुख दुख में हम साथ देते हैं, जहां पर खुशियां है बहुत से बधाई पेश हो। शुक्रवार है जुलाई के 31 तारीख, संगीत के प्रेमी हो गए तो आपको जरूर मालूम है कि आज का दिन क्या हुआ था।

साथ मैं आपका दिन बनाऊंगा, उसके बाद प्रोग्राम चलेगा लगातार 6 बजे तक राफी साहब के याद में। हमारे रेडियो पर आप चुन रही है काम जो आपके रेडियो किससे कराना है, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से। फिर सिर्फ हमारा तार का नंबर है। मौसम के समाचार, धीरे बरखते फौरत बरखते और छोटे छोटे खबरें आप सुनते रहना।

का एंड कुमार सानू साथ साथ उदित नारायण, ये तीनों के मीठे आवाज़ में आप सुनेंगे शाम भी खूब है। शाम भी खूब है आप सभी के लिए, हैप्पी वीकेंड आप सभी को पेश हो।

जाने दो। शाम भी खूब है, पास महबूब है, क्या बात है दोस्तों। मौसम का समाचार, वॉल्कन एंड सन लोकालन भाई, कहीं कहीं पर बारिश हुआ है आज दोस्तों। और फॉर ऑल इन हेट नॉर्दर्न एंड ओस्टर्न कैनन एंकलर ऑनवेज बैंड फॉर ओमन इन हेट मिडन एंड साइडर फॉर अटलांटिस एट ऑफ द मीस्ट प्लास इन ड्रो एंड फॉर नाइट हेट वेस्टर्न कॉम्स सन फाकर द फोर स्काइन तुसन 20 एंड 28 ग्राड आज का टेम्परेचर रहेगा। और कल जब शनिवार है, वीकेंड है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर 25 ग्राड फेफन 20 ग्राड होने वाला। उसके बाद सोमवार रविवार को सिर्फ 20 ग्राड, वीकेंड के बाद सोमवार को देर तक, मंगलवार को 28 और बुधवार को सेशन 20 ग्राड रहेगा।

मिनट बाकी है 4:30 बजने में, मैं तुरंत चला जाता हूँ श्री नामदेव, वहाँ पर है नृत्य सराय पर, घर पर बैठी हुई है मेरे दो बहन, बड़ा बहन है और छोटी बहन, दोनों प्रोग्राम से मजा लुट रही है, यानी कि गायत्री द्वारका और साथ ही साथ लीला द्वारका, दोनों के लिए मैं चॉइस करके रखा हूँ। ये जीवन है, इस जीवन का नाइटिंगेल लता दीदी की आवाज़ में।

ये जीवन है इस जीवन का एक गीत स्पेशल मेरे दो बहन बड़ा बहन गायत्री और छोटी बहन लीला द्वारका दोनों के लिए पेश था। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। यह हॉलैंड से पहुँचे और गर्मी का मौसम है, मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग के वहाँ भी गर्मी के मौसम हो गए। वैसे कभी कभी ज़्यादा बारिश बरस होता है सन्नामदेश में, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा झूरा रहता है। फिर भी आप सभी को एक शुभ दिन और हैप्पी वीकेंड मैं कहता हूँ। फाहन हिंदुस्तान रेडियो के शाम का प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों, और जैसे मैंने आप सभी से वादा किया था तो चंद मिनट के बाद पद्मश्री मोहम्मद रफी के याद में एक प्रोग्राम चलेगा।

बरेक्टर मिडफील्डर आया का मिडफील्डर फिस जिम जो है वो इटालिया का क्लब टोरिनो के साथ मुकाबला करेगा। तो ये सी तक बार वो आया के साथ फुटबॉल का खेल खेला है और वर्ल्ड फुटबॉल का जो फीफा है वर्ल्ड फुटबॉल का बन फीफा जो है वो कहता है कि वो ये नाम बदलेगा और कॉमर्शियल के तरह अपन काम चलाएगा, एक नया बदलाव बनाएगा। तो ईफा यूरोपीय फुटबॉल बन जो है और साथ ही साथ भी और फुटबॉल बन जैसे कि आसियर नॉर्थ अमेरिका का जो है ये इस बात से खुश नहीं है। तो देखा जाए फीफा का जो फैसला है आगे जाता है या नहीं, वाले एक बदलाव के तरह फीफा का काम करना चाहते हैं। वैसे तो फीफा का फीफा का बॉन्ड जो है उसमें यहाँ लीडर है और एल्फ लीडर है और एल्फ में से हॉनसेसन डैर तक लीडर जो है वो है मेरे अमेरिका आसियर मेरे नॉर्थ अमेरिका आसियर और यूरोफा का। तो जब स्टेमिंग होगा तो स्टेमिंग में ये फीफा हार जाएगा। आगे चलकर आर्न फ्लॉट जो है एक्स फेनोट का ट्रेनर जो है वो बॉन्स कोच होता हॉलैंडिस का लेकिन कुमान का ऑफॉल पर होता, लेकिन ये तीनों से तैयार का ट्रेनर वो कहता है वो यूरोपीज यहाँ यूरोपीज फुटबॉल क्लब के लिए फोर्ड कर देता है और बॉन्स कोच का काम नहीं करेगा। आगे चलकर आने वाला सोमवार रविवार को शाम में 6 बजे एंटूफ में योहान क्रुइफ स्काल का मुकाबला है, पीएसवी आरसेट से खेलेगा। योहान क्रुइफ का जो मुकाबला है दोस्तों तो देखा जाए पीएसवी 15 बार ये बीकर जीता है, उसके बाद आया नीकर केर फेनोर फेस केर एस ट्वेंटे 2 माल आरसेट 3 माल एस इतरक 1 माल टेक्सवाल 1 माल एस पी 1 माल और वैसे तो और क्लब नहीं जीता है लेकिन

मुकाबला किया है वो भी यूरोपा लीग का 4 राउंड में, तो ये खेल हालांकि तुई में पहला खेल A2 से हार गया था, तो कल का मुकाबला जो था तो तुई में एक खेल एंड हुआ है एसडी में, और बुडापेस्ट में नहीं ही बुडापेस्ट में खेल हुआ है कल, फोरेंस पार जो बुडापेस्ट का कैंपियन है उससे एक मुकाबला हुआ। तो अब एफसी ट्वेंट यूरोपा लीग में भाग नहीं लेगा, लेकिन कॉन्फ्रेंस लीग का दर्द 4 राउंड में उन्हें खेलना पड़ेगा। और स्पोर्ट बरेस्ट दोस्तों, आयाक्स कल भी मुकाबला किया और 4 राउंड कॉन्फ्रेंस लीग का खेल में फिर इन से ए का फोयोफोदिना से जीता है, ये भी एक 23 रेस्ट था, तो आयाक्स सीकर है वो कॉन्फ्रेंस लीग में भाग लेगा। और स्पोर्ट बरेस्ट एरस डिफिसी का जो फिनल उतराई कॉम्पिटिशन है ये आने वाला शुक्रवार, आज तो शुक्रवार है या तो 21 है, लेकिन सीफ ऑफ क्रिस्टस को ये मुकाबला का शुरुआत होगा। एससी कामबीर एक्सेल्सियर से खेलेगा 8 रात्रि को, उसके बाद एनईसी टेलस्टार, गुआत ईगल्स वेलंटवे, पीएसवी फर्स्टार्ट और आरसेट आडू टेनहा, सोमदा नीक ऑफ क्रिस्टस को स्पार्टा रोटरडाम, फेयनोर्ड पैक्सवल आयर्स, एफसी ग्रोनिंग, एफसी यूट्रेक्ट और आखिरी में एससी हेरफिन एफसी ट्वेंट से खेलेगा। और सुनांदिस का बंस कोच जो था हैंग टेंका से वो अंशलाक ले लिया है, उसका जगह पर आया है हैंग फ्रीसर, हैंग फ्रीसर नया बंस कोच है और वो टेनिमेंसो के समय पर असिस्टेंट बंस कोच था, तो ये कोशिश करेंगे सुनांदिस को यूरोपीज फुटबॉल में भाग लेने को लिए कोशिश करेंगे दोस्तों। इसे तो सुनांदिस का जितना बदरे लीफ है ये सभी के पास पैसा ज़्यादा है खाने या पीते हैं, लेकिन जहाँ पर मदद करना चाहिए नहीं करता है, स्पोर्ट जहाँ होता है वहाँ पर मदद नहीं करता, लेकिन हो सकता है सुनांदिस अपने को प्लास कर लिया अमेरिका में, तो ये सब जितना बदरे है सब मिलकर बहुत से पैसा और बहुत से कार्डोस भी देते हैं, लेकिन इस सब के एक शौक है दोस्तों, जब जीतता है तब देता है वैसे नहीं देता है, फिर भी मान लिया जाए आप सभी आशा रखिए कि हैंडफ्री से सुनांदिस को वीका में तलुक पहुंचा सके। यह तक था छोटा सा स्पॉट पर रिक्तन, घर की ओर देखता हूँ तो अब तो 5 मिनट हो गया है, 4:30।

पद्मश्री मोहम्मद रफी का मृत्यु हुआ है 41 साल हो रहा है 2017 और जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1920 में। पद्मश्री मोहम्मद रघोही नाम जो हिंदी सिनेमा को अपनी आवाज़ से अमर कर दिया। सबसे ज़्यादा गाना उगाया है एक्टर शमी कपूर के लिए, 100 से ज़्यादा गाना शमी के लिए वो पेश किया है। तो सभी गानों से एक गाना मैं चॉइस करके रखा, फिल्म जंगली। ये फिल्म आप सभी जरूर देखे होंगे, निधि इन शैस्त्रक में रिलीज हुआ, जिसमें सायरा बानो और हेलन जबरदस्त काम किया। हम सब मिलकर सुनेंगे आई आई या सुकू सुकू।

जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है, कहानी ना समझो। अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू।

हर एक हीरो के पीछे दोस्तों, उन दिनों में हर एक हीरो के पीछे एक असली हीरो होते थे और वो था पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी। आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका मीठी आवाज़, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जो गायल है दोस्तों अपन मीठी आवाज़ों से, तो वो सदा अमर रहेगा। सभी गानों में से एक गाना और है जो शमी कपूर ने प्लेबैक किया है, वो है फिल्म जंगली का सॉन्ग, चाहे कोई मुझे जंगली कहे।

एल्बम जंगली का टाइटल सॉन्ग भी आपने सुना दोस्तों, राफी साहेब और ना शमी कपूर दोनों के जोड़ी हमेशा के लिए एक यादगार बन गए। जैसे मैंने आपसे कहा तो 190 से ज़्यादा गीतों शमी कपूर के लिए राफी साहेब ने गाया। सभी गीतों में से एक गीत और मैं पेश करूँगा, फिल्म का कश्मीर का कली का सॉन्ग है, दीवाना हुआ बादल।

0: बाद
1: दीवाना दीवाना हुआ बादल। जब आज इनदार तक जुली है दोस्तों, जुलाई के इनदार तक 31 तारीख, तो वही दिन है जब पद्मश्री मोहम्मद रफी का मृत्यु हुआ था। निकलती तक तक में 44 सेशन पेड़ तक साल आज पूरे हो रहा है। उनके याद में एक दो गीत चलेगा, लगभग एक घंटे से ज़्यादा लगातार ये प्रोग्राम जारी रहेगा। मोहम्मद रफ़ी के बाद यकीन कीजिए मैं बताऊंगा आपसे, यूसुफ मोहम्मद रफ़ी के बाद जॉनी वॉकर सबसे ज़्यादा गीत राफी के, हाँ शामी कपूर के बाद जॉनी वॉकर सबसे ज़्यादा गीत प्लेबैक किया है राफी साहब का, वो है 155 गीत। वो कॉमेडी स्टाइल में राफी था तो दुख के गीत तो दुख के स्टाइल में गाते थे, और लव के सॉन्ग लव के स्टाइल में, जब शामी कपूर का पारी रहा था शामी कपूर के तरह गाते थे, और जो धर्मेंद्रा के पारी होता धर्मेंद्रा के तरह जाते, इसे वो अपन गीत पेश किया है फिल्मी दुनिया में। इसे लोग कहते हैं सुरों का बादशाह, उन्होंने तो सुरों का बादशाह आज दुनिया में नहीं है, लेकिन जॉनी वॉकर के लिए एक दो गीत मैं पेश करूंगा, जो जॉनी वॉकर का जो राफी साहब ने अपन दिल से गाया है कॉमेडी स्टाइल में।
2: मालिश तेल मालिश जंपेलिया

घबराए काहे घबराए, फिल्म प्यासा का सॉन्ग अभी आपने सुना। राफी साहब जो कॉमेडी स्टाइल में अपन आवाज़ मिला दिया, तो एक और कॉमेडी स्टाइल का सॉन्ग राफी साहब का चलेगा, एक मुसाफिर। एक मुसाफिर को दुनिया में क्या चाहिए क्या चाहिए, हो सकता है गीत सुन के आपको पता लग जाएगा कि एक मुसाफिर को क्या चाहिए। मैं सोचता हूँ प्यार, यूसुफ हंसे है, बहुत सोचे हम सोचिला, यूसुफ भी सोचे कि प्यार है कि पैसा यूसुफ प्यार। अच्छा, तो वंस अगेन जॉनी वॉकर का एक किया हुआ सॉन्ग, प्लेबैक किया हुआ सॉन्ग राफी के आवाज़।

खुशी से कट जाए हमारा भी सफर, हम पर भी जरा कर दो इनायत की नजर। खुशी से कट जाए हमारा भी सफर,

0: खोल है ऊपर से खोल है अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल फोलम फोल है ये दुनिया गोल है ऊपर से
1: ये कहां से मर गए ट्यून बदलो
2: मेरे मौला बुला लो मदीने मुझे लगे मौत के आने पसीने मुझे मेरे
0: मौला बुला लो मदीने इसे
3: इसे नहीं बाबा मुझे
1: अच्छा बेटा अच्छा लंबी उम्र हो
0: ऊपर से खोल है अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है ये दुनिया गोल है भाई।
4: तीसरी जगह पे दोस्तों निमद्री पर आकर रुकता है जुबली कुमार, प्यास से लोग उन्हें जुबली कुमार कहते हैं, असली नाम रजिंद्र कुमार। ये 150 से ज़्यादा सॉन्ग्स प्लेबैक किया है राफी साहेब का, बाहर फूल बरसाओं से लेकर, जी हाँ बाहर फूल बरसाओं से लेकर मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, ये सभी गीतों आज तक आपको जरूर याद हो गए। तो मैं शुरुआत करता हूँ, बाहर फूल बरसाओ मेरे महबूब आया है।

अरे फूल बरसाओ मेरे महबूब आया उसके बाद, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। 150 से ज़्यादा गीतों प्लेबैक किया है जुबली कुमार यानी कि रजेंद्र कुमार राफी का गाया हुआ, तो हम सब मिल के सुनेंगे राफी साहब के याद में। प्रोग्राम चल रहा है।

मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम अब की बार कौन है जो सपनों में आया। जुबली स्टार राजेंद्र कुमार जो राफी साहब के आवाज में प्लेबैक किया है फिल्म छुप गई।

0: शिमारू फिल्मी
1: कौन है जो सपनों में आया। दोस्तों रजनी कुमार के बाद मैं चला जाता हूँ शशि कपूर के, और शशि कपूर जो शम्मी कपूर का छोटा भाई थे वो भी राफी साहब के आवाज में 130 गाना पेश किया। जी हाँ दोस्तों, 130 से एक दो गाना और ज़्यादा या कम हो सके, लगभग 130 लिख रहे थे स्वामपान राफी साहब। और सभी गीतों में से मैं चुन के रखा हूँ दो या तीन सॉन्ग मैं पेश करूँगा। पहला सॉन्ग जो है तुम बिन जाओ कहाँ,

जाओ कहा कि दुनिया में आकर कुछ न चाहा तुमको चाह के शशि कपूर दोस्तों जी हाँ मेरे दान होने दर्द तक विद्रोह।

पेश किया है राफी साहब का, और मैं चॉइस करके रखा आपकी बार, चले थे साथ मिलकर और चलेंगे साथ मिलके, हसीना मान जाएगा फिल्म का नाम है।

0: नजर ना लगे।
1: आइए आइए, तशरीफ लाइए।
2: मैं तशरीफ ला नहीं रही हूँ, तशरीफ ले जा रही हूँ।
1: कहाँ?
2: मिसेस वर्मा के यहाँ।
1: मिसेस वर्मा के यहाँ? लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खैर चलो।
2: ना ना ना, आपको चलने के लिए किसने कहा है? वहाँ सिर्फ लेडीज पार्टी है।
1: लेडीज? तो फिर मर्द क्या करें?
2: आराम।
1: इतनी हसीन रात में आराम? आपका प्रोग्राम कैंसिल।
2: इम्पॉसिबल, मैं वादा कर चुकी, मैं जा रही हूँ।
1: नहीं, तुम नहीं जा सकती।

चले थे साथ मिलकर और चलेंगे हमेशा साथ चलकर। दोस्तों मैं चल जाता हूँ अब की बार धर्मेंद्रा 114 गीत पेश किया है, प्लेबैक किया है राफी साहेब का। जी हाँ, आप जानते हैं राजेंद्र कुमार, उसके बाद धर्मेंद्रा होता है, धर्मेंद्र के बाद देवानंद, देवानंद के बाद दिलत साहेब। तो मैं शुरुआत करता हूँ धर्मेंद्रा से। 114 गीतों ये पेश किया है राफी साहेब का, और आप सभी को मानना चाहिए कि 44 साल होता है आज, जब 31 तारीख है जुलाई का, तो 67 साल होता है कि राफी साहेब का मृत्यु हुआ। पैदा हुआ था 24 दिसंबर नेवी फिरंत में। अब की बार मैं कहीं कभी न बन जाओ तेरे प्यार में आए कविता।

0: आज मौसम बड़ा बेईमान है दोस्तों धर्मेंद्रा। जैसे मैंने कहा 114 गाना वो पेश किया है पद्मश्री मोहम्मद रफी का, प्लेबैक किया है। उसके बाद आता है देवानंद का पारी। देवानंद जी हाँ, देवानंद 100 जी हाँ दोस्तों 102 गाना रफी साहब का प्लेबैक किया है। और आप जानते हैं देवानंद किशोर कुमार का गीत भी बहुत प्लेबैक किया है, लेकिन रफी का दिन है आज तो रफी के बारे में बातचीत होता है। 101 या 112 लीडर ये प्लेबैक किया है। सभी में से एक गीत है हुए आप नाराज, आप नाराज खुदा खैर करे प्यार मोहब्बत फिल्म का नाम है।
1: देखिए कुदरत का इशारा है कि आप मेरे
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज नो नीड फॉर पैनिक, दे आर क्रॉसिंग सम हाईवेज, प्लीज रिमेन वेयर यू आर एंड फॉर योर एंटरटेनमेंट मिस कोलेट विल गिव यू एन एक्स।

नाराज खुदा खैर के। दोस्तों राफी साहब का गीत जो हर एक सुनने वालों के दिल में उतर जाते थे वो भी पेश किया है दिलीप कुमार। दिलीप कुमार 70 सीफन तक गीत या सीफन सीफन तक गीत प्लेबैक किया है राफी साहब का, और सभी गीतों में से मैं चुन के रखा हूँ जब जब जो उड़े जब जब सुल्फे तेरे। नए दौर फिल्म के नाम है, वीएनटी माला के साथ दिलीप साहब फिल्म में काम किया।

जब सुल्फे तेरे जो से आखिरी सॉन्ग चलेगा 107 फेर तक साल हुआ है जब राफी साहब का मृत्यु हुआ है, उसी के याद में मैंने प्रोग्राम लगभग 1.5 घंटे तक लगातार पेश किया दोस्तों। मिस्टर जॉनी नंबर वन आ गया स्टूडियो में, अब अभी 6 बजे के बाद उसका प्रोग्राम आप सुनिए, खास करके जो न्यूज़ ब्रेक था वो पेश करता है, जो सुनते रहना। और मिस्टर हैन भी मेरे सामने बैठा हुआ दोस्तों, आप इन्हें नहीं जानते तो मैं अभी बताता हूँ कौन सा आदमी है। आपने सुना होगा हाक साथ रेडियो को, बीते हुए दिनों में सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन था डेन हाक शहर का या हॉलैंड देश का, तो उसी का डायरेक्सी या डायरेक्टर मालिक श्रीमान टेक्निकस भी श्रीमान हैन सुखलाल मेरे सामने बैठा हुआ है। वीकेंड है आप सभी को प्यार भरा वीकेंड, हैप्पी वीकेंड पेश हो। आने वाले शुक्रवार शाम में 4 बजे एक बार फिर मैं प्रोग्राम गीतों के संगम के साथ स्टूडियो में उपस्थित रहूँगा। खुशबू रहेगा तो फूल खिलेगा, जिंदगी रहेगा तो फिर मिलेगा। आप सभी को एक सुहानी रात। जय हिंद।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आजीरमा दे। तमाम रेडियो फोन की सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरिए नाम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश का समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। आज ही दोस्तों फ्राइडे, शुक्रवार हो चुका है, इन देर तक यूली हो चुका, घड़ी की ओर देखा जाए तो नीख मुनीत ओवर सेस हो चुका है। अभी आप लोग एक मस्त भरी प्रोग्राम को सुना है हमारे कोलेखा साथी राजन द्वारका से, उससे पहले आप लाइव प्रोग्राम को सुना है और वो है हमारा अनिल सरजुग के प्रोग्राम। यहाँ से 6 बजे हमारा देश और विदेश के समाचार हम लेकर आ चुके हैं। हमारे प्यारे प्यारे जनता, मीठा मीठा जनता, स्वीटी स्वीटी जनता, आज भी हम फेसबुक के माध्यम से लाइव है अपना प्रोग्राम में, और आज भी आप लोग को हम दुनिया की शेयर कराएंगे रेडियो फाउन के माध्यम से, और जाकर बांट में सूरीनाम के भी शेयर कराएंगे। तो हमारे नानी लोन, आजा लोन, जी लोन, आप जहां भी हो बड़ों के प्रणाम, बच्चों के आशीर्वाद और दोस्तों के, हमारे दोस्तों के सलाम, दुआ, प्यार, नमस्कार सब सब भैया। तो यहां से हम तुरंत चलते हैं और जाते हैं अपना देश सूरीनाम की ओर, और फेसबुक के माध्यम पे आ गया है इसरी, जाने के धर्मेंद्र इसरी आ गया है, तो आपको हम स्वागत करते हैं धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र बातचीत ये हो रहा है, सूरीनाम के भैया दुई परानी बोले बड़ा प्रेम से रहतरा, बोलिए जॉनी झगड़वा हुई के ना ना ना ना ना, ये दूसरा बातचीत है। दुई प्राणी के बातचीत हुए है, दुई प्राणी के सिपाही पकड़ी से, तो ये दोनों के देर तक यूली के पकड़ी से ऑफ डीलिंग जोन मां सीईई के एगो आतंकवाद तक यार के एफएस एगो फैफंदर तक यार के, तो इस सब के कैसे पकड़ी से भैया क्यूबान के, क्यूबान के औरत रहा भैया, क्यूबान लोग के औरत लोग के समोकल करके लावत रहा देशवा में। तो लोग जानो है आदमी ड्रग स्मोकल करे है, सौदा पानी स्मोकल करे, अबे बतावे कितना तमाकू सब स्मोकल कैसे, और इस सब मेंस हैंडल करत रहा भैया, फॉर्मूल लोग आइट बेटिंग फॉर फॉर नाम लग का क्यूबान से व्रावन एंड हील मोये व्रावन और बे मेंस हमार भैया लोन हुआ पे बनैया लोन है सूरीनाम में, हमसे बोले है जॉनी, बोले बड़ा सुंदर सुंदर क्यूबान के औरतियां है, तो वही के मारे तो एक के सबन क्यूबा के औरत लोग के स्मोकल करके लावे है। तो हम ना बोले ला तो लोग के जइयो देखिए यो मां हम बताए ला तोरिया कैसे है, तो हिया बड फ्रॉ फॉर क्लार्ड बोले हैगा औ जोन के पकड़ी से ऑन द सुक हम खांग नादर फॉर मूड लग स्लाख तो फॉर एगो क्यूबान के औरत स्लाख तो फॉर हाथ गेल है बतावे है, बोले हैगा दैट से हर अन कम्स इन सूरीनाम, बोले जैसे हम आइली बोले सबन हमार पासपोर्ट ले लेइस है, पासपोर्ट ले लेइस है, तो जब पासपोर्ट ले लेइस है तो अब बोलिए कि अब तो अभी कहीं जा ही ना पाई, जब पासपोर्ट वाले आई गए तो इन दर दात में से अब एकर पासपोर्ट ले के, एकर पासपोर्ट ले के और का करी से गा जाए के बैठा दे से भैया, हाँ बैठा दे से गा प्रोस्टुई में नाना, हाँ जहाँ पे हमारे हमार
वीरमान नो ने जा है चकलस करे हूं वहां पे जाई के बैठाई दी से और पासपोर्ट कुबान के छोड़ी के माई के और कस पासपोर्ट ले ली से और ले जाई के बोले अब चल तू अपन सेक्स वर्क के काम शुरू कर नाइट क्लब में। तो हमारा बहन अर्शिला भग्गू समझ भी अलगमान से आकर हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं, तो आपको हम स्वागत करते हैं। तो यहां बताए गए हैं कि पासपोर्ट लेके जाए के खदोंगन ओम सेक्स वरक्त फरिश्तन और ना खाली एगो फर्स केलंद क्लब में ले जाए वहां पे और बदमाशी करत रहा। हाँ, और बदमाशी करवावत रहा द नाश खाफ से आन द सेख मेर्दर फ्रोवन फंड क्यूबांस ऑफ कॉम्स ऑफ द ओपन लोकास कॉमोवेना मन हंसू में भैया ले जाए ले औरत के धल्ले रहा कॉमोवेना में भाई स्मोकल कर बड़ी ढेर और कॉमोवेना में एगो रास्ता के नाम बात अर्शिला तू तो जानत हो यो कॉमोवेना के बातचीत है एगो रास्ता के नाम बा माया दाम है हमें तो पता न है और ये कमोवेनक है हंसुक है आपको तो पता होगा कि माया दाम कमोवेन में कहाँ है। तो कमोवेन में माया दाम में भैया हुआ पे ले जाए ले जाए औरतियन के जैसे महासैन में धरत रहा यहाँ पे और क्यूबा के औरत के मंगाई और ले जाए ले जाए माया दाम में आम खवावत रहा का भैया। और बताए गए है ऑफ कॉम्स्ट क्यूबा ऑन फॉर ना मुदलक फॉल्स फॉर वेंसलन फॉर सुरीनाम ही व्लाद इन ओवर गोमन और बोले फॉर सेक्स वर्क मींस इन पासपोर्ट वर्डन इन कोनोमर आस अंडर पंत से अख्तर को होदन वार्डोर से अफंकलिक ब्लीव फॉर द फरदाख्तन। तो जो ने पासपोर्ट वा ले ली तब तो अपू जोन बोली तो उन तो के करे के परिगा और मोई मोई बार बोल के चल तो के सरनाम में हम बकुआ खवाबे मोई मोई काम देबे और हिया लाई के एके और क्यूबा के औरत लोग के और लाए लाए हौसल करवावत रहा पासपोर्ट पासपोर्ट ले रहा। तो लेडी सेफ बे से हमारा एक बहन और आ गया है चित्रा अवतार आपको बहुत प्यार से और स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में। तो ये बात हो चुका भैया तुल जानो है क्वेक क्वेक जाने जो सोनवा वाला चीज हुआ है तो क्वेक के बात है। तो क्वेक के तरह चोरी भैला तो हम कई रोज से बोले ला बकी सरमक्का के रीवा में भैया सरमक्का की रीवा में बेनालांग के रीवा में मछरी मर मर सब उतरान है एरमा राम तहल सिंह आपको हम स्वागत करते हैं। मछरी सरीनाम में सरमक्का में और बेनालांग में मछरी मर मर सब उतरान है भाई फरखेफ भैले हुआ के पानी। तो लांटी बोले है बोले तू लोग के रीवा के मछरी पकड़ के ना चाहे खाई के और ना पानी चाहे पिए के बोले फरखेफ तक है। तो अब अनमी लोग के बारा दुख है भैया जो अनमी बेनालांग में रहे है वो रीवा के पानी से बनावे खा है और मछरी बनाई के खा है अपन जीवन चलावे है। जब तो रीवा फरखेफ तक हो गए है तो अनमी भला अपन जीवन कैसे जाय चलावे। तो लांटी का बोले है शांति गुरु के दुर्पू में शर्मा का रिवीर में बोले हुआ पे शांति गुरु में ले जाए अब उस सबके पकेता देवे भैया पकेता देवे है हिया बतावे है बोले सिचुवासी ही द सिचुवासी ही खलेतन मसाले फिस्टर्फ्ट एंड ओंत रीखल्ट दाखल के लिए इन खत्रोफन गमेंशाप के बातचीत हो रहा है। तो बताए गए हैगा कि अब ले जाए वो कैप्टन है जिसका नाम बा एथार प्लेन शांति ग्रोम के बोले हैगा 10 बवून द हेल्प वार देर करे हैं। मैं बोले फिर भी
फुसर पर कहता हम लोग के लगे आवे है दौर सो बोले है मैं बोले हम लोग के बोले कैप्टन बोले हैगा पिकिंग पोइका के प्लेट फॉर फेदर हेल्प से स्टिल द पकेन फील बतीकन फॉर द बमोज मार द ऑफवॉल के नुसाकलक ब्लेव सो लैंड द रिवर वाटर अनब्रेकबार ब्लेव मेंस तो पानी के हुआ बड़ा प्रॉब्लम अब देखो भैया बोले रही क्यूबा के औरत के इरमा क्यूबा के औरत के शर्मा में से बंद स्मोकल करके लावे दिसुआ में पासपोर्टवा लेके और ले जाए के नाक क्लब में प्रोटेस्टुई सेक्स वर्क के काम करवावे हैं तो यहाँ पे बताए गए हैं ना खाली क्यूबा के औरतियन के भैया 1700 इलाकाल तमाकू निकेरी में सबन स्मोकल करी जरे कोई कोकाइन स्मोकल करे है कोई भैया तमाकू हो स्मोकल करे कोई औरत स्मोकल करे है तो यहाँ अब तमाकू के बारी है 1700 पाकी और जाए के स्मोकल भइल है ये बातचीत हुए वो जगह के नाम बा करापा हुक लान निकेरी के बातचीत है तो करापा हुक लान निकेरी में एगो बहुत बड़का परताई तमाकू मिलल है और बोले एगो 50 वर्ष के आदमी के सपन पकड़ लीजिएगा तमाकू के साथ में और ओके जबरदस्त बूटू मारी से और रमिया के भका भक चाहे तमाकू पिए के भैया जब तू तमाकू स्मोकल कर लेते तो के चाहे तमाकू पिए के ये बात है सूरीनाम के हमारे प्यारे प्यारे जनता तो यहां पर बताए गए है पता है और हमारे उस्तादों के उस्ताद महा उस्ताद भैया सुंदर हीरा लौंडा के नाच भी रहा के नाच के गुरु भी हमारा प्रोग्राम में आकर और जुट गए हैं तो हमारा उस्ताद के हम यहां से हृदय से स्वागत करते हैं तो भैया हीरा जी बातचीत हुए भैया इतना रोफ हुए सूरीनाम में का बोली भाई और हमार हनीस मनोरथ बोले बोले चिजुअन बोले बड़ा मोई हुई के दसवा तू रिश्ता के बोला अब देखो भैया खवा पंद ऊपर फाल भैल बालकोन में रमिया बैठ के अपन ठंडा ठंडा हवा लेवत रहा ठंडा ठंडा हवा लेवत रहा एगो सीनियरो बुरखर यहाँ और खुमोई से अपन घर में बालकोन में बैठ के हवा ले उतरा भैया ई सब बातचीत हुए है एगो रास्ता के नाम है मुरई स्ट्राद भैया खाए वाला मुरई पूजतियात करे तो जान जइयो मुरई स्ट्राद के है ते बालकोन में अपन बैठ के खूब ठंडा ठंडा हवा ले उतरा और सोना के केती पहिर के भैया उतरे में दुई गो ना एगो दुई गो आदमी यंग ब्राउन फिश पे ओकर ब्राउन फिश पे रुकल है और ब्राउन फिश लेके रुकल है भैया और आई के बोले हैगा एगो बोले हैगा रेक्स ट्रेस ओकर बालकोन में घुसल है बिना एको वार्स क्यूएं के निकारी से पिस्टोल भैया और ये बयारदा मन के 18 क्रात के सोना के केती गटई में से लेके चल गए है और फॉर्म फॉर लेवन कॉप और हंगरवा रहा जैसे को बाघ के मूड़ी के तू जाने सबन हंगर बनाए रहे तो भगवा के मूड़ी के और फॉर फॉल्क तिरुकना ब्रॉम्फिस तो दोस्तों कोई जमाना में बहुतर्स बोले रहा बोले हम बोले तिकुआ में बोले यहाँ पर ऐसी डेंथ हो बे बड़कुआ हो जाबे तब बोले जितना आदमी के घर में लोहा लगल है बोले लोहा ना हुफ्त लगावे इतना फैलक हो जाए दसवा मेरे भगवान घरवा में आदमी के आजकल अपन बालकोन में लगावे के परे ले भैया कि बालकोन में लोहा लगावे के परे वन बालकोनवा में तो के डर है हम तो लगाए बाटी भैया बालकोन में लोहा और ओमा लोहा बन करके जैसे भैया जल में बैठियो तीन ताला लगाई के जलवा में बैठ के बहरे तकियो कि जल में से जैसे कोई बहरे ताके है तो ये बात है हमारा सूरीनाम की प्यारे प्यारे जनता की बालकोन में भी आदमी लोग के और चोरी हो जाए रोफ हो जाए ये बातचीत है हमारा सूरीनाम के हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता
तो हम जाए भैया, हम लोग के जो फोर्थ सेटर है और फोर्थ सेटर हैगा आसाम ब्लै के और वो है अश्विन अधीन। फोर्थ सेटर फाइनल नेशनल अश्विन अधीन बोले है दोनों दाग के और फरखादरिंग में बोले बपाल तेज फरदाखन फॉलीडक वास का बसेर ऑफ द ग्रंथ वैक्लक फरांतवोर्लक के बारे में। तो अधीन बोले अबे आप लोग के और बात हम बताएंगे कि क्या हुआ सूरीनाम में। आप लोग जानो है, आप लोग जानो है फिर पार्लियामेंटारी रहेगा सिद्रिक फान जमजोन है। हाँ तो टोनी अब भी आ गया है तो आपको हम स्वागत करते हैं टोनी इसरी को भी। तो टोनी बात ऐसे है कि सिद्रिक सैमसन है फिर यहाँ पे एक पार्लियामेंटारियर है और दोंदर दाख के भैया ओके सभन आसाम ब्लै में बड़ा जबर एनडीपी के औरत लो लपेटी से भाई जो लपटाई लपेटी से ओके इतना लपेटी से गया कि एनडीपी के औरत सब पार्लियामेंट छोड़ के बहरे चल गए है। बोले है कि सैमसन बोले तू रेडियो हलान के गो रेडियो है बोले तू वहाँ इंटरव्यू पे बोले बाटे कि औरत ना चाहे सर नाम में प्रेसिडेंट होए के बोले हम लोग वही मारे डेमोस्ट्रेट करे बोले तू चाहे सॉरी मांगे के वन बोले तू कैसे बोल सके कि औरत के नाम आखेगा सूरीनाम में प्रेसिडेंट होए के और बोले तो के ए बोले फ्रॉलक प्रेसिडेंट मुद हैवन अस क्रिटिक ऑफ हर बलाई तेजस वर्ड का कोपल अन इट फेट दैट से अन फ्रॉ इज दी फरमेंड स्प्राक स्कोटन मेरे नाम बिने फ्रॉलक एनडीपी पार्लियामेंटारियस सैमसन बोले हम थोरो सब औरत के बुल्ली बाटी सैमसन बोले है बोले हम बुल्ली बाटी कि सीमोन के कभी ना चाहिए प्रेसिडेंट हो एक बार हम लोग इतना फ्राक तल करीला का बोले हैगा पार्लियामेंट में सीमोन्स आईबे न करे है तो बोले ऐसा औरत प्रेसिडेंट लाइक ना है बोले ई बतिया हम बुल्ली है बोले हम थोरो बुल्ली एक को औरत के नाम आके प्रेसिडेंट हो के बोले हम लोग कितना फ्राक यहाँ स्टेल कर ली है कि जैसे स्कोतू को पॉलिसी ब्यूरो में से इतना क्विक क्लास हो गए है इतना स्कोतू लोन यहाँ रोतसोई करे है यहाँ चोरी हुए अब बोले प्रेसिडेंट के चाहे आए के फरकलार करे के अब बोले आईबे न करे मैं वे वही तो ओक में से अने tijdens de regering van NDP, je boters president, en trouwens het ook dezelfde probleem, die president, behoed komt die awe hega DNA mee. Toen je baat he, van Samson reageerde later met de schriftelijke verklaring waarin hij stelde dat zijn uitspraken uit het interview volledig uit de context zijn gehaald. Volgens hem was het nooit zijn bedoeling om vrouwen te discrimineren of hun geschiktheid voor de presidentschap in twijfel trekken. Hij benadrukte dat bestuurders moeten worden beoordeeld op hun functioneren, integriteit en bereidheid van de verantwoording af te leggen, ongeacht die hoe jij ouderd hoi, of jij marad hoi, of aanbloon jano bhaiya, joon samen pe verkiezing prioriteer haan, oe samen pe toni, bolat raan, NDP kademien, bole unowan kuli als president, jano hoi batia, बोले हम लोग कुली के नाम मांगे ला देसुआ के प्रेसिडेंट कभी ना हुई तो उस समय पे आदमी लोन मुना कोलत्रा की भी डिस्क्रिमिनेशन है और यहाँ सैमसन के समान पहले है और सब बोले ओके चाहेगा फौत अपन लेवे के लेकिन अब तक सैमसन बोले कुछ फौत न कर ली तो बोले कैसे भला हम अपन फौज जाबे माफी मांगे बोले दैट खात नीट खबर तो हम जाए तरी मारोको के ओर भैया। हाँ सैफनन दर तक दैसन ना एगो भैया सैफनन दर तक दैसन मिनी ख्रांतन फान ऐट खुता तरखकेर नान मारोको 17,000 मारोकान है जो गैला खिता में और है वो स्पांस जगह है स्पाइन में खरेंच फंड स्पांस एक्सक्लाव एक्सक्लीव
बोले वहां पर से हबड़ा होत रहा बोले हेगा ऊपर स्टाकन से अल मेर दन सेवन दर तक टाइसन मरकान से मिनी ख्रांतन मी ख्रांतन इन मिडस टेरिकेर ना मरोको बोले दैट मेल द स्पॉन्सर मिनिस्टर फॉर बेनेलांस साकन और बोले हेगा बोले 57 मेंशन बोले जोन बूढ़ के मर गए भी है एक बार स्पॉन्स क्रांत बोले है बोले हेगा स्टर्क तू नाम फन मी क्रांतर वेर इन खुटा अनोट सिचुएशन उत्खरूपन बोले क्रिटिक हेगा इटालिया फिनलैंड फ्रांकरेक डचलैंड के शरीपन अंदर मेर और ग्रेंस कंट्रोल तो हम बोले कुछ मरको के बारे में आप लोग को हम बता देते हैं दोस्तों। हाँ गर्मी के मौसम है तो पानी तो पीना चाहिए हमारे दोस्तों।

देखा देखी से श्रीलंका में जाई के फकांसी से तो बोली तो श्रीलंका के न्यूज भी हम तरी बतावल कर भैया हीरा। तो श्रीलंका में भैया हुआ मौत के सजा मिलल है श्रीलंका में, मौत के सजा मिलल और के मिलल है एगो फोरमालक पॉलिसी शेफ के मौत के समाचार मिलल है। इकाकल रहा 2019 में 2019 में एगो दौड़ल के एगो बम आंसला कल रहा देशवा में, हाँ जहाँ पे 2019 तक आदमी मर गया श्रीलंका में, अंदर भी 3 नीदरलैंडर भी वही में रहा जो मर गया रहा। एगो पॉलिसी शेफ ई चीज कर ले रहा और बोले एकर बारे में बोले होख बरूप गए ला सकवा होख बरूप गए ला 2020 तक में बोले आउट पॉलिसी शेफ ओकर नाम बा जया सुंदरा और बोले एंड तुन मालक मिनिस्टर फॉर डिमेंसी डिफेंसी हेमा सीरी फेर्नांडो नोक्सेन फ्रेगस्प्रोके मेंसे और ये 66 यारके पुलिसी शेफ जो रहा होक बरूप कर ले रहा होक खरेफ्टोफ में श्रीलंका ही सिंस 76 मां दो स्ट्राफ आउटफुर कर दी से। कितना आदमी बोले सुरिनाम में भी जाही करे के भैया जो ने सुरिनाम में दो स्ट्राफ है बाकी हुआ पे सब वर्किंग में ना लावे हैं बोले ना माखे और जो एगो दुगो जो हुआ जो आदमी लोग के मौत करे है रूफ करेगा एगो दुगो जो दो स्ट्राफ मिले भैया 10% फन द क्रिमिनलिटी फॉर लाख्ट वर्ड मैं या खुद इन सुरिनाम दून से नहीं मैं सिंस दाल से इन सुरिनाम का हैब खदान में से इस एटलान फील बीटर खवर्द क्वा दे क्रिमिनालिटेट तो हिया बतावे हैगा द स्ट्राफ वन वर्द दोरखास उमखसेट इन लीफस लांगे गफांगने स्ट्राफ 1976 में मर इंडियांसर इन लिख्टिके दिन्स बोले 4 तारिक अप्रैल के 2019 में आल गवार्स्कुर फोन मोगलेके सेल्फमोर्ड आंसला दोर इस्लामिसे टेरोरिस्टन द अथॉरिटीज सोलन टू हिन एक्शन हैवन गनोमन द आंसलागर वर्द प्लेस ऑफ 21 अप्रैल 2019 बोले हैगा जहां पे 3 गो केर की 3 गो होटल में 279 आदमी मरल रहा और 500 आदमी चोटाए रहा। तो ये बात है दोस्तों श्रीलंका रेख बांग श्रीलंका ही फॉर्मल का पुलिस शेफ तर दौड़ फोट ओर दिल ओमदात है इन 2019 दौड़ लक बम बम आंसलागन इन इट लैंड नीट ही वेटन टू फोरकोमन और बोले दारबे क्वामन 279 मेंशन ओम हेट लीवन बोले ना बचाई पा रहा ओकर बारे में बोले यहां पे दोस्तों ओम तो फोरकोमन और जो ऐसे भले पुलिस शेफ के बारे में है हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता हमारे नानी लोन हमारे प्यारे प्यारे भौजी लोन। तो अभी आप लोग को हम और आगे के समाचार यहाँ पे बताते चले हैं बातचीत भैया। जब देखो पहले भी रहा भैया सुरिनाम के जल भर गए दिलब बद्धू आ गया है। हाँ दिलब आपको भी हम स्वागत करते हैं राजा। सांतो बोमा ओफर लोथ हो गया भैया जहलिया से, अब लंटी के पैसा ना रहेगे सबन के खवावे के बुद्धू खवावे के भैया। अब हुआ पे अरेस्टांत बहुत ढेर हुई गए, अब लीफ्रांसीर के लांटी पैसा 6 हुई ना भरी, अब घास खाइयो। जहल के बान चीधे पॉलिसी ब्यूरो के और लीफ्रांसीर जो खाई ले यात्रा देवे उस सब बोले हम लोग 6 से पैसा ना पैली है। तो बोले जब पैसा ना पैली है मां बोले तो हम लोग जहलीवन के सोची ला बोले हम लोग कर्जा ले ले बोले हम लोग जाएला जहलीवन के खवावे भैया। और बोले हम लोग कर्जा ले ले हम लोग जाएला जहलीवन के खवावे और लंटी 6 से बोले हम लोग के पैसा ना भरी से हमारा सुरिनाम के लंटी काहे ना जहलीवे से तरकारी बोवाई के खाई पकवावे रे भैया। मोई से इस सब जा है और जाए के सबके रूफ कर चोरी कर अशांत बोमा में बैठ के जैसे होटल में बैठ के खाई के गोरे है और कई तरह जाए खाई बनाए बनाए देवे है। तो इस सब के

हम बताई है लांटी के चाही वही कम करतवन से खेती बाड़ी करवाओ तरकारी बोवाओ और वही तरकारी ले के चलो अपने तुलो बनाओ शांतो बोमा में और बनाए बनाए अपन मीड जहलीवन के खवाओ ऐसे चीज आ जा हमारे भले ही फंसरी नाम सवेल सवेल द लिक्स हैब में से मस हैब खेन खेल्ट तो गीता शिगुलाम भी आकर हमारा हमारा प्रोग्राम में जुड़ गया है तो वेल से सेल्फ इन द खफान इस वेल से द लिक्स ली फहान खान फोर्सेट में से इन दिट कानी द ऑन द नेम स्टेलन दस ए कॉस्टन फॉर फॉर कुड ट्रांसपोर्ट पर्सनल और बोलेगा महीने से लांटी पैसे ना भरी से तो एक बारे में मिनिस्टर फाइनेंशियल पॉलिसी ले गए तो बोले एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट बोलो हुवेल एन डील फॉर एन लीवरेंसिर फलोपक डोरगान एट फ्रंटवोलेकाइन गेफूल एन एट फ्रीज फॉर मस्कापले गेफोल्गन ग्रोइ द अनसेकरहेइ सोंडर स्नेले ओप्लोसिंग ड्रेक द फोर्सल फोर्सनिंग फॉर द अरेस्टांट अल्सनो फोलिडे फास्ट लोपन तो ये हमारा जहलीवन कहता भैया लोन जहल में हुई हो तो बोलियो ये जोनिया बोले तू मांगे हम जाए वहाँ खेती करी अरे मियाँ मोटाई ऐली बाटी खूब खाए ऐली बाटी जो रे हम अपन जहलीवा काट के जाए के चिनौन हिंदुस्तानियन के घरवन में फिर रोफ करी और रोफ करके पैसा जितना मांग बनाए बना ले पकड़ा जाबे फिर आबे यहाँ होटल में हम आइए हमें तो लोग कमाई के खावाओ ई जहलीवन बोले है और हमारा रखेरिंग श्री नाम के सदुन ही लमा निक्स एनमी में से ब्लेफ मादी में से फुदर से ब्लेफ मादी में से फुदर एंड दिस अब देखो सेग ना एक चीज के बाद जितना है 100,000 एसआरडी के बात है भैया 100,000 एसआरडी के बातचीत है जो लुटेरा जाए के हाँ लुटेरा जाए के एगो रास्ता के नाम बा खेराल स्ट्रासर नाम में 27 तारीख जुली के और बताई गई हैगा 27 जुली एंड 29 जुली पलाफोन तूर के घर के पलाफोन तूर के और जाए के घुस के एक और एगो द्रियन फेफ तक यारक आदमी घरवा में रहा और ओके का बोलेगा 100,000 पैसा चुरा ले इस और इद्रिय से इवन तक यार का नमिया घरवा में रहता और घरवा जो रहा ओकर भाई के रहा और बैतल लांत मेरा भैया ई भैया हुआ रहत रहा और ओकर एखनार जोन घर के रहा ओकर भाई बैतल लांत मेरा भैया कितना आदमी जो सूरीनाम देश में भैया सुंदर घर बनाए के छोड़ देवे हैं अपन सास के ने अपन माई के ने अपन भाई के बोले तू ही घर में रहो तो के ना हो तो कुछ रह के चिराग पानी भरिए हम आवे तो घरों में प्रेम से रहबे और कुछ पैसा भी छोड़ दे है लेकिन चोरन ओह जाए के मार दे भैया होंदत दैसन ऐसे दी मारी से एक दो इसी से ना मारी से भैया बहुत बड़का पैसा है जो नन्मी पसीना से पैसा कमा है ओके तो मालूम है कि कितना मेहनत से पैसा आवे है अब देखो कोर्स है सूरीनाम के और वो है एरो है ट्वेयम फिरतख एरो ट्वेयम फिरतख कोमा ट्वेंटख एसआरडी इन एरो तुरयो तपयो ट्वेयम फिरतख कोमा ट्वेंटख एसआरडी और जयो कीने एरो तभरियो द्रियन फिरतख द्री फिर तक एसआरडी के 1 euro भरियो उतरा पयो एगो एरो और अमेरिकन डाला है तक तक ऊपर से अधीन का बोले है बोले सूरीनाम में जितना दुकान है बोले सब पैसा तुरावे कीने है एरो डॉलर बोले चीजा बंद करे बोले सब चाहे संतराल बंश करे रे भाई जब आदमी हंदलार जब पैसा ना पाएगा डॉलर और एरो जैसे वो अपन सामान कीन सके देशवा चलाई सके अपन दुकान चलाई सके तो वो जरूर कीनी भैया ओके पैसवा नुकद खेगा तो यहाँ पे आप लोग को बताए द कोर्स तू फिर तक 20 तक खाते मेन्से तो हम बोली आप लोग को बताते ही रहेंगे ताजा ताजा ताजा ताजा खबर
हमारे जनता, हमारे प्यारे प्यारे जनता, यहां बताए गए हैं, यहां बताए गए हैं सिद्रक के बारे में आप लोग को तो बता चुके हैं, कुछ नया न्यूज आप लोग को हम बताएंगे। हमारे जनता मथुरा का ओर हम जाए ना, फिर यहाँ पेयर है आप लोग जानो, कमिश्नर फॉर पुलिस रहा, फिर मिनिस्टर फॉर डिफेंस ही हुई रहा, एंड टाइट फंड फिर यहाँ पे रखे ने, फिर यहाँ पर ब्रिंस वेग मथुरा का बोले हैं भैया, मथुरा फिन की एनडीपी नीट कॉन्सिक्वेंट इज, बोले जब एनडीपी बोले मेन हेले खसेन, बोले हमार हेले खसेन के बोले तू लोग क्रिमिनेला बांटे, बोले नीमा था दस्तान फिन खनुमन मथुरा फिन एनडीपी नीट कॉन्सिक्वेंस तुंद एनडीपी में एंड मेन हेले खसेन क्रिमिनलाइजेर्डे हीफ निमान स्थान पे इन खनोमन, बोले है बोले बाकी अब बोले वनेर की अब एनडीपी निस्वार प्रोटेस्टेर तेखन मीडिया आइस्प्राक जो पे यहाँ पे के पार्लियामेंटरी है चेदरिक फान सैमसन बोली सेगा कि एक औरत के प्रेसिडेंट न चाहिए होए, मतलब सिमोन के न चाहिए बहर होए के, तो एनडीपी के भैया चारों बगल से गरम गरम हवा लगे लगल है, हाँ जा न चाहिए हवा लगे के हूँ हवा लग गए भैया, औरत जितना एनडीपी के रहा सब निकर निकर बहरे चल गए प्रोटेस्ट। तब यहाँ पे काबले कृष्ण प्रसाद और काबले मथुरा बोले है जो समय पे हम रखेरिंग में रही एनडीपी के आदमी हम बोले रहा हम क्रिमिनल हमार हेला क्रिमिनल, तब बोले उस समय पे कोई अवस्थान नहीं ला, बोले अभी सबके गरम गरम हवा लगे तू जाने हिंदुस्तानी में कहीं और कुछ लग जा मैं हम में कौन काम है, बोले के उस सब मीठा मीठा बोलिया तू लो तो समझदार है हम कहा बोले मांगिला वन ईयर द एनडीपी सेक्स शुल्क हार द वार्डन, तब बोले दान खा एक शखन, बोले कि उस सब इरलकना है, बोले 2015 में बोले हैगा मेन एंट्री द डेट इन द पॉलिटिक, और बोले जस्ट बोले जे एनडीपी बोले हमें बोले रहा हम बहुत बड़का क्रिमिनल बाटी, बोले हमार हेल हसन बोले हमार आदमी हमार बेटवा बोले सब क्रिमिनल है, बोले एकर बारे बोले फॉर द रेक्टर ले गली बाटी, और बोले रसी दुखी के ले गली बाटी रेक्टर ही तुन फोनस आइज कस्टेल फॉर हिर पार्लियामेंटरी रसी दुखी एनडीपीर के तुन ही niemand van de NDP enige standpunt daarin genomen. Het was onder huidige president die toen voorzitter was van het parlement. Men is nooit kritisch geweest naar de eigen collega door te zeggen dat ze dat niet hadden moeten zeggen. Wanneer het iemand van hen is, dan zie je dat het met mantel der liefde wordt bedekt en er geen consequent bedrag is erbij. Mathura bole hega. Aur tulun jano bhaiya NDP mein hamara निकेरी के सेठ रहा उस समय पे रसीद दुखी, अब रसीद दुखी एनडीपी के पार्लियामेंट में ना बैठे तो बोले ये आदमी अपन घर द्वार ना चलाई पाई पैसा ऐत ना आई पाई, तो बोले आई हमसे पूछे कैसे ऐत आई पाई, तो पहले भैया लूटो खाओ और दोन हो जाए तो बोली कहाँ से अब हम लाई। तो ये बात है हमारा सूरीनाम के यारो, हमारे प्यारे प्यारे जनता एक लाश एक लाइक मिलल है, हाँ वो बात बता दी भैया एगो लाइक मिलल सूरीनाम में, और वो लाइक वासन में से इन ऑन बिंडिंग आन खतरोफन ये बात हुए एगो फैमिली लेट बोले लीड ओवर लीड ने, और बोले हैगा फॉर आल्स नॉक सेन हिन अनवेशिंग की कोई ओके मारी से, और एक बारे में अंदरसुक हुए कैसे है फ्लोरा के सिपाही एक बारे में खोजे है, तो एगो घर में एगो लाइक मिलल है दोस्तों लेखा फॉर अन फेयर खान द स्टार फॉर ऑन बिल्डिंग अन क्रॉफर इन एन वोनिंग इन एन अनबाउ, अबे घरवा बनत रहा जिस कंप्लीट घरवा ना रहा क्लार भैला मैं मालूम ना है वो घरवा कैसे रहा और कैसे ना रहा। हमारे जनता हम सोचेला तू लोग के एगो हम स्पांगाना सुना दे, और ये है नाचे नाचे, हाँ शारदा तरी नाच लियो तू तरी नाच लियो गनवा पे स्पंग स्पंग गाना तू जाने हरदम चलाइला तो
पलंग सगवन के भैया केसरी जी के है।

बोले टूट जाई राजा दी, बोले पलंगिया पे का होए भैया। अच्छा टूट जाई तो देखल जाई, दूसर बेदी कि नाई भैया, दूसर बेदी कि नाई टूट जाई तो ये बात है। भोजपुरी सॉन्ग के बाद में हम जानते हैं हमारी जनता, हम जानते हैं और वो कहाँ है, हम जानते हैं भैया सूरीनाम में तो जानो चारों बगल जाए के आदमी पेन कर सके। हाँ सोशल मीडिया पे रखा हुआ आदमी जाए खेल और मतमाद ना है, एक्वा में जाए है ना है, एक्वा में ना है आदमी बोले हम दौड़त दौड़त कानी के तरह तेल जाए जाए भाई खेल और तमाद में पैसा ना है तो बिगड़ल है तो ई है फलान ढकान काम ना करे पैसा ना देवे। तो यहाँ पे बताए गए है कि ATM मशीन से सूरीनाम देश में हमारी जनता आप लोग को पता है, तो आप लोग को तो पता है सूरीनाम में ATM मशीन से गा और बताए गए है कंस्यूमेंटन कॉन्फ्रेंटियर वार्डन ATM मशीन से फाक लीक ऑफ बेटन वर्कर में पैसे में ना रहे और ये पैसा ना रहे भैया तो टूटल रहे तो जानो है तो एक बारे में एगो बैंक कंसल्टेंट है गा और है का ट्रेंस कॉनेस गोनेस बोली से गा दैट हैड फील हेल कॉस ओम ATM नेटवर्क द अंडर हाउडन मशीनिया अंडर हाउड करे के बोले बहुत ढेर पैसा हम लोग के लगे है, बोले एकर बारे में बोले बहुत ढेर इन्वेस्टेर करे पड़ेगा, बोले टेक्नोलॉजी ओम बेट लाइफ में द ट्रेंड एंड ऑनट्विकलिंग ATM बोले है नेटवर्क सूरीनाम के बोले है बखरेबदार व्यवहार फॉर हुकिंग नो साकलक वारन तो उसे मांगेगा कॉस्ट फॉर हुक करे भाई opzichte van de internationale markt de kosten redelijk laag tegelijkertijd weet hij de samenleving to up to jayyo paisa aisa pain karo bhaiya to auro jada paisa lagi maan bolo sabke kosta bahut jabar hai to lo jano to ap oi mare ja budhiya paranian hua pe paisa ja paave hai aao fe aave hai to ladkan ke bole hai beta je ye sab paiswa hamar nikar laiye कारण कि अब बुढ़ियन पुरानिये थोड़ो बेर बेर जाए ऑटोमैट खोजे देशवा भर में एगो में जाए टैक्सी भर के लड़को बोली बेटा एकवा जा तो उ सब ऋषि को ना मांगे लेवे तो एक दाय में सब आओ फी के पैसा निकाल के जे घर में धरे है तो अब उधर भैया बोले जहाँ शुक्रु है वहाँ चूटी है और जहाँ पैसा है वहाँ चोर है तो बूढ़ीवन के जाए जाए वही रूफ करे हैगा चोरवन भाई ओमदात हम लोग के ऊपर है अपन ऑनट्विकलिंग फॉर द फेल खेत में इन्वेस्टियर न करे है। तो सुनील दीप गजरी भी आ गया है आपको हम स्वागत करते हैं। अगर जो ऑफर है जितना ऑटोमात सब में पैसा धल्ले रहत हर एक भीड़ में कुछ न कुछ मुखला खैद कर ले रहे तो आदमी ना रहत के एक दाई में जाए के सब पैसा निकाल के घर में धरत वन ओके जब ब्रेड कीने कुछ कीने कहेगा तो बेचारा कहाँ जाएगा पैसा लेवे तो सब पैसों निकाल के घर में धरे भैया तो कोई बेदी के नीचे लुको आवे कोई हियाँ लुको आवे कोई हुआ लुको आवे है तब चोर जाए के लपेट देवे भाई। दिस इज een van de grootste probleem in het land die niet investeert wordt in de ICT, in de ontwikkeling, de technologie van ons land. Mensen, bijna heel veel mensen hebben hun bankpas, dat ze daarmee ook kunnen betalen. Maar heel veel winkels, in Suriname, hoe mogelijkheid na hè? Hier toch bij hem de hele Albert Heijn mee, dat 10 donnieke breed hem scan kerke lela. Ik heb bijna nooit geld. Er zijn heel veel mensen, ik werk hier mensen, op mijn werk, waar ik werk zelf, daar komen mensen hele dag geld betalen. Ik zit in het betalingsverkeer ergens mensen. Bij mij kan je geen contant geld. Als John Dean hem ook internet na, hij je kuch hoige he. Dat zijn mensen in een probleem, want ze hebben geen geld. Of naki. छोटा मोटा आदमी बड़का बड़का आदमी लो भैया उस सब टेलीफोन लेके खाली चले हैं और टेलीफोन से स्कैन करके दिन भर उसे अपन बताल फकीर करे हैं अपन पास करे हैं आलस खाफिया ऑनलाइन में से। तो वो रमिया के जो तू चोरी करियो पोर्टो में नहीं या कुछ चोरी करियो तब तो के रोवे के परिवार ओमा खाली अल्बर्ट हैं एक्शन के बॉन घुसेर घुसेर धरल ले जैसे हमार जो चोरी करियो तो के रोवे के परि बोली कौन चीज उठा ले लिए वहाँ जैसे नोइ हेल्ड रहे मेन से दस सोट ऑंटविकलिंग मुत इन सूरीनाम खबर
dat zo'n ontwikkeling. Je moet alleen met je pas lopen en meer niet. Chori kamti hui admi jo sau sau hajar paisa ghar mein dhare ba. Us paisa to ke na hoof dhare ke. Alles moet naar de bank verkeer kan. Oma bank washer vidya na dee pai janta ke. Overheid to garantie na dee pai dat je 24 uur kan geld krijgen. Wanneer je nodig hebt, gaat deze probleem nooit opgelost worden. Hai na bhaiya sunil der gajri. Zo is het toch. Dus ons land is nog hoeveel jaren achter. Ik heb het over Suriname mensen. Abham jij bij jou Rusland, Polen. Ke oorha. Bole Polen heeft Russische ambassadeur ontboden. Polen. Russische ambassadeur. Ha. Oké, bole to loud ja. To loud ja. Appendees bole hem to kenamangela. Om uitleg te geven om de neergestorte raket. In de nacht van woensdag, donderdag. Ik hoor raket geralha. Premier Donald Tusk. Jonma na Trump, Donald Tusk Jonma, bole hij zei al snel vermoeden, ki Rusland kego raket bole hamar des me giral he, bole ekar bare me ambassadek bole li bati puche ke, bole er gaat om de Russische KH-101 raket giral ha, ekar bare me donderdag ke radio opse me bole kruis raket giral ha, of bole gevaarlijke om een kernkopper ha, Tusk zei al meteen, ki Polen bole ki, het doelwit was van een aanval, bole de crash van plaats tijdens een nacht in de zware Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Bole Johnson met Rusland, bole een Oekraïne koeper, bole kabel kruisraket, maar dit is mijn girl he. Bole ongeveer 90 kilometer van de grens van Oekraïne en raakte niemand gewoon door de gevonden brokstukken kon worden wel vastgesteld. Atulonjano bhaiya, Polen is EU. Polen is NAVO. Als Rusland één van de NAVO-landen gaan aanvallen, gaat de hele NAVO erop, mensen. En dan moet Rusland voorzichtig zijn. Je kan alles doen, maar ga geen NAVO-land aanvallen. Want dan gaat de hele NAVO hem beschermen. En als dat gebeurt, dan wordt het niet een kleine oorlog, maar een mega grote oorlog. Tessa naam ke kokoa teri se kamti hai bhaiya sab karaka mein jarai se bhaiya jatra kokaino ino mile le ma manum na kokaino jarai se ke puiri jarai se ek pisan jarai se bhaiya social media pe bahut cheez hue hai to Sangeeta Mahesh bhi aa gaya hai aur wo hai almera shehar se aapko hum swagat karte hai Sangeeta ji to firo tweet tak yaar ke ego admi bhaiya bataye gaye hai ga verblijf pas raha ओके मंगलवार के नीदरलैंड में तिलबुर्ग में मिलले पकड़ान है रोटरडम के सिपाही पकड़ी से तिलबुर्ग में जाए के को 44 यार का मान के जे के फास्ट वो जगह ना रहा एड्रेस एड्रेस ना रहा बोले हैगा बतरोकन है इन बेड फॉर बरेडिंग फन डू गो ऑन फूरिंग बाय ला क्रिमिनल सर्किट में द अरेस्टेशन फन प्लेस इन द कार ऑफ अ ग्रोथ अनुसूक ना द इंटरनेशनल कोकेन हैंडल जो साउथ अमेरिका में भईले हम सा नाम भी साउथ अमेरिका में आप लोग तो जानो है शुक्रवार के रेक्टर कमिसारस इरेमिया के दुई हफ्ता के दुई वीक इन द सेल ब्लेव सेट द ओएम बोले चार गो अनमिया में पकड़ान है 26 तारीख अगस्त के एकर बारे में उपमार सिटिंग है और बताए गए हैगा इन ऑब्द्राग फ्रॉम दुई गो हॉलैंड नीदरलैंड एक 42 47 यार ओल्ड बोले फेब्रुवारी में बोले इन कोलंबिया से इन गारास्टेर कोलंबिया में पकड़ान है फॉर द ड्रग्स हैंडल In mei pakte de politie in Colombia nog een Nederlander op. Dus Hamara Hollander, want een bhaiya paaige cocaïne ke maja. To is heb ke jai ke pakli sega. Colombia me hamare pyare pyare sunne walo hamare janta. Aap lo ne jano bhaiya. Nya bataye gaye hai ga. Twee to dri tero rism verdachten. Mangarwar ke budhwar ke. Nya bataye gaye hai. Nederland. में फरोर्डील भाईले फॉर टेररिज्म अबले दर्द फरदाख्त जोन हैगा वीकर फरदेंगन फॉर टेररिज्म अबले जोनी इसे का कले रहा तो बांचीती होएगा तीनों टेररिस्ट फरदाख्तन इसे दुई हफ्ता इसके के पकड़ के बन कैसे रोटरडम में और दर्द वाला के
सुक के लिए के कमिसारेस एगो 16 बरिश के और एगो 19 बरिश के लोंडा है। रात के हिसाब इनफाल के से रोटरडम में Eindhoven में अलगमार में जाए कि सबके पकड़ी से बोले बोले इन फालर वर्दन geen wapens aangetroffen, wel zijn enkele gegevens dragen in beslag genomen. Er is concreet doelwit of moment voor aanslag in beeld. तो ये बात नीदरलैंड के मानचित है हमारे जनता जो आपको बताना हमारा काम है बताना काम है। अब देखो भैया आदमी एक मिला ओ तो लेकर रिस्तक से जाए सुरीनाम के बातचीत है भैया लतूर वेख के बातचीत है। अब देखे एक मिला मांगे हबड़ा होए से बड़ा पात पे तो अब यो तो हुआ ओके रोकी जो ने अनमिया हबड़ा हो जाए। ये बात हुए है क्रॉसिंग लतूर के और फ्रैंकलिन वेख के तो ओतुआ रैम करी सेगा जो ने अदमिया हबड़ा हो जाए मा ओकर पछुआ एगो ओतो रहा हमें जना ओके हास रहा तो वो तो हुआ नगे लेकर पीछे अगोरे उ इनहाल करके जाए के फूत कांगवा का मारी से भैया मुँह फूत खांगर के मार के अपरे पेल भागल है। थोड़ा देर बाद फिर लौट के आयल है ब्लैक बेल एगो स्कोतुरा 25 बरिस के भाई स्कोतुरा ओके सिपाही पकड़ के बंद करी से बोले फूत कांगर्स के तू फरेड कर ले बाटे वाना दा खेन ता एके अब्स कमिसारस में गए ले फोर द रेक्टर गए ले तो कमिसारस एक फ्राई कर दी सेगा वो फेस्टक करे से उपमार मिनिस्टर। अब बोलिए जॉनी कैसे हो से कई चीज हुआ तो एक बारे में बताई गई है बोले बे आन कॉम्स ट्रॉफन वेस्ट दिनार है स्लाख्त ऑफर आन दैट खेन टेकन फॉर लीवर मीन फॉर दोन मर गए रहा बोले अन इस के स्काकल बताई इसकी मर गए है। और बोले आई थिंक ऑन द सू केस का ब्लेकन द ऑटोबस टू द कोर फॉर आ रेडिंग ओवर द लातूर वेग रेड हे क्वम फॉर द रिस्टिंग फॉर मार्टिन लिटर कुशवेग मार्टिन लुथर किंगवेग से रिक्टिंग इंदिरा गांधी वेग जाता रहा दोस्तों। और बताया गया द पुलिस ब्लिक नीत दारू पी ले रहा बकन ऑफ आंध्र बदवेलम दे मिदलन ओकर रेप वेस वेर अहांग दैन ऑंडरसुक इन गफोर्डर है। लिखा फन स्लाख्टोफर इस नतुले इन बरसलाख कनूमा अब एक बारे में ऑंडरसुक होगा का हुई का ना हुई तो ऐसे बेचारा मर गए भैया अरे दिंग से। तो ये बात है हमारी जनता प्यारे प्यारे जनता बको भैया बारा चकल्लस भाई जो ही रखे रिंग में आवे भैया मिनिस्टर फॉर मेनी लांस बेनी लांस साके में बोले कम करतन लांटी लोन के कितना आदमी है अंतनार जो दुबल सलारस पावे है भाई। तो मिनिस्टर ने आउट फोर्स इतर फॉर असेंबली मनीष वा भी बोले हैगा बोले फिर तीन होंदत आख्तम फिर तक आदमी के बोले सलारस हमने उन ब्लॉक हेयर कर दे ली बाटी हाँ बिशक मिनिस्टर बोले है बोले हैगा फंड 2004 फे ऑन फिन 12 अंतनार जो सब ना पावे है बोले फन 12 फन 53 तक आदमी के बोले हम लोग ब्लॉकेर कर देली तो काहे ना 800 हुआ के और करे है बतावे है तो नी टू हेवन स्लैक नेगन देर तक आदमी बोले हम लोग के उतरा ढेर में से अनमेल द करी से बोले टोटल ऊपर है इस ब्रीद अफकल ऊपर मानदा का 1400 एंड 8 फेसेस लालस बोले ब्लॉकेर कर ली बाटी बोले को त्रायक तरह फन सलारस ब्लॉकिंग के बारे में बोले हो द ट्विन सिवे सलारस रसन ओको ब्लॉकेट बाकी भैया ब्लॉकेट तो तू कल्ले है बाकी अरमियन के जो देवबत सलारस पावे है ओके तरीक वरखंड क्रक्स ना भरवइए जोन ओम तरह पैसा पाई से भैया यहां बतावे करे कि हम लोग के रखेरे 200 मिलियन एसआरडी पर यार ओकर पैसा पानी में चल जाता रहा रखेरिंग की। और बताई गई हैगा बोले हैगा द वेस मान फॉर द आन दैट इट बले नीच गस्टूल इज ऑफ पॉपुलिज्म वार दोन इंफॉर्मेशन पास द सामलेविंग वर्ड गदील वनेर दैट नोडिग इज। और बोले ये कान इन द डार ब्लॉकेड मार दन फर्लिश ये जो रक्षा ये मुद द प्रोसीजर इन अख नेमन एंड दैट डून वे ऑल दिस मिनिस्टर फन बिशा अरु है मनीरस फन बी आउट फोर्सिटर फॉन उनसे डीएनआ के बारे में हमारी जनता भैया जो नदमी पयाल बेस पे बैठे हैं पटवा वानिका हम लोग बोली ला अब बोले इंदिरा गांधी वेख
और परफॉर्म वाली कहा के बोले है तू लोग जाने पे यार बेसुन भैया बैसे करी जहाँ चले वो पर से हाल करे है नानी बड़ी चकल से एक बारे में ओमदार फीलर है परफॉर्म वाली का हरदम और बेशफेर मांगे पैसा कमाए भैया तो बेशफेर का करे फील वो न मांगे रहे तो बगलिया में फिचपात है भैया फिचपतवा पर से चलाए गए नहा करे हैं रुक लो उसे रे खतरा खरफान विश्व फिर्स के बारे में है तो एक बारे में मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट बोले हैगा बोले बारात से ऊपर फेरदर मात्रेगल ऑफ द रुक लो उसे रे खतरा खन फॉर विश्व फिर अफ द स्ट्राफन अब तुझे ये स्ट्राफ करे ई चीज हुआ तो बड़ी दिन से हुए कैसे बोले है हीराम बोले आज द कूफर ड्रंकन इज देम एंड द पूर एंड दैट इज ऑन सलान सुरीनाम लाती के सब चीजों करे अरे जब तू प्रॉब्लम कंसंट्रेट पहले बाटे तब तो के चाहे ओपाप देखो भैया दुई वो कफरी के आंखी यहाँ बन कर ले बा फ्रीड ब्यूरोक्रेसी के बांचित हुए हमारे जनता बुधवार के और नईस एगो है और एगो हैगा 29 बरिस के दुई गो लंडन भैया फ्रीड ब्यूरोक्रेसी आमे ये सब घुसल है और जाएगा दिवताल करी सेगा ओवर खंडरा खान रिसर्च और बतावे हैगा अंडर पुलिस चीफ आंखेकेवन की सब लातर मोमेंट पे जबर अन बिसोंदर ओवर द साग बकेंसलर वार्डन खमाक तब बताएगा काम भइले और काना भइले लातर के बारे में सब हम बताएगा हमारे जनता हम तो लोग के बोलीला हमारे तय तो आप फिर हो ही गए हैं हाँ तो जय तय तो आ हो ही गए हैं तो हम में चाही गाना का बोले हैगा रोकी के तो

हमारी जनता, हमारा प्रोग्राम यहां से खत्म आने को हो रहा है और आप लोग को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारा प्रोग्राम सुनने को। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और हमारा समाचार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हर शुक्रवार को 6 बजे हम शुरू करते हैं, मंगलवार को शाम को 6 बजे, सोमवार के दिन में 1 बजे हम हैर हाल करते हैं। बाय बाय, स्वाय स्वाय।

मई तो लाई है कौची मजेदार लाए ही और उस्तादो के उस्ताद हरी शिवालय का गीत आपको हम सुनाए है दोस्तों। तो कुछ आज लोकल सॉन्ग आपको हम सुनाएंगे। तो हम चलते हैं राम प्रसाद राम खेलावन के ओर, वो क्या गाते हैं।

कठिनी भिनी थोरा। तो ये गीत हम आप लोग को सुना दिए हैं हमारे दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं और पातर मोरे लग्या और रॉबी गोगार इस गीत को गाए हैं। चलो सुना जाए।

और पांती मोरा ले जान सुगनवा तू कुछ लोकल सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे हमारे यारो। तो कुछ बैठक गाना और लोकल सॉन्ग अपने पुराने पुराने कलाकार सुरीनाम के हम याद करते हैं और उसमें से एक कलाकार थी श्रीमती औधराजी घिसई डूबे उस्ताद हरीश बाल के साथ मेरे साथ ही साथ श्री राम प्रसाद राम खेलावन और मेरे ख्याल से ढोल बजाए थे रकीब ने। दोस्तों आओ सुना जाए।

औरो सरजू में करो स्नान श्रीमती औधराजी घिसई दूबे उस्ताद हरीश बालक साथे साथ श्री राम प्रशांत राम खेलावन रकीब जी भी उसमें उस्ताद को उस्ताद है दोस्तों। तो हम चलते हैं उस्ताद देवा की ओर। देवी दीन घोरई इसका असली नाम है और जिसे लोग देवा के जान से जानते हैं। बहुत मशहूर थे अपने जमाना में, अभी तक उसका गीत बहुत लोग पसंद करते हैं। तो आओ चला जाए उस्ताद को उस्ताद देवा क्यों रे।

और कन्हैया कन्हैया पुकारा करे देवी दीन घुराई, जिसे लोग डेबा के नाम से जानते दोस्तों। और इसे पुराने उस्तादों का गीत आप लोग को हम आज सुनाएंगे, उसके बाद हम चलते हैं और बैठक गाना। और उस्ताद वो है जगदीश, जगदीश है दोस्तों। और ये कौन जगदीश है जो गाए है चिरैया बिन बोले, चिरैया बिन बोले, और ये जगदीश गाए है दोस्तों। तो जगदीश का ये सॉन्ग आओ सुना जाए।

और चिड़ैया बने बोले मैं ना जाऊंगी, भैया बोले हम ना जाऊंगी। तो उसके बाद हम चलते ही एक गीत है, ये गीत बहुत मशहूर थे, सूरीनाम देश में बहुत मशहूर गीत थे, और वो है शुकी अक्कल का दोस्तों। और हम खुद ही इस गीत को बहुत दिन हो चुका है नहीं सुना है, और आज रेडियो फाहून के माध्यम से हम आपको सुनाने चाहते हैं, और वो है सुकी अक्कल का ये जोंग है।

Als er maar een goeie is, dan gaat het om wie dan ook mensen. Chahe jo bhi mile, lekin acha hona chahiye. To ye baat hai, suki kal ka zong dosto, koi zamana mein aur wo ani bodha. शायद पुराने लोग की तो पता होगा, हमारा यंगर को शायद मालूम बहुत कम होगा, लेकिन आनी बोधा भी अपने जमाने में अपने समय पे बहुत पॉपुलर थे। भैया कौन ऐसन जगह पे आनी बोधा का गीत नहीं होते थे, तो आप लोग को हम चलते हैं एक गीत की ओर। फन आनी बोधा का ये सॉन्ग है।

ये कुछ पुराने क्लासिक ओल्ड यानी कि उस्तादों के जो उस समय पे कोई समय पे ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे दोस्तों। उसके बाद एक गीत को हमारा जो है भिखारी जी भी गाए थे, और वो समय पे कौन लोग है जो इस गाने पे नहीं नाचे थे या गुनगुनाए थे। तो हम चलते हैं उस्तादों के उस्ताद, और वो है भिखारी। भिखारी सॉन्ग को गए थे, आओ सुना जाए कौन से सॉन्ग। आज जैसे शुरू होगा आपको तो पता चल जाएगा।

भी छेद लेते हैं दोस्तों, स्कॉर्पियन भी लोग कहते हैं। और जो स्कॉर्पियन जब छेद लेंगे भैया, तब तो उसको दवा दारू कुछ और है। और जब बरैया छेदी उस तो फिक्स चलेगा, और फिक्स के बाद में स्लिंगोली चलेगा। तो दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं और वो भी हरिदत्त जयराम की ओर। और ये ना है हबड़ा कटावे वाला, ये कुछ और है दोस्तों, और सुना जाए।

और दोस्तों छोड़ दे पीना शराब के बातचीत है, हम एक गीत और जाते हैं सनातन की ओर।

बालमुआ के बालम और बालमुआ के बालम के बाद हम क्या लाते हैं दोस्तों, भोजपुरी सॉन्ग के मूड में आज हम हो गया है फिर से एक और हो जाए शिवानी सिंह का।

और पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह का भोजपुरी सॉन्ग है। अब लोग को हम कुछ मिक्स मक्स चलाएंगे, कुछ भोजपुरी कुछ बॉलीवुड सॉन्ग। और यहाँ पे नील कमल सिंह और क्या सुनाते हैं लड़की, ये लड़की क्या है दोस्तों, लड़की दीवानी।

दीवानी नीलकमल जिंगा ये सॉन्ग है। तो अगला गीत क्या है दोस्तों, पवन सिंह अस्यल्पा राज का ये सॉन्ग है।

बोले पहले सॉरी तो बोल। तो सॉरी कब बोलेंगे दोस्तों? जब सॉरी के कुछ काम, तो सॉरी बोलना कब? जब आप कुछ कसूर करेगा।

और बुधराम होलास से दोस्तों, और थार गोरी और क्या क्या गाए हैं, ये एक चटनी जोंग है दोस्तों, चटनी जोंग। तो आज कुछ चटनी हम आप लोग को सुनाएंगे, आओ एक और सुना जाए, हरि सो सुखदियो के ड्रिंकिंग वाइड बाड़ और एक सो का चटनी है दोस्तों।

0: और दिल देना ही पयाए और दिल लेना ही पयेगाए। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए ये कौन सा गीत है हमारे सुनने वालों। सुपर सॉन्ग फन नहीं खनते रोमांटिक सॉन्ग
1: सर की जो सर से वो धी
0: द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू मेरी महबूबा सॉन्ग दीदे।

और तेरी चुनरिया दिल ले गई 90 का ये यानी कि हिट बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग जो आप लोग को हम सुनाते हैं। तो अगला गीत की ओर हम जाते हैं, रोमांटिक फुल सॉन्ग है और तेरी चुनरिया के बांध में हम जाते हैं, देखा तुझे तो क्या होता है, क्या होता है दिल में कुछ मजलता है।

तुझे तो मिट ना जाए। और दोस्तों और अगला नई खंती तक का रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग, यहां से जॉनी नंबर वन का प्रोग्राम हम चलाते हैं।

और क्या है हमारे यारो लवर्स के लिए बॉलीवुड सॉन्ग्स फॉर नीखंतक रोमांटिक सॉन्ग है जो आप लोग को लिए हम चलाते हैं राजा हिंदुस्तानी।

जी कर देखता रहूं, इतना प्यारा तुझे कौन बनाया है? रब ने बनाया है हमारे यारो। ये जो रोमांटिक सॉन्ग है बॉलीवुड नेक्स्ट का, आप सुनिए।

और जाती हूँ मैं और ढड़के जिया, तो ये सब बात तो होता ही रहते हैं। तो मोफी का नाम है कोबरा गिल, मैथी मुकेश का ये सॉन्ग है।

और नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है? है और ये गीत जो है, मैं हरदम किसी को और वो ढूंढता है, फिल्म के नाम ही रास्ता, रास्ते का पत्थर, जिसमें अमिताभ बच्चन ने

और मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ और किसी को खोजता हूँ। दोस्तों एक रोमांटिक सॉन्ग के ओर है।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

यहाँ से हमारा आज का प्रोग्राम जो है कुछ मन्ना दी और किशोर जी का गीत हम आप लोग को सुनाएंगे कि कहते हैं मानता है नहीं कमबख्त दिल उसी चाहने से, मानता ही नहीं कमबख्त दिल, मानता ही नहीं कमबख्त दिल उसी चाहने से, मैं हाथ जोड़ता हूँ तो ये गले पड़ जाती है। हमारे यारो तो हम चलते हैं परमाश्री मनादी की ओर और चुनरी में दाग कब लगते हैं जब अगर आप कुछ करते हैं तो लगते हैं ना।

और हमारी यारो लगा चुनरी में, और चुनरी में दाग कब लगते हैं आपको तो पता होना चाहिए, और दिल ही तो है। राज कपूर मना दे, और इसमें मना दे का फिल्म का नाम है दिल है तो है। निखत द्रिय शस्त्र का ये फिल्म है। तो दोस्तों हम और आगे को चलते हैं, और मना दे के बांध पे हम चलते हैं किशोर दादा के ओर, और कहते हैं ना पूछ दिल के हकीकत मगर ये कहता है, ना पूछ दिल के हकीकत मगर ये कहता है, वो भी बेकरार रहे जिसने बेकरार किया है। तो हम चलते हैं, मूवी का नाम है अंदाज, 1971 का ये फिल्म है जिसमें माला सिन्हा राजेश खन्ना ने काम किया है, और किशोर दादा का ये सॉन्ग है।

और जिंदगी एक सफर है, और जिंदगी एक सफर क्यों होता है दोस्तों, जब सुहाना होता है। मूवी का नाम है अंदाज 1971 का ये, और ये फिल्म है। तो हम और आगे को चलते हैं हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। तो और क्या है, जैसे कहा है किशोर के बाद में हम चलते हैं और परमाश्री मनाडेई के ओर की कहते हैं, इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, इस दिल के दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, बड़ी मुश्किल से इसे खुश नसीब होती है, किसी के पास आने पर खुशी हो न हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है। तो हम जाते हैं कि अगर हमारे गीतों में हमारे टूटिया हो तो हमें क्षमा करना दोस्तों, लेकिन हम जाते हैं प्यार करने वाले को लिए कि जोहरा क्या कहते हैं।

0: साहब या तुम भी तकल्लुफ करने लगे, बड़े अफसोस की बात।
1: खाना वाना तो होता ही रहेगा, महफिल कब गर्म होगा?
2: महफिल भी जमेगी तो जल्दी रख।
0: दादाजी आज तो आपको गाना सुनाना पड़ेगा।
2: अरे परमवीर यार, अब बुढ़े हो गए, गाना वाना पुरानी बात।
1: और तुम बुढ़ा हो गया, हम तो नहीं हुआ। सुनाओ, नखरे मत करो। ओ भाभी जान।
3: जी भाईजान।
1: हो तुम्हारा शोहर बुढ़ा हो गया था, हम इसको जवान करता है।
2: अच्छा, लक्ष्मी सामने है तो मैं जवानों का जवान।
0: लो सुनो,

मेरी जोहरा जबी फिल्म वक्त का ये गीत है। तो कहते हैं अब जिसके ये मैं आई वो ही पाई रोशनी, अब जिसके ये मैं आई वो ही पाई रोशनी, हमने तो दिल जला कर सारे आम रख दिया है। तो हम चलते हैं रात कली में क्या आते हैं दोस्तों, जो सपने आते हैं तो क्या आते हैं, रात कली में किशोर दादा ने आते हैं।

0: रात कली और ख्वाब आई, उसके बाद हम चलते हैं मनदई की ओर।
1: करा लो, अरे घर की खेती

और मुस्लिम को तस्लीम अर्ज है, और हमारे हिंदू को प्रणाम। दोस्तों कितनी खूबी सी हमारी और यानी परमा श्रीमन्नादी ने और इस गीत को आपको सुनाई है यारो। उसके बाद हम चलते हैं किशोर दादा की ओर। अब जिसके ये मैं आई वही पाई रोशनी, अब जिसके लिए मैं आई वही पाई रोशनी, हमने तो दिल जला कर ए आम रख दिया है। तो किशोर जी क्या कहते हैं?

बड़ी मुश्किल सी ये दिल मेरा दिल नी ठड़प की। और किशोर दाना ने इस गीत को सुनाए हैं तो कहती है, बड़ी मुश्किल से इसी खुशी नसीब होती है, बड़ी मुश्किल से इसे खुशी नसीब होती है।

और दोस्तों आपको पता चले और मनाडे के बाद हम चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर आगे। कहते हैं अब जिसके ये मैं आई वही पाई रोशनी, जिसके लिए मैं आई वही पाई रोशनी, हमने तो दिल जला कर सारे आम रख दिया है। तो हम चलते हैं किशोर दादा के ओर, एक प्यार भरी सॉन्ग आपको हम यहाँ से सुनाते हैं।

और दोस्तों इसके बाद हम जाते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर आगे, और यहाँ पे मनाली क्या कहते हैं।

तुमने अपनी आवाज वाले को पाल तुम्हारे खोए हुए स्वर्ग में वापस मिल गई। हाँ आज देवी माँ से कुछ और भी मांग लेती। गाओ गोपाल गाओ, इस नौजीवन की बसंत बहार गाओ।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और हमारा प्रोग्राम चलाना है, हमारा काम यही है, हमारा मोहब्बत भरी पैगाम। यहां से कुछ पुराने नगमे, कुछ नए गाना से आज हम आप लोग को और सुनाएंगे। हम चलते तुरंत इधर चला मैं उधर चला, फिल्म के नाम है कोई मिल गया। ऋतिक रोशन प्रीति सिन्हा इस फिल्म में काम किया है, इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों क्या किया और क्या किया, आज हम आप लोग को कुछ नया और पुराने गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा एक गीत है जो नैतिल के लता जी और उदित नारायण को गाया हुआ गीत है। इस फिल्म का नाम है वीर जरा, शाहरुख खान और प्रीति सिंधा का ये गीत आप लोग सुना जाए।

देश है मेरा और ऐसा देश है तेरा। जितने लोग दुनिया पे है हमारे प्यारे सुनने वालों, अपना देश सबके प्यारा होता है। चाहे आप भारत में हो या सूरीनाम में हो या पाकिस्तान में हो या जहां भी हो, अपना देश सबका प्यारा है। चाहे वो देश आपका जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा अपना ही देश है। और चलते हैं हम और आगे को, सातों जन्म में तेरा ही रहेगे। फिल्म के नाम है दिल वाला। कुमार शानू और अलका याग्निक इस गीत को गाते हैं।

सुनने वालों, सातों जन्म तक हम तेरे रहेंगे, ये क्या मुमकिन है? सात जन्म तक किसके साथ रहे? एक जन्म में भैया कहीं कहीं उल्टा सीधा हो जाए, सात जन्म में भला क्या होगा? सोचो तो, हम चलते हैं एक गीत क्योर और है खलनायक, खलनायक क्योर और पलकी में होगे सवार, पलकी में होगे सयार, आओ सुना जाए।

बस पालकी में होके और सवार चलिए। कल का यानी फिल्म का नाम है खलनायक, जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित संजय दत्त ने काम किया है और गीत को गाया है अलका याग्निक। और हमारे प्यारे सुनने वालों, हमारे दोस्तों, यहाँ से प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हम चलाते हैं। अगर जब आप किसी के ऊपर दीवाना हो गया है, अगर जब किसी के ऊपर आप दीवाना या दीवाना हो गया है, दिल दे चुका है, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। आओ देखो क्या है।

और ऐसी दीवाननी, और तेरा नाम हमने लिख दिया अलका याग्निक और विनोद राठौड़, ऋषि कपूर, देविया भारती का ये फिल्म है ऐसा दीवानी। फिल्म का नाम है दीवाना। और हमारे प्यारे सुनने वालों, आज हम आज कुमार शानू के गीत भी आप लोग को सुनाएंगे, और वो है ये चांद कोई दीवाना है, ये चांद कोई दीवाना है, ये भी कुमार शानू और अलका ने इस गीत को गाया है।

चांद कोई दीवाना है और ये चांद कोई दीवाना है। छुपा रुस्तम फिल्म का नाम है और इस गीत को हमने अपने प्यारे लोगों के लिए चला दिया है। मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को फिर कुछ मनोरंजन को आप प्राप्त करेंगे। और हम चलते हैं, कोई पागल प्रेमी होता है भैया, कोई श्रेक होता है और कोई पागल होता है। कविता कृष्णमूर्ति का और सबीर कुमार का यह गीत है जिस फिल्म में गोविंदा ने काम किया है और दिव्या भारती ने। और इस गीत को बोल है तू पागल प्रेमी और आवारा।

दोस्तों। और ये गीत क्या होगा दोस्तों? ये कुछ प्यार भरी गीत है और ये गीत है झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल। झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल की ओर हम जाते हैं।

0: तेरी कमाल। और इस गीत को अलका याग्निक ने और उदित नारायण ने और यानी कि गाया है, और फिल्म के नाम है राजा। मधुरी ऋषि संजय दत्त का ये फिल्म है दोस्तों।
1: क्षमा करना सुनने वालों, उषा खन्ना जी आपको सुनाने वाले हैं मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। चलिए मिलकर सुनते हैं।

क्षमा करना सुनने वालों, यशुदास और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुना रहे थे। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, फ्रॉम द मूवी साजन बिना सुहागन से हमने पेश किए हैं। और इसी गीत में अभी आपने सुने हैं कि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और हमें ऐसे ही अपनी जिंदगी चलानी चाहिए ताकि कोई दुखी ना रहे। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं सुनने वालों, लेकिन अगर हम कोशिश करें सभी को खुश रखने को तो क्यों नहीं। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। फ्रॉम द मूवी सफ़र से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सफ़र, से हमने पेश किए हैं जिंदगी का सफ़र है एक ऐसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। और ये सवाल तो होता ही रहेगा कि कभी ना कोई समझ पाया है और ना कभी कोई जान पाया है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी वो रुलाए।

आप सुन रहे थे जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी वो रुलाए, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं और सुख दुख हमेशा जिंदगी में होते हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप।

सुन रहे थे ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाव धूप। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हम चलाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी शोर से आप सुनेंगे जीवन चलने का नाम, चलते रहो शुभ हो शाम, महेंद्र कपूर जी के साथ में मन्ना दे जी आपको सुनाने वाले हैं।

साउंड मूवी शोर से हमने पेश किए हैं जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। महेंद्र कपूर जी के साथ में मन्ना दे जी आपको सुनाने वाले हैं। पता नहीं कि कितने लोग ये फिल्म यानी ये फिल्म को देखे हैं, लेकिन इससे एक सीख मिलती है सुनने वालों कि हमेशा इस फिल्म में मनोज कुमार जी कहते थे कि जिंदगी में कितनी शोर है और एक हादसा हो जाता है उनके साथ तो फिर वो कभी सुन नहीं पाता है, और एक छोटा बच्चा है और बच्चा तरसते हैं अपने पापा के प्यार के लिए, क्योंकि उसका पापा सुन नहीं सकता तो वो लिख कर बताते हैं। तो कभी कभी जिंदगी में भी ऐसा होता है सुनने वालों कि अगर आप हमेशा कुछ कहेंगे कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं है तो ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं, और जब वो सुनने लगते हैं तो बेटा बोल नहीं पाता है। यानी हमें कुछ ना कुछ फिल्मों से कुछ सीख मिलती है। तो जिंदगी में अगर आप हमेशा कहेंगे कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं तो ये गलत है सुनने वालों। चलिए ये गीत हम पेश करते हैं किशोर दा की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी दूर कराही, जीवन से ना हार उजीने वाले।

अभी आप सुन रहे थे जीवन से न हार ओ जीने वाले, और ये सही है सुनने वालों, क्योंकि अगर आप हार मान लेंगे तो जो आप अपने ज़िंदगी में चाहते हैं वो आपको कभी हासिल नहीं होगा। हार मानने से कुछ नहीं होता, ज़िंदगी में आगे बढ़नी चाहिए। आशा भोसले जी के साथ में बप्पीदा आपको सुनाने वाले हैं, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी खोना ना।

अभी आप सुन रहे थे जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, लेकिन कभी कभी तो रोना पड़ता है सुनने वालों। ऐसे हालात में लोग आ जाते हैं कि आंखें नम हो जाती है और आंसू थमता नहीं। दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है।

सुन रहे थे दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। सुनने वालों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ और वो कहानी तीन दोस्तों की है। कहानी तीन दोस्तों की, ज्ञान, धन और विश्वास, तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक वक्त आया जब तीनों को अलग होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया। ज्ञान ने कहा मैं मंदिर, मस्जिद या स्कूल में मिलूंगा। धन ने कहा कि मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास चुप था। दोनों ने चुप होने की वजह पूछी तो विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूंगा। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

साहिब है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं, जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में, फिल्म लाज साहेब से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, फ्रॉम द मूवी तुमसे अच्छा कौन है, लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी साहब आपको सुनाने वाले हैं। लोग अच्छा पढ़ने और लिखने वाले को काबिल समझते हैं, लोग अच्छा पढ़ने और लिखने वाले को अच्छा और काबिल समझते हैं, बल्कि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले।

सुन रहे थे रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तुमसे अच्छा कौन है। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन से एक सपना सा जागा है। फ्रॉम द मूवी परवाना से हम पेश करते हैं और आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा जी, जो सबकी फिक्र करते हैं अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म परवाना से हमने पेश की है, आशा भोसले जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे जिस दिन से मैंने तुमको देखा है। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी वक्त से है और गीत का बोल है, दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, मैं कहता हूँ खुदा पर भरोसा रखो बुरा वक्त ही नहीं आएगा।

आशा जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के दिल के सहारे आजा प्यार करे। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी वक्त से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। कई दिन से मुझे गीत का बोल है और फ्रॉम द मूवी अखियों के झरोके से हम पेश करते हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं। समाना तो बातें ही करता है, जमाना तो बातें ही करता है, सामने भी और पीछे भी, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि किस बात को इग्नोर करना है और किस बात को दिल से लगा लेना है।

फ्रॉम द मूवी अखियों के झरोके से अभी आप सुन रहे थे। कई दिन से मुझे यू ही सपनों में आवाज देता था, हर पल बुलाता था, अच्छा तो वो तुम हो। जाने जा ढूंढता फिर रहा, किशोर डा के साथ में आशा जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जवानी दीवानी। एक बात याद रखना, रंग रूप देखकर इंसान का अंदाजा मत लगाना, वफादार लोग अक्सर सादगी में ही मिलती हैं।

अभी आप सुन रहे थे जाने जा, ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। फ्रॉम द मूवी जवानी दीवानी से हमने पेश किए है किशोर डा के साथ में, आशा जी आपको सुनाने वाले थे। जहरीला इंसान है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते ओ हंसनी, किशोर डा आपको सुनाने वाले हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, किताब से सीखे तो नींद आती है, जिंदगी सिखाए तो नींद उठ जाती है।

किशोर डा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ओ हंसनी फ्रॉम द मूवी जहरीला इंसान। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, किशोर डा आपको सुनाने वाले हैं। अगर गलत फहमी दूर ना की जाए तो वो नफरत में बदल जाती है।

अभी आप सुन रहे थे तुम आ गए हो, नूर आ गया है। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। लता जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी हीरा पन्ना। तलाश है एक ऐसे शख्स की जो आंखों में उस वक्त दर्द देख ले जब दुनिया हमसे कह रही हो क्या यार तुम हमेशा हंसते ही रहते हो।

ये आप सुन रहे थे पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, फ्रॉम द मूवी हीरा। पन्ना से हमने पेश किए है किशोर दा के साथ में लता जी आपको सुनाने। साथिया नहीं जाना के जी ना लगे, मौसम है सुहाना के जी ना लगे, फ्रॉम द मूवी आया सावन झूम के। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं।

मोहम्मद रफ़ी और लता जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आया सावन झूम के, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं साथिया नहीं जाना के जी ना लगे। कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है। लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी मेरा गांव मेरा देश।

कहता है ये सावन भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मेरा गांव मेरा देश, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बात। आपको सुनाने वाले हैं किशोर डा के साथ में लता जी, और फिल्म का नाम है दो चोर।

अभी आप सुन रहे थे चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बात। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से हम पेश करते हैं पर्पल दिल के पास तुम रहती हो, किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं।

सुन रहे थे पल पल दिल के पास तुम रहती हो। आज मदहोश हुआ जाए रे फ्रॉम द मूवी शर्मिली से हम पेश करते हैं किशोरदा और लता जी आपको सुनाने वाले हैं और म्यूजिक दिए हैं एस दे बर्मन जी।

लिए आप सुन रहे थे आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन, द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में आप सुनेंगे, साथ में सुमन कल्याणपुर आपको सुनाने वाले हैं। तो सबसे हंसी है दिलरुबा फ्रॉम द मूवी रामू तो दीवाना है।